0: तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। अंतिम सीढ़ी क्या है तो संकेत कर दिया, अंतिम सीढ़ी तो जब जो है इसके लिए वहां संधि शब्द की चर्चा कर दी। पूर्व में जो शिक्षा विभाग था तो संधि की चर्चा की, और संधि क्या है, जहां वर्णों के उच्चारण को लेकर के और प्रयत्न विशेष को लेकर के और उनके स्वरों के ह्रस्व दीर्घ आदि मात्राओं को लेकर के और जहां पर उनकी समीपता हो जाती है उसका नाम क्या है, संधि। और उसी को अधिज्योतिष, अधिप्रज, अध्यात्म आदि शब्द से विभाग करके बतलाया था। तो ये संधि, अब वहां पर संधि क्या, तो लोकों को लेकर के भी संकेत कर दिया था, अधिलोकम करके बतलाया था, पृथ्वी लोक क्या है, अंतरिक्ष क्या है और जो है देव क्या है, फिर उनकी संधि क्या है, ये सब संकेत किया था। फिर ये जो सब क्रम बतलाया और उस संधि में जो है मूल क्या है, ये संकेत, तो वही क्रम से यहां भी संकेत करते, तो उन सब का क्या है, तो ओंकार को यहां ले रहे, ओम को ले रहे, तो ओम ही उसमें मूल है। और अब उसकी संधि कैसे, तो जैसे अकार, उकार, मकार, तो उसी के द्वारा सारे देव, वेद और अग्नि आदि ये सब उसमें समाहित करके और तब जाकर के लोक आदि को लेकर के उस ओंकार में आगे दिखाएंगे। अन्य श्रुतियों में भी दिखलाया है और यहां जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सबका साम्य उसी से कराया। और सबकी संधि कराने वाला जो प्रयत्न है, जो बल है, उस बल से जब तुम संपन्न होगे और उस बल वाले होगे तो क्या होगा, उसके साथ समीपता हो जाए, उसके साथ संधि हो जाए। और जैसे ही उसके साथ समीपता होगी, संधि होगी, तो वह है साक्षात्कार हो जाएगा, मन ज्ञान हो जाएगा। यह साक्षात अपरोच्छाद ब्रह्म, जो अपरोच्छ ज्ञान है वही तो ब्रह्म है, तो वहां फिर उसकी पृथकता भी नहीं, माने उस साध्य की हमें प्राप्ति हो जाए। इसलिए यहां क्रम से जो चर्चा की तो यहां भी कहा कि स इंद्रो मेधयास प्रणोतु। अब इस बात पर ध्यान, वह इंद्र क्या करे, वह जो है उस अमृत रूप अधिष्ठान की प्राप्ति कराने के लिए, इंद्र शब्द से ईश्वर को लेते हैं और वहां ईश्वर रूप से ओंकार को ही ग्रहण कर रहे प्रतीक उपासना, वह क्या करे, कहने लगे कि हमारे लिए मेधयास पढ़ो तू, हमें उस मेधावान बनाए। मेधा मतलब हमारी बुद्धि में वह सामर्थ्य, वह बल प्रदान करे जिससे बुद्धि उसको ठीक ठीक ग्रहण कर सके। इसलिए कहा मेधयास पढ़ो तू, और किस लिए, तो कहने लगे वह जो अमृत का अधिष्ठान है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Parama Sraddhaya Saniya Vandaniya Mohanta Swami Sri Shravanandaji Maharaj एवं अर्चनीय वंदनीय स्वामी रंगानंद जी महाराज एवं हमारे अर्चनीय वंदनीय विद्वत मंडली महीशूरो एवं हमारे अर्चनीय वंदनीय बाबा जी एवं सोमजाग के सोम प्रति सोमदाग है ना बेटा है, सोमदत्त है, सोमदत्त नहीं, सोमदत्त ठीक है, सोमदत्त भी है, एवं हमारे ट्रस्टी वृंद वरम आदरणीय ट्रस्टी वृंद एवं प्रभु प्रेमी सज्जनों तथा भक्तिमती माताओं, आज गुरु पूर्णिमा है, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसकी परंपरा है, आपको मालूम है ना, नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम। यहां से आया, नारायण से आया। पूर्णिमा तो हर महीना में आता है, परंतु उनके साथ गुरु नहीं लगता है। आज इस पूर्णिमा के साथ क्या लग गया, तो इसीलिए इस पूर्णिमा का विशेषता क्या हो, गुरु पूर्णिमा है नी। व्यास पूर्णिमा का हो, गुरु पूर्णिमा का हो, हाँ हमारे स्वामी जी जो है ना, इनका अभी मोहंत हो गया। मोहंत बंगाल में महंत को मोहंत कहते, मोहंत समझते हैं ना, जिन्होंने मोह को अंत कर दिया। अभी बतलाया इस नगरी में जो आता है ना वो नहीं जाता है। क्यों? इस नगरी का नाम मोहमय नगरी, और मोह को जिन्होंने अंत कर दिया, खत्म कर दिया, उनका नाम मोहांत, मोह अंत। तो बंगाल में महंत को मोहंत कहते, जो बंगाल में गया होगा उनको पता होगा। जैसे देखो मारवाड़ी में, मारवाड़ में गुरु को गोरू कहते, क्या बोलता है, गोरू जी गोरू जी गोरू जी बोलता है। और बंगाल में गुरु किसे बोलता है जानते हो? गाय का गुरु बोलता है। ये शब्दांतर है जब है नी बात। ऐसे एक गुरु हमारे काशी में भी होते हैं, काशी में गुरु है ना, वहां का गुरु की परिभाषा अलग है, तो आप लोग जानते ही हो। हाँ काशी गुरु, उनका नाम काशी गुरु। ऐसे बम्बई वाला को क्या बोलते, मामा, बम्बई का मामा, काशी का काशी गुरु, दिल्ली का दादा, सब देश के सब प्रांत के अलग अलग परिभाषा है। तो यहाँ हमारे यहाँ जो है ना शास्त्र में तीन प्रकार के गुरु बतलाया। हमारे बाबा जी है ना, बाबा जी ने जो परंपरा बतलाया ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी नहीं है, संस्कार सोलह संस्कार से शुरू किया, गर्भाधान संस्कार, सिमंतनी संस्कार, दादा संस्कार से लेकर के ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम तक पहुंचा दिया। सन्यास आश्रम में नहीं गया, क्यों? अगर वहां तक जाएगा तो हमको सन्यास लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ तीन गुरु होते हैं, नोदक बोधक और मुक्षदक। एक नोदक गुरु है, नोदक गुरु। तो हमारे बाबा जी जो है नोदक गुरु के विषय में बतलाया। नोदक माने प्रेरणा देने वाला, गृहस्थ आश्रम में गुरु होता है नोदक। हाँ वो जो बतलाया ना बाबा जी ने अभी। एक होता है बोधक, वेद का ज्ञान देने वाला, वेद का ज्ञान देने वाला। और एक होता है मोक्ष को देने वाला, मोक्षदा गुरु। तो नोदक और बोधक तब तक पहुंच जाते हैं। बोधक गुरु में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आ गया, अर्जुन को उपदेश दिया। अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोष उपदेश स्वभाव हम पृछा में तम धर्म सम्मूढ़ चेता जस श्रेयसा निश्चितम ब्रूही शिष्य स्थे हम साधि हम तो हम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूं आप मेरे को उपदेश कीजिए। कहां पर बोल रहा है? एकांत में, कमरा में, मंदिर में, लड़ाई के मैदान में बोला। तो लड़ाई के मैदान उपदेश देने के लायक है क्या? जहां शस्त्रों का झंकार हो रहा, हाथी का सिंगार हो रहा है, घड़ों का घोड़ाओं का हिनीनाट हो रहा है, बैंड बाजा बज रहा है, युद्ध बाजा बज रहा है, उस अवस्था में अर्जुन कहता मुझे ज्ञान दो, उपदेश करो। तो वहां उपदेश दिया भगवान ने अर्जुन को। क्यों? अर्जुन को आगे चल करके भगवान ने कहा था तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन, ज्ञानिन तत्वदर्शिन। केवल ज्ञानी भी बतलाया नहीं भगवान ने, केवल तत्वदर्शी भी नहीं बतलाया, तो आप कहोगे ज्ञान या तत्वदर्शी में अंतर क्या, भेद क्या है? ज्ञान ही शास्त्र का ज्ञान है, श्रोत्रिय को ज्ञान ही कहते हैं। जो श्रोत्रिय है ना, श्रुति को जानने वाला, श्रुति को जानने वाला का नाम क्या है? ज्ञानी। और तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी, हाँ, तत्वज्ञानी। ये दोनों विशेषणों से विशिष्ट जो गया होगा उनके पास जाओ, वो तुमको उपदेश करेगा। कब जाएगा? तो श्रुति निर्देश देती है, परीक्ष लोकान कर्म सिद्धान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्तिया कृत कृत न स गुरु में भी अभिगत समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने के लिए श्रुति निर्देश देती है। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु का लक्षण बतला रहा है। अभी कोई गुरु का कोई लक्षण आपने सुना? गुरु घंटाल गुरु है, फलाना गुरु है, फलाना गुरु है, सुना ना अभी तक? हाँ, गुरु घंटाल भी गुरु का लक्षण है, बता दिया ना। परंतु ऐसा गुरु श्रुति नहीं बतलाती है। श्रुति कहती है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु में भी अभिगच्छत। जो श्रुति को भी जानता हो और तत्व में निष्ठा भी, ऐसा कौन है का मुक्षद गुरु। जैसे देखो महाभारत की एक कथा है, आप लोग सुने होंगे हजारों बार। जिस दिन अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की आज मैं अर्जुन को रथ और घोड़ाओं को मार करके समाप्त कर दूंगा, यह बात भगवान अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज जानते थे। उन्होंने प्रातःकाल प्रतिज्ञा किया, संकल्प किया, आज रथ रथी घोड़ा जैसे मैं ले जा रहा हूं लड़ाई के मैदान में, वैसे मैं उसको वापस शिविर में लाऊं, जैसा का वैसा। सत्य संकल्प भगवान श्री कृष्ण महाराज ने रथ को लेकर के लड़ाई के मैदान में गया। दिन भर लड़ाई हुई, अर्जुन के रथ के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा। ब्रह्मास्त्र के द्वारा रथ और घोड़ा सबको जला करके भस्म कर दिया। परंतु रथ और घोड़ा जैसा का वैसा था देखने में, भस्म नहीं हुआ। देख दृष्टि से, प्रत्यक्ष दृष्टि से, चर्मचक्षु से। सायंकाल में जब रथ को शिविर में लाया, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब रथ से तुम उतरो। अर्जुन ने कहा, प्रतिदिन तो आप ही रथ से पहले उतारते थे, आज हमको क्यों बोल रहे हो? बोले, रहस्य में बाद में बतलाऊंगा, तुम पहले उतरो, पहले उतरो आप। अर्जुन को समझ में बात नहीं आई। अर्जुन रथ से उतरा, उतारने के बाद में भगवान उतारा। भगवान के उतारते रथ भस्मीभूत हो गया। अर्जुन का क्या मामला, क्या ऐसा कैसे हुआ? भगवान ने कहा, अर्जुन हमको मालूम था कि आज अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र मारेगा, तुम्हारे रथ और घोड़ा को मार करके भस्म करेगा, भस्म कर देगा। मैंने सत्य संकल्प करके रथ को ले गया और सत्य संकल्प से रथ को वापस लाया। जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा, उसी समय रथ जल करके भस्म हो गया। ठीक इसी प्रकार कहते हैं, ये जो संसार है, रणभूमि है। संसार रूपी रणभूमि में जो जीवात्मा रूपी जो रथी है, शरीर रूपी रथ पर बैठ करके लड़ाई के मैदान में जाते हैं, तब सत्य संकल्प रूपी जो बुद्धि रूपी सारथी है, भगवान श्री कृष्ण महाराज है, उनके सत्य संकल्प से रथ जैसा का वैसा रहता है। परंतु गुरु के समय जो जाकर के गुरु रूपी अश्वत्थामा जिस समय ब्रह्मास्त्र मानता, तत्त्वमसि महावाक्य का श्रवण कराता है, वेदांत वाक्यों का श्रवण कराता, उसी समय इसको तीनों शरीर जल करके भस्म हो जाता है। इंद्रिया रूपी घोड़ा भस्म हो जाता है, मान रूपी लगाम भस्म हो जाता है, परंतु देखने में जैसा का वैसा है। ये जो बैठे हैं देखते हो ना, ये इन लोग के सब तीनों अवस्था, तीनों शरीर, मान बुद्धि इंद्रिया सब डाल करके भस्म हो गया है, परंतु देखने में आपको जैसा का वैसा दिखता है। क्यों? गुरु के द्वारा प्राप्त किया ब्रह्मास्त्र महावाक्य का। तो महावाक्य का श्रवण जिस समय इन्होंने किया, उस समय उसे संसार बाधित हो गया साहब, परंतु प्रारब्ध कर्म के संकल्प है ना, प्रारब्ध कर्म रूपी जो संकल्प है, ये संकल्प जब तक है वो तब तक रथ रथी सारथी इंद्रिया घोड़ा ये सब जैसा का वैसा देखेगा, वास्तव में ये सब नहीं है। ऐसे गुरु के पास जाओगे, गुरु जी इस समय तुमको महावाक्य का उपदेश करेगा, उस समय तुम्हारा जो है ना संसार का बंधन निवृत्त हो जाए। क्यों? उस अवस्था में तुम्हारे जो है ना अविद्या रूपी जो ग्रंथि है, अज्ञान रूपी ग्रंथि है, जड़ चेतन का जो ग्रंथि है, वो ग्रंथि उसी समय भस्म हो जाएगा, खुल जाएगा। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं मोक्षद गुरु अलग है, मुक्ति देने वाला गुरु अलग है, महावाक्य श्रवण करने वाला गुरु अलग है, विद्या देने वाला गुरु अलग है, वो संसार का व्यवहार सिखाने वाला गुरु अलग है। व्यवहार सिखाने वाला गुरु का नाम है नोदक, प्रेरणा देने वाला, श्राद्ध कराने वाला, विवाह कराने वाला, सत्यनारायण की कथा कराने वाला, ऐसा है कौन सा गुरु? ये नोदक गुरु है, नोदक। और वेद अध्ययन कराने वाला गुरु बोधक गुरु, वेद का अध्ययन करे, ओम सहस्र श्री का गुरु का सहस्राक्ष सहस्र पात ऐसे सिखाएगा, इस गुरु का नाम बोधक गुरु है। उपात्त विद्या गुरु दक्षिणार्थी कोत्स प्रबद्धि भरदंतु शिष्य, कोत्स नाम का एक शिष्य था भरदंतु का, कोत्स क्या कोत्स, हाँ
4: कोत्स,
3: चौदह विद्या सीखी, चौदह विद्या के अध्ययन करने के बाद में सब विद्यार्थी को संस्कार करा दिया, सबको समावर्तन करा दिया, सब चले गए, परंतु कोत्स कहते हैं गुरुजी आप हम तो कुछ दक्षिणा ले, बोले तू गरीब है, तेरा सेवा ही मेरा दक्षिणा है, और कुछ नहीं चाहिए हमको। बार बार जब हट किया, गुरुजी ने कहा 14 विद्या का पढ़ा तूने, 14 लाख सुवर्ण मुद्रा ला, कितना जा एक नहीं है नया कड़ी पैसा, वहां गुरुजी 14 लाख सुवर्ण मुद्रा मांग ले तो शिष्य दुखी होगा कि सुखी होगा, बोलो? दुखी होगा नहीं, वो सब प्रसन्न होगा, खुश हो गया, हम सबसे ज्यादा दक्षिणा मेरे से मांग, मैं दूंगा। कहां से लाएगा? तो राजा रघु के पास पहुंचा, राजा रघु उन दिनों में सर्वस्व दान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया, मृण्मय पात्र लेकर के बैठा है, पहुंच गया कोत्स, आइए आइए आपका स्वागत है, ब्रह्मदेव आपका स्वागत है, स्वागत किया, और वो देखता है अरे तो सब मिट्टी का पात्र है, मिट्टी के पात्र के द्वारा मेरा स्वागत कर रहा है, मैं इनसे सुवर्ण मुद्रा लेने के लिए आया हूं। राजा रघु पूछते हैं क्या सेवा करूं, बोले कुछ नहीं हम तो चलते हैं, बोले ऐसे कैसे आया? राजा के पास आकर के कृष्ण हस्त न कोई गच्छित हो, खाली हाथ कोई नहीं जाता, बोले नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, बोले नहीं चाहिए तो आए क्यों? बोले जिस उद्देश्य से आया उद्देश्य यहां पूरा होने वाला नहीं, बोला उद्देश्य बताइए तो सही, बोले राजा मैं गुरु से विद्या पढ़े, गुरुजी ने मना किया तो कोई दक्षिणा नहीं देना, मैं बहुत हट किया, हट करने के बाद में गुरुजी ने कहा तू 14 विद्या पढ़ा है, 14 विद्या का 14 लाख सुवर्ण मुद्रा ला, तो मैं बड़े उत्साह के साथ आपके पास आया, पर यहां देखा मिट्टी के पात्र से आप हमारा जो है ना अर्घ्य दे रहे हैं, तो मैं यह क्या सोना का मुद्रा मांगू? बोले ठहर जाइए, अभी भी राजा रघु के हाथ में धनुष बाण है हा? राजा रघु के हाथ में धनुष बाण है, चिंता मत करो, प्रातःकाल आप ले जाना। राजा रघु ने खजांची से कहा, सेनापति से कहा, सेना तैयार करो, कुबेर पर आक्रमण करना है, चढ़ाई करनी है। यह बात सुनते ही कुबेर ने रातों रात खजाना भर दिया। प्रातःकाल खजांची आकर के, महाराज आपका खजाना तो सुवर्ण मुद्राओं से भर गया है। राजा आकर देखता है, कोच के बुलाता है, ले जाओ सब। वो ब्राह्मण कैसा ब्राह्मण था, बोले हमको केवल 14 लाख चाहिए, एक पैसा भी नहीं चाहिए ज्यादा। बोले तुम्हारे नाम पर ही आया, तुम्हारे अधिकार है, ये हमारा नहीं है, राजा का नहीं है, ये तुम्हारे नाम पर आया, इसीलिए इसका अधिकार तुम्हारा है। और वो ब्राह्मण कहते हैं, ये हमारा अधिकार नहीं, हमारा केवल 14 लाख का संकल्प है, अभी करना कि हमको देता तो है, जो भी कहते तुम ले जाओ उठाओगे तो छोड़ करके आता क्या छोड़ करके आता, परंतु उसने उठाया नहीं। आखिर में विद्वानों को बुला करके निर्णय किया इसको क्या करना चाहिए, तो 14 लाख उनको दो, बाकी सब पृथ्वी में गाड़ दो। ऐसे शिष्य थे गुरु दक्षिणा देने के लिए। आज वो गुरु की परंपरा है, शिष्यों की परंपरा है, त्याग की परंपरा है।
4: अभी पुस्तक का विमान जी करना है।
3: हाँ, अभी पुस्तक का विमान करना है। आप पुस्तक रूप धन आया, आप लोगों को थोड़ा दाम में दे रहे हैं, छीन झपटी नहीं करना, क्रम से लाइन लगा करके ले लेना का है। कल के लिए नहीं रखना, अभी ले जाना, न कल फिर समय बदल जाएगा। आज का जिसका
5: अच्छा बोला आज का ही है, बता रहे।
3: हाँ हाँ, अच्छा चलिए देखो, हर साल आते हैं पुस्तक यहाँ। हाँ, नया नया पुस्तक, नया नया ये किताबें हैं। देखो इसमें एक ऐसा भिक्षुक है स्वामी शंकरानंद, जिनके प्रशंसा महाराज जी ने बहुत पुस्तकों में लिखा, बहुत पुस्तकों में है इनका ये प्रशंसा। भिक्षु है, भिक्षु, भिक्षा करने खाने वाला, मधुकरी करके खाने वाला, परंतु विद्वान, प्रकांड विद्वान थे। हाँ, जिनका प्रशंसा, जिनका श्रेय महाराज जी ने बहुत बार बहुत पुस्तकों में लिखा है। ये आप लोग कितना में मिलेगा मालूम है? कितने का?
5: 20 का है, आज 10 का मिलेगा।
3: ये देखा, 20 का है, 10 का मिलेगा। 10 नहीं, 10, एक 10 होता है, एक 10 होता है। कितना में मिलेगा? 10 से 10 रुपया। लेना, जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा महापुरुषों का योग दर्शन में कहा, तो महापुरुषों का चरित्र चिंतन करने से ये इस लोक परलोक के सब जो है ना कामनाएं मिट जाती है। क्यों? अभ्यास वैराग्याभ्याम तो निरोधा, मन को निरोध करने के लिए अभ्यास वैराग्य चाहिए। तो महापुरुष को चरित्रों का अभ्यास करोगे, मनन करोगे, फिर भी संसार से वैराग्य हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं, बुढ़ापा में वैराग्य होगा क्या होगा? अभी वैराग्य होने वाला नहीं है, जो वो वैराग्य अभी बचपन में होता है, जवानी में होता है, बुढ़ापा में नहीं होता है। कितना भी धक्का देगा ना तो घूम फिर करके चले आओगे। यहाँ एक नाना नानी यह बगीचा है, तो धक्का दिया घर से तो नाना नानी में जाओगे, तो नाना नानी में बैठ करके शान को टुक टुक टुक टुक टुक टुक करके भेद चले आओगे। हाँ, ये देखो, ये मेरे भिक्षु, दूसरा है ईश्वर दर्शन, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हरिद्वार ऋषिकेश बद्रीनारायण जाने का कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं नारायण में, तू आया बद्रीनारायण में, भगवान पूछते तू यहां क्यों आया, मैं तो नर में हूं और तू ना आया बद्रीनारायण में, नहीं आना, जहां बैठे हो, जहां सोए हो, जहां लेटे हो, हाँ हुआ देखो हम तुम्हारे साथ आए, ईश्वर दर्शन हो गया, ईश्वर दर्शन हुआ कि नहीं, अरे अरे यहां तक कम से कम बोलिए हो गया, ईश्वर दर्शन करो, ये कितने का है ईश्वर दर्शन, कितना सस्ता है जानते हो,
5: 10 रुपया
3: में ईश्वर दर्शन होगा, वहां जाओ ना 500 रुपया 1000 रुपया देकर लाइन खड़ा हो, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और यहाँ 10 रुपया से ईश्वर दर्शन हो जाता है, अभी तो यहाँ तो ईश्वर दर्शन 10 रुपया में भी नहीं, नीचे जाओगे 10 रुपया, यहाँ तो फुकट का हो गया, और एक दूसरा ले आनंद उल्लास, हाँ ये आनंद उल्लास है, ये कितना 20 का है,
5: ये 30 का है,
3: अरे बाबे देखो पहले इसका दिखाना से देता ना 30 वाला, अब ये 30 का है, तो 30 दिन में आपको 30 भाषण 30 प्रसंग आप पढ़ लेना, धीरे धीरे पढ़ना, एक दिन पढ़ोगे सिर दर्द करेगा, एक दिन में कोई ग्रंथ पढ़ते ना सिर दर्द हो जाता है, तो दो दो चार चार लाइन एक एक पेज करके पढ़ना, ये आनंद ही आनंद में मिलेगा, सुख और आनंद में अंतर है याद रखना, तुम सुख चाहते हो आनंद चाहते हो, ये तो बोला आनंद चाहते हैं, सुख है विनाशी आनंद है अविनाशी, तो सुख चाहिए कि हमको आनंद चाहिए, हाँ तो आनंद चाहिए तो पुस्तक जरूर लेना है, नहीं बात ये आनंद उल्लास, हाँ अभी क्या करना है, हो गया।

नागीशाय नमः शुचये नमः अन्तराय नमः सर्वप्रणयसंवादिने नमः वृषाङ्काय नमः वृषवाहनाय नमः ईशाय पिनाकिने नमः।

नमः, निधये अव्ययाय नमः, अभिरामाय नमः, सुशरणाय नमः, सुब्रह्मण्याय नमः, सुधापतये नमः, मघवते कौशिकाय नमः, गोमते नमः, विश्रामाय नमः, सर्वशासनाय नमः, ललाटाक्षाय नमः, विश्वदेहाय नमः, साराय नमः, संसारचक्रभृते नमः, अमोघदण्डिने नमः, मध्यस्थाय नमः, हिरण्याय नमः।

नमः वीतभयाय नमः विश्वहर्त्रे अनिवारिताय नमः नित्याय नमः नित्यकल्याणाय नमः पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः दूरश्रवसे नमः विश्वसहाय नमः ध्येयाय नमः दुःस्वप्ननाशनाय नमः उत्तारकाय नमः दुष्कृतिघ्ने नमः दुर्धर्षाय नमः दुस्सहाय नमः अभयाय नमः अनादये नमः भुवे नमः भुवो लक्ष्म्यै नमः किरीटित्रिदशाधिपाय नमः विश्वगोप्त्रे नमः विश्वभर्त्रे नमः सुधीराय नमः रुचिराङ्गदाय नमः जननाय नमः जनजन्मादये नमः प्रीतिमते नमः नीतिमते नमः नयाय नमः विशिष्टाय नमः काश्यपाय नमः भानवे नमः भीमाय नमः भीमपराक्रमाय नमः प्रणवाय नमः सप्तधाचाराय नमः महाकायाय महाधनुषे नमः जन्माधिपाय नमः महादेवाय नमः सकलागमपारगाय नमः तत्त्वातत्त्वविवेकात्मने नमः विभूष्णवे नमः भूतिभूषणाय नमः ऋषये नमः ब्राह्मणविज्जिष्णवे नमः जन्ममृत्युजरातिगाय नमः यज्ञाय यज्ञपतये नमः यज्वने नमः यज्ञान्ताय नमः अमोघविक्रमाय नमः महेन्द्राय नमः दुर्भराय नमः सेनिने नमः यज्ञाङ्गाय यज्ञवाहनाय नमः पञ्चब्रह्मसमुत्पत्तये नमः विश्वेशाय नमः विमलोदयाय नमः आत्मयोनये नमः अनाद्यन्ताय नमः षड्विंशत्सप्तलोकधृषे नमः गायत्रीवल्लभाय नमः प्रांशवे नमः विश्वावासाय नमः प्रभाकराय नमः शिशवे नमः गिरिरताय नमः सम्राट्सुषेणाय नमः सुरशत्रुघ्ने नमः अमोघाय नमः अरिष्टमथनाय नमः मुकुन्दाय नमः विगतज्वराय नमः स्वयं ज्योतिषे नमः अणुज्योतिषे नमः आत्मज्योतिषे नमः अचञ्चलाय नमः पिङ्गलाय नमः कपिलश्मश्रूणे नमः शास्त्रनेत्रत्रयीतनवे नमः ज्ञानस्कन्दाय नमः महाज्ञानिने नमः निरुत्पत्तये नमः उपप्लवाय नमः भगाय नमः विवस्वते आदित्याय नमः योगाचार्याय नमः बृहस्पतये नमः उदारकीर्तये नमः उद्योगिने नमः सद्योगिने नमः सदसन्मयाय नमः नक्षत्रमालिने राकेशाय नमः साधिष्ठानाय नमः षडाश्रयाय नमः पवित्रपाणये नमः पापारये नमः मणिपूराय नमः मनोगतये नमः हृत्पुण्डरीकमासीनाय नमः शुक्लाय नमः शान्ताय वृषाकपये नमः विष्णवे नमः ग्रहपतये नमः कृष्णाय नमः समर्थाय नमः अर्थनाशनाय नमः अधर्मशत्रवे नमः अक्षय्याय नमः पुरुहूताय पुरुष्टुताय नमः ब्रह्मगर्भाय नमः बृहद्गर्भाय नमः धर्मधेनवे नमः धनागमाय नमः जगदित्तैषिसुगताय नमः कुमाराय नमः कुशलागमाय नमः हिरण्यवर्णाय नमः ज्योतिष्मते नमः नानाभूतधराय नमः ध्वनये नमः अरोगाय नमः नियमाध्यक्षाय नमः विश्वामित्राय द्विजोत्तमाय नमः बृहज्योतिषे नमः सुधाम्ने नमः महाज्योतिषे नमः अनुत्तमाय नमः मातामहाय नमः मातरिश्वणे नमः नभस्वते नमः नागहारदृशे नमः पुलस्त्याय नमः पुलहाय नमः अगस्त्याय नमः जातुकर्ण्याय नमः पराशराय नमः निरावरणधर्मज्ञाय नमः विरिञ्चाय नमः विष्टरश्रवसे नमः आत्मभुवे नमः अनिरुद्धाय।

नमः त्रिविद्याय नमः नरवाहनाय नमः मनोबुद्धये नमः अहंकाराय नमः क्षेत्रज्ञाय नमः क्षेत्रपालकाय नमः तेजोनिधये नमः ज्ञाननिधये नमः विपाकाय नमः विघ्नकारकाय नमः अधराय नमः अनुत्तराय नमः ज्ञेयाय नमः ज्येष्ठाय नमः निःश्रेयसालयाय नमः।

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் மனிஷ பஞ்சகம், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ அவதேஷ் சைத்தன்யஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: சமக்ர ஜீவன் கா ஏக் ஃபைனல் எக்ஸாம் ஹை. வோ எக்ஸாம் மே அகர் ஆப்கோ ஹமே பாஸ் கர்னா ஹை, உத்தீர்ண ஹோனா ஹை, தோ உஸ் गाइड के सहारा जरूरत है भाई, वो है सदगुरु। बिना गाइड के हम पास उत्तीर्ण नहीं हो सकते। और जितने भी महापुरुषों को हम देखते हैं, यहां तक कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने गुरु को जीवन में प्रतिष्ठित किए, इसीलिए कभी भी अपने इस अहम को बड़ा न होने दे कि किसी व्यक्ति के पास मैं कैसे अर्पण हो जाऊं, किसी हड्डी मांस वाला मनुष्य को मैं कैसे गुरु मान लूं। वो भी समझिएगा कि आपका अहम जो है आपके साधन मार्ग में प्रतिबंधक बाधक के रूप में उपस्थित हुए, और हो सके तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि तुम हो, मैं जानता नहीं हूं, मैं पहुंचने वाला हूं और तुम्हारे पास आने वाला हूं, परंतु तुम रहना और तुम्हारे साथ जो परिचय कराया ऐसा व्यक्ति को तुम दो, वो मेरे जीवन का सद्गुरु। और जिस दिन भगवत भक्तजन उस गुरु के अस्तित्व अथवा गुरु के शरण में आप जाते हैं अथवा गुरु मिल जाता है, समझना चाहिए ईश्वर के अनुग्रह। नहीं तो यह जीवन, यह विवेक, यह व्यक्ति किसी के पास नत होना नहीं चाहते हैं। अगर नत हो भी जाता है तो उसमें कई प्रकार के कामनाएं वासनाएं पूर्ण करने की ही चेष्टा करते हैं। अगर जिस दिन यह जीवन, यह व्यक्तित्व केवल परमात्मा के लिए किसी को अपनाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन समझना चाहिए ईश्वर के एक अनुग्रह। इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो, तस्यैते कथिता ह्यर्थे प्रकाशन्ते महात्मना। जिनके चित्त में यस्य देवे, जिन साधक के चित्त में देव के प्रति, देवताओं के प्रति जितनी श्रद्धा विश्वास, उतनी ही श्रद्धा और विश्वास अगर गुरु में हो। यस्य देवे पराभक्ति, पराभक्ति मीन जो निरूपाधिक है, जो निरूप है, निराकार है, उस शक्ति में जो एक श्रद्धा है, आपनापन है, अचंचलता है, वो है पराभक्ति। भगवत गीता जी में भगवान स्वयं कह रहे चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार की भक्ति वहां भी है। पहला जो तीन है उसको तो उन्होंने अपराभक्ति और ज्ञान निष्ठा ज्ञानी को ही उन्होंने अंतिम पराभक्ति के रूप में स्वीकार किया। इसलिए भगवत भक्तजन देवताओं में, देव में जिस प्रकार के पराभक्ति है, वही पराभक्ति अगर गुरु में हो तो वो व्यक्ति जो है उन्हीं के पास, उन्हीं के चित्त में उस शक्ति को जो आपको स्वागत करने वाला है, जिनके अस्तित्व के कारण आप परम प्रिय है, जिनके उपस्थिति के कारण आपके सब इंद्रियाएं ठीक ठीक चल रही हैं, जिनके कारण आप भले उनको भूल गया हो परंतु आप मैं कर रहे हैं, जिनके कारण आप अहम को पाल रहे हैं, अहम करने में सचेष्ट है, वो जो शक्ति है उस शक्ति को वो जानता है। इसलिए भगवत भक्तजन ये जो प्रार्थना है, ये जो स्तुति है, ये जो निवेदन है, किनको करना है, किसके प्रति हमारी भावों को अर्पण करना है, वो जो एक शक्ति जो सर्वज्ञ है, सर्व रूप में विराजमान है, वही शक्ति मेरे हृदय में भी विराजमान है, और उसी शक्ति के आराधक साधक जिस दिन निरूपण कर लेता है, पहचान लेते हैं, और वो भी अगर किसी गुरु के माध्यम से हो तो उसमें जो भी प्रतिबंधक है वो मिट जाता है और वो व्यक्ति निश्चिंत हो जाते हैं। अगर उस शक्ति से आपका संबंध बना, उस देव से अपने संबंध बना पाए, तो आपके बलवत प्रारब्ध को भी वो मिटा सकते हैं। क्यों ना आप अल्प प्रारब्ध लेकर के आए हो, परंतु उस शक्ति की कृपा, अनुग्रह, निग्रह शक्ति के द्वारा आपके जीवन मधुमय बन सकता है। परंतु इतना है कि गुरु के द्वारा वो निश्चय हो जाना चाहिए कि कोई है जो हमें स्वागत करने वाले हैं। इस जीवन में जितना भी टेंशन है, भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो, भक्ति करो, विगत ज्वर उत्ताप रहित हो करके करो। और जिस दिन वो उत्ताप, वो ज्वर, वो ताप जीवन से मिटा सकते हैं, उस दिन आप परम निश्चिंत हो सकते हैं। और ये ताप को मिटाने के लिए, इस ताप रूपी पाप को मिटाने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना आवश्यक है। इसीलिए आचार्य शंकर ज्ञानमूर्ति होते हुए भी, ज्ञानी महापुरुष होते हुए भी, वो स्वयं बाबा विश्वनाथ को सांब सदा शिव, जो कि टीकाकार लिखते हैं केवल शिव नहीं आए थे वहां, साथ में उमया सह पार्वती भी थी, और उस देव को, उस चांडाल वेशधारी को कहते हैं कि आप क्यों ना चांडाल हो, परंतु आपकी प्रज्ञा स्थिर है, आपकी बुद्धि स्थिर है, आपकी ज्ञान निश्चल है, इसलिए आप किसी भी जोनी में क्यों ना हो,

वो मेरे गुरु है, ये मेरे मनीषा निश्चय है। इसलिए जब भी हम गुरुदेव के पाते हैं, जाते हैं, अथवा गुरुकरण किया, हमें गुरु बनाया, एकदम निश्चिंत हो जाइए कि यही। और महाराज, इस विश्वास से ही आपके जीवन में संकट टल सकता है। अविश्वास के द्वारा संकट को आप बुलाते हैं, विश्वास हो तो आपके जीवन में आधा से ज्यादा समस्याएं मिट सकती है। नहीं तो ऐसा नहीं कि गुरु हमने नहीं बनाया, नहीं तो ऐसा नहीं कि ईश्वर के अनुग्रह से गुरु हमें मिला नहीं, परंतु वो विश्वास, वो निश्चय, वो निश्चलता, वो निष्कपटता, वो अपनापन, उनके पास और कुछ भी आवृत न रहे। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्त देवावगच्छत्वम मम तेजोम स संभव। जहां जहां भी तुम उत्कृष्टता देख रहे हो, अपने से श्रेष्ठत्व अनुभव कर रहे हो, इस संसार में वो समझना मैं ही हूं। इसलिए जब हम गुरु रूप से किसी को चयन किया, उनके हाथों में अपने जीवन को सौंप दिया, अगर वो उनके आचरण कैसा क्यों ना हो, मन में किसी भी प्रकार के संशय न रखे, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ है, तभी हमने उनको चयन किया और तभी परमात्मा ने उन्हें हमारे पास तक भेजा।

इसलिए उस देवण भक्ति और गुरु भक्ति में किसी भी प्रकार के भिन्नता का बोध ना हो, एकत्व का बोध हो। और जिस दिन गुरुदेव और देव में ऐक्य अनुभूति, उसी प्रकार पराभक्ति हम कर सकते हैं, उस दिन उस जो अद्वितीय चैतन्य सत्ता जिसके अस्तित्व से सब कुछ अस्तित्ववान है, जिसकी शक्ति से सब कुछ चलायमान है, अंतर्जामी के रूप में, सर्वाधार के रूप में, सर्वनियंता के रूप में, सर्व अधिष्ठान के रूप में वो विराजमान है, उस दिन आप उसको जान पाएंगे। इसलिए नारायण कैसा एक विडंबना कि इस शरीर में उनकी उपस्थिति, उनकी करुणा के बिना कुछ भी नहीं चलना है, परंतु कितने अनायास हम उसको अवज्ञा करते, मानने के लिए हम उसको नकार देते हैं। जिनकी आशीर्वाद से, जिनके अनुग्रह से ये जीवन चल रहा है, यही है अकृतज्ञता कि उनको हम अनायास मान देते हैं। और उस व्यक्ति को सोचिए कि हम कितना अवज्ञा किए, कितना कटु वचन बोले, कितने अविश्वास रखे, परंतु वो अभी तक हमारे ऊपर कृपा, करुणा, अनुग्रह हटाया नहीं। वो सुहृद है, हम माने अथवा ना माने, परंतु वो अपना काम अपना मान करके किए जा रहे हैं कि इसका किसी भी तरह कष्ट ना हो, इसको किसी भी तरह दुख ना हो, इसको किसी भी जरूरत अपूर्ण ना हो, पूर्ति के। परंतु हमने उसको अनायास नकार दिया कि चलो कोई नहीं है, मैं अपने बलबूते पर करता हूं। यही अंधकार है, यही अज्ञान है। और इस अज्ञान को दूर करने के लिए सद्गुरु को सद्गुरु के रूप में वही भेजते हैं। और जिस दिन उस शक्ति को समर्पण कर देते हैं, तो अध्यात्म जीवन की पूर्णता को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, गुरु कौन है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय शब्द का अर्थ है शास्त्र वेत्ता, शास्त्र को जो जानते हैं, शास्त्र के रहस्यों को जो जाना, श्रोत्रिय। और ब्रह्मनिष्ठ मतलब अभी उन्होंने ब्रह्म प्राप्त नहीं किए, ब्रह्म में उनकी मन और बुद्धि स्थिर है, ब्रह्म स्थिति नितराम उनकी चित्त वृत्ति जो है मन ब्रह्म में स्थिर है। ऐसा जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे सद्गुरु के शरण में जाओ। किस लिए जाओ? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अविगच्छेत। उस शक्ति को, उस अद्वितीय चैतन्य को, जिनके अनुग्रह से, कृपा से, करुणा से यह शरीर, यह संघात, यह संसार, यह व्यवहार निभ रहा है, चला रहे हैं, वो शक्ति को अनुभव करना है, उसको जानने के लिए सद्गुरु के पास जाना है। इसलिए भगवत भक्तजन, ईश्वर के अनुग्रह को, ईश्वर के कृपा को, ईश्वर के अनुकंपा को एक्सेप्ट करने के लिए भी एक योग्यता चाहिए। सब लोग ईश्वर के कृपा को अनुभव नहीं कर सकते। भाई बरसात तो हो रही है, बारिश, परंतु अपनी छतरी जो है हमने लगा के रखा है, तो उस बरसात हमको गीला नहीं कर सकते। उसी प्रकार इस हृदय में ऐसा एक विश्वास को पनपने हैं, इस हृदय में उस अद्वितीय शक्ति से ऐसा परिचय प्राप्त करा देते हैं गुरु, जो इस जीवन में एक पात्रता, एक योग्यता, ईश्वर के अनुग्रह को समझने के लिए भी एक योग्यता चाहिए। मैं कल वही बोल रहा था कि जो नहीं मिला उसके लिए हम ईश्वर को क्या क्या कहते रहते हैं, परंतु कभी भी हमने प्रयत्न नहीं किया कि बिन मांगे हमें क्या मिला। नहीं मिले का इसका एक लिस्ट, और क्या मिला उसका एक लिस्ट बनाइए। हमको लगता है हमारे जीवन में नहीं दिया, नहीं किया, नहीं मिला,
ये बड़ा होगा। परंतु अगर निश्चल भाव से आप लिख सकते हैं कि हमें बोध तक नहीं था, हमें पता तक नहीं था, परंतु वो दिया, और जब लगा कि ये बहुत अच्छा है तब उन्होंने और भी उसमें उत्तर उत्तर वृद्धि किए, और उसको उनके अनुग्रह को उनकी कृपा को प्राप्त करके हमने क्या किया, उन्हीं को अवज्ञा करने में सक्रिय हो गए। उनके अनुग्रह उनकी कृपा से इस जीवन चला और इस जीवन के श्वास से उनको नकारने में हम लग गए। भगवत भक्तजन गुरु वो है जो इस जीवन के उस नकारात्मक सोच विचार को, नेगेटिविटी को दूर करके एक सकारात्मक, विधेयात्मक, पॉजिटिव बुद्धि को वो दृढ़ कर देती है। इसलिए पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों है, तो जीवन से पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना कैसे हो सकते हैं? अगर हमारे बस के होता तो अब तक नहीं हो सकते थे अध्यात्म जीवन में। तो वो जो पॉजिटिव, वो जो सकारात्मक विचार है वो हमें देते हैं सदगुरु। हमारा मन किसी के प्रति, किसी के प्रति भी हम स्वीकार नहीं, वो है कैसे पता के, परंतु वो सदगुरु हमेशा प्रयत्न करते हैं, अरे भाई वो है, वो है, उसी के कारण ये मिल रहा है, तू जी रहे हो, तुम चल रहे, तुम्हारे श्वासें चल रही है, कौन है वो? वो सदगुरु परिचय करा देते हैं। और जिस दिन साधक उस शक्ति को अनुभव कर लेता है, उनके पास कुछ कर्तव्य नहीं होता है, सारा कर्तव्य समाप्त हो जाता है, तब उनके पास मौनता का एक अवकाश आता है। इसलिए भगवत भक्तजन प्रार्थना, किसी किसी मजहब, देखिए क्रिश्चियनिटी में क्या है बहुत, इसीलिए क्रिश्चियनिटी को जब बाइबल पढ़ा तो देखा केवल, खास करके ओल्ड टेस्टामेंट में देखिए कितने बिलीफ के ऊपर, विश्वास के ऊपर और प्रार्थना के ऊपर क्या जोर है। उनके सारे विधाओं में एकमात्र प्रार्थना ही संबल है, आश्रय है। और मैंने विचार करके देखा कि उन लोग उसको कैसे लेते पता नहीं, सचमुच उस प्रार्थना के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं। यहां तक हमारी दुर्गति है कि हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। वही शब्द का उच्चारण कर देना, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, कई बार बोला, परंतु न तो वो मेरे हुए न मैं उनका हो पाया। परंतु वही अगर हृदय की आवाज हो कि मैं तुम्हारा ही हूं, तो ये जो प्रार्थना है, प्र अर्थ न प्रकृष्ट अर्थ का निश्चय, नी प्रार्थना, उसको तोड़ते हैं तो प्र मतलब प्रकृष्ट, अर्थ, अर्थ मतलब वो जो परमात्मा जिनके उपस्थिति से, अनुग्रह से, कृपा से ये जीवन चल रहा है, उस अर्थ को निश्चय जिन्होंने कर लिया वो प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन प्रार्थना इतना सहज नहीं है। अगर मेरे अंदर विश्वास है, मेरे अंदर वो अनुभूति है, वो निश्चय है कि उनके कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, और उस दिन हमारे व्यक्तित्व से जो भी आहट भी निकले वो हमारे लिए, उस देव के लिए प्रार्थना। इसीलिए जिस दिन साधक उस शक्ति को अनुभव कर लेते हैं, तीन तरह से उसका अभिव्यक्ति है। एक तो वो चुप हो जाते, मौन, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो तो हृदयेश्वर है, वो तो सब जानते हैं, वो तो अंतर्जामी है, मेरे को क्या जरूरत है
क्या नहीं है, क्या हित है, क्या अहित है, वो जानते हैं। इसीलिए वो भक्त, वो साधक चुप हो जाते हैं। वो जानते कि तुम जानते हो और कुछ कहना नहीं है हमें। हमारी जो भी जरूरत है, जो भी प्रयोजन है, वो सब आप जानते हो। तो वो मौन हो जाता है। दूसरी बात है कि द्वितीय प्रकार के भक्त हैं जो प्रार्थना करते हैं कि ठीक है, तुम सब जानते हो, परंतु मुझे कहने दो, इसी में मुझे शांति है। वो प्रार्थना करते हैं। तो एक श्रेणी है कि जो मौन हो जाता है, बस कुछ बोलना नहीं, उस अद्वितीय अनुभव में स्थिर हो जाते हैं। द्वितीय है कि वो हृदयेश्वर है, तुम सब कुछ अंतर्जामी के रूप में जानते हो, परंतु मुझे बोलने दो, मुझे कहने के लिए अनुमति दो, मैं बोल करके शांत होना चाहता हूं। और तृतीय प्रकार के प्रार्थना है, अब उस देव को पाने की एक लालसा। भगवत भक्तजन, कल फिर इस बारे में बताऊंगा, समय अधिक हो गया। इसलिए ऐसा जो चांडाल और डीजे कोई भी हो, जीवन में गुरु अगर उपस्थित हुआ है तो समझना चाहिए वो ईश्वर के अनुग्रह है। और यही आद्य जगत गुरु शंकराचार्य आदिदेव महादेव को नमस्कार करते हैं कि आप किसी भी वेश में आइए,

0: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Muruga Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakto, abhi main jo kahani aapko sunane ja raha hu, wo ek aise sant ki kahani hai जो कि भगवान के नंदनवन या बगीचे की रक्षा और उनकी देखभाल करते थे। इस कहानी के पूर्व कुछ बातें समझना आवश्यक है। हमारे पूर्वजों ने जिन संभावनाओं पर विचार करके मंदिर को सभी सेवाओं का केंद्र बनाया था, उनमें से एक प्रमुख था भगवान के समीक्ष नंदनवन या बगीचों की स्थापना करना। इसके लिए मंदिर के निकट का एक भाग नंदनवन बनाने के लिए अलग रखा जाता था। उसमें फूलों के पौधे लगाए जाते थे, खाद डालने और सिंचाई करने की व्यवस्था होती थी। फूलों की रक्षा भी आवश्यक है। विचार करें तो यह नंदनवन कितने परिवारों या आजीविका का साधन बनता है। भगवान तो मामूली आंख का फूल और धूप चढ़ाने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर फूल मालाएं गूंथ कर उनको अर्पित करने में भावना मात्र से अधिक भी कुछ रहा होगा। भगवान तो किसी विशेष प्रकार की फूलमाला या वस्तु की मांग नहीं करते। हमारे पूर्वजों ने मंदिर के निकट नंदनवन की व्यवस्था समाज का एक अंग को आजीविका प्रदान करने के लिए ही किया था। इसके साथ ही उनका लक्ष्य प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण, पेड़ पौधे, पुष्पों, जड़ी बूटियों आदि की रक्षा करना भी था। यदि मंदिर सेवा से मिलने वाला काम व्यापारिक बुद्धि से देखा जाए तो कोई भी व्यक्तिगत लाभ हानि की बात सोच सकता है। 10-12 परिवारों को काम पर लगाने, मजदूरी देने के बाद लाभ न होने पर व्यापारी स्वयं को ऐसी समाज सेवा से अलग भी कर सकता है। इसी कारण हमारे समाज ने इस व्यवस्था को मंदिर सेवा का नाम दिया है। पुष्पों की क्यारियां लगाना, फूलों को चुनकर एकत्र करना, माला गूंथना आदि मंदिर सेवा के माध्यम से कई लोगों की आजीविका का साधन है। अभी मैं कहने जा रहा हूँ मुरुगर नायनार की कहानी। मुरुगर नायनार या मुरुगर संत का जन्म तमिलनाडु के चोल राज्य के पूंपगलूर नामक शहर में हुआ था। नियमित रूप से उपवनों से ताजे पुष्प चयन करना, उन्हें रंग बिरंगी मालाओं में गूंथ कर भगवान को चढ़ाना ही उनकी भक्ति का रूप था। पुष्प चयन करते हुए, माला गूंथते हुए और प्रभु को ये मालाएं अर्पित करते हुए हर क्षण उनके मुख से ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण चलता रहता था। अन्य समय भी अनाहत उनके मुख से नमः शिवाय से सजी हुई रहती थी। तमिल के प्रख्यात शिव भक्त तिरुज्ञान संबंधर के विवाह के अवसर पर ज्योति में लीन होकर शिव सायुज्य प्राप्त करने वाले कई लोगों में से एक थे मुरुगर। सेवा के अनेक रूप हैं। प्रायः हर सेवा जनता के लाभ के लिए होती है। कुछ का लाभ प्रत्यक्ष और कुछ का परोक्ष होता है। सेवा करने वाले व्यक्ति का कभी मन दुखित नहीं होता, वो समाज सेवा में प्रसन्नता प्राप्त करता है। प्रभु को पुष्प आदि हमारे सजाने पर भक्तों को उस शिवलिंग को देखकर जो आनंद मिलता है, इसी से जो सेवा करता है उसका मन भी आनंद प्राप्त करता है। इसी उद्देश्य से मुरुगर ने सदा शिवलिंग या शिव की प्रतिमा को पुष्प या फूलों से हमेशा सजीव करने की कोशिश की है। मुरुगर नायनार उस समय विलीन हो गए या फिर अदृश्य हो गए जब तिरुज्ञान संबंधर, जो कि और एक संत थे, उनके विवाह के समय भगवान ने तिरुज्ञान संबंधर संत और उनके सभी भक्तों, जिनमें मुरुगर भी थे, उन सबको अपने साथ उस शिवलिंग में ही विलीन कर लिया। उन्होंने एक ज्योति के रूप में आए और सारे भक्तों और तिरुज्ञान संबंधर और मुरुगर इन सभी संतों को देखकर एक साथ विलीन हो गए और अपने अंदर समा लिया।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, The next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: और वो दूसरा जो उसको क्या बोले? बोले वो जो पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहा है, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं, उतने जन्म तक वो इसी तरह कीर्तन करता रहे, फिर मरे, फिर पैदा हो, फिर कीर्तन करे, फिर मरे, फिर पैदा हो, फिर कीर्तन करे, तब उसको दर्शन देने के लिए जाऊंगा। कहते हैं वो जो पेड़ है वो इमली का पेड़ था, कहते हैं। बोलो कब मिलेगा उसको दर्शन? अब हैं संभव होगा उसको अब कि भगवान झूठ बोल रहे? उन्होंने कह दिया नारद जी को। नारद जी आए, पहले वाले को बता दिया, और आगे नारद जी बोले हां क्या कहा भगवान ने? बोले तू जिस तरह ये साधना कर रहा है पंचाग्नि, इसी तरह पांच जन्म तक लगातार पंचाग्नि तपेगा तब भगवान दर्शन देने के लिए आने वाले हैं, ये कहा है उन्होंने। हाय राम, पांच जन्म या तो पांच दिन बिताना मुश्किल पड़ रहा है, तो मर गया वही, उसी समय मर गया। कौन हो पंचाग्नि जो ताप रहा था? मर गया वही। नारद जी को तो बड़ा दुख हुआ, ये समाचार न सुना होता तो थोड़ा बचता भी, मर ही गया बेचारा। अब उसको भी संदेश तो देना है, क्या करे? गए जिस पेड़ के नीचे भजन कर रहा था, उसको तो पता ही नहीं कि पेड़ में पत्ते हैं कि नहीं, भजन किया जा रहा था। नारद जी को देखा, आ गए, बोले हाँ आपने मेरी बात कह दी भगवान से? बोले हाँ कह दिया। क्या कहा उन्होंने, कब दर्शन देने के लिए आने वाले हैं? बोले नहीं सुनो तो वही अच्छा है, हैं? वो पांच जन्म की बात में मर गया वो, और तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उस पेड़ में जितने पत्ते हैं, और पेड़ भी इमली का, बोलो कितने जन्म? उन्होंने कह दिया, भगवान ने ईमानदारी से यही कहा है कि उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक लगातार मरे, पैदा हो, फिर कीर्तन करे और कुछ न करे, है? तब मैं दर्शन दूंगा कहा है। तब तो ये सुनते ही वो तो और आनंदित तो हो गया, वाह भगवान ने संकल्प कर लिया है, हाँ मुझे अब दर्शन पक्का, उन्होंने लिख लिया अपने डायरी में है। अरे ऐसे हजार पेड़ के पत्ते बराबर तो जिंदगी ऐसे बर्बाद हो चुकी है, हुई है कि नहीं बोलो? हजारों पेड़ के बराबर, पत्ते के बराबर जिंदगी तो ऐसे बर्बाद हो चुका है। इससे पहले कितने जिंदगी गए, कितने जन्म गए, अनादिकाल से जीव अनादि है ना, सड़ेते अनादया, अनादिकाल से हिसाब करो अनगिनत। अब एक पेड़ के पत्ते तो गिनती में आ गए, कम से कम उन्होंने अपने डायरी में लिख दिया है पेड़ के नीचे एक भक्त मेरा भजन कर रहा है, उसको पेड़ के पत्ते खत्म होते ही मुझे दर्शन देने जाना है, नोट कर लिया फाइनल, क्यू में आ गए ना अब तो, बस बड़े नाचते हुए भजन करने लगा, मन पूरी तरह भगवान में समर्पण कर दिया। तब तो नाचते नारद जी समझे ये तो पागल हो गया है। तब उतने में तो भगवान गरुड़ में चढ़ के आ गए, वो तो कीर्तन में मस्त, उसने तो देखा ही नहीं भगवान को। नारद जी देखते हैं, अरे क्या बात है, आप अभी आ गए, पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन देने की बात वहां हमसे कहा, और यहां अभी आ रहे हो, आप झूठ बोलते हो? भगवान ने कहा कि नारद जी हम झूठ नहीं बोलते, फिर अभी क्यों आए इसी जन्म में, वो तो मरा भी नहीं अभी। बोले बेटा मैं क्या करूं, पेड़ में पत्ते हो तो फिर मैं ना हूं, पेड़ में पत्ते एक भी दिखा दो मैं अभी चला जाऊंगा, यहीं से वापस हो जाता हूं। नारद जी देखने लगे तो अभी तो पूरा हरा था, अभी एक भी पत्ता नहीं है, ले जी देखते हैं इधर उधर, कहीं एक पत्ता मिले तो भगवान को वहीं से बैरंग पर भेज दे, कहीं कोई पत्ता नहीं मिला। भगवान ने पूछा नारद जी कोई पत्ता मिला? बोले नहीं महाराज। अब हमने जो कहा था वो बात तो हमको पूरा कर रही है कि नहीं, बोलो? पत्ते ही नहीं है तो क्या है? इसलिए आना पड़ा मुझे। ये वो कैसे गया महाराज, पत्ते कहां चले गए? मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यदि मेरा अनन्य आश्रय लिए बिना पत्ते गिरने का प्रतीक्षा करते तो कभी भी संभव न होता। एक गिरता दूसरा पैदा होता, दूसरा गिरता तीसरा पैदा होता, एक ही साथ कभी भी पेड़ में पत्ते गायब न होते। और हमने कह दिया कि उसको दर्शन देना जाना है माया, कब बोले उसके पत्ते जब गायब हो तब हमको दर्शन देने जाना है। एक भी पत्ता रहेगा तो हम उसको दर्शन नहीं दे पाएंगे। तो योग माया आई, सारे पत्ते को कहां गायब किया, कहां पता ही नहीं चला। और भगवान को जाकर योग माया ने कह दिया, महाराज हमने काम पूरा कर दिया आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार, पेड़ में अब एक भी पत्ता नहीं है, जाइए। आए है? उसको स्पर्श किया, उसको तो पता ही नहीं था, गाए जा रहा है, नाचे जा रहा है, कीर्तन किए जा रहा है, जय हो कृपालु, जय हो दयालु, आपके हृदय में मेरा भी स्थान मिल गया। हजारों लाखों जन्म के बाद ही सही, लेकिन दर्शन पक्की हो गई। तो उसने जब भगवान ने स्पर्श किया तो उसने आंख खोली तो साक्षात भगवान नारायण का दर्शन किया। तो एक तपस्या कर रहा है कठोर से कठोर, लेकिन मन परमात्मा को समर्पण नहीं कर रहा है, उसका योग हट योग है। लेकिन वह भजन कीर्तन कर रहा है, मन परमात्मा को समर्पण कर रहा है, तो उसका योग शिव योग है। शंकराचार्य ने यहां शिव योग कहा, शिव भक्ति, इसलिए शिव योग। गुहायाम गेहेवा बहिरपि बने वा दृशिखरे जले वा वन्नौवा वसतु वसते किं वद फलम। अलग अलग जगह रहकर योग करते हो तो करें, उससे उन लोगों का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? कुछ नहीं प्रयोजन सिद्ध होने वाला। सदा यस्यै मान्तः करणम, जिसके अंतकरण में सदा नित्य निरंतर सतत, अपि संभो तव पदे, आपका चरण और जिसके अंतकरण का योग हो, संबंध हो, तब स्थितम चेद योगो असौ असौ योगः तव पदे चेतो स्थितम, आपके चरण में जिस समय चित्त स्थित हो जावे वही योगो असौ असौ योगः, वही सबसे उत्तम योग है। बाकी हठ योग क्रिया योग कुछ योग करते रहो कपाल भांति, भांति भांति का आसन करते रहो, चित्त यदि परमात्मा में जुड़ गया तो वो सबसे उत्तम योग है, वही सच परम योगी। और सबसे बड़ा योगी तो वही है जिसका चित्त परमात्मा के साथ जुड़ गया, और वही योग है जो चित्त परमात्मा के साथ जुड़ गया वो शिव योग है, और वो चित्त वाला व्यक्ति परम योगी है और सच सुखी, और संसार में वही सुखी होगा। रावण भी तो यही कहता है, भाई रावण जैसा दुष्ट व्यक्ति को भी संसार में एक चीज तो पूरी पक्का भरोसा है कि शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। शिवतांडव स्तोत्र पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? रावण कृत शिवतांडव स्तोत्र, रावण क्या कहता है? कदा निलिंप निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलि वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भग्न पाप शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। मेरे जीवन में वो अवसर कब आएगा, मेरे जीवन में वो अवसर कब आएगा जब मैं पवित्र गंगा के नदी के किनारे बैठा हुआ हूं और सदा दोनों हाथ शिव चरण में प्रणाम के लिए जुड़े हुए हों, शिवेति मंत्रमुच्चरण सतत सतत निरंतर अखंडित रूप में शिव शिव ये द्वय अक्षर का मंत्र सतत जप चलता हो, तभी मैं सुखी होऊंगा। और वो अवसर मेरे जीवन में कब आएगा? तो रावण जैसा व्यक्ति भी ये कहता है सुखी होने के लिए तो शिवेति मंत्रम उच्चरण, शिव नाम जप और शिव स्वरूप का ध्यान, हाँ वाणी सतत मंत्र जाप में लगे रहे। पहले का आ गया ना श्लोक में, है पहले श्लोक आ चुका है, हमारे पास जो साधन है प्रकृति का दिया हुआ, हाथ पांव मन आदि ये सब इंद्रिया आदि, इसका प्रयोजन क्या है? ये सब सतत भगवान में समर्पित हो जाए तभी जीवन में सुख का अनुभव होगा, तभी वो जीवन सुखी होगा। अन्यथा इसके अतिरिक्त, शिव के अतिरिक्त सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। यह जानता हुआ भी आवृतम ज्ञान में तेना, गीता में कहा ना आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण दुष्पूरम अनले न चा। ये देखो गीता में कहा ये काम रूप जो दुष्पुर काम रूप है वह ज्ञानी के लिए, ज्ञानी का जो ज्ञान है उसको भी आवृत कर देता है ढक के। आवृतम ज्ञान में तेने ज्ञानी नो नित्य वैर शत्रु है वो। और रावण का ठीक यही हो रहा है, वो जानता है सुखी होने के लिए शिवाश्रय ही एकमात्र उपाय है। ये जानते हुए उसके ज्ञान को काम रूपेण दुष्पूरेण आवृतम, उस ज्ञानम ज्ञान आवृत हो जाता है तो फिर क्या करेगा? तो विषय के कामना से वह भटकता रहता है और दुखी होता रहता है, भटकता रहता है दुखी होता रहता है, और जान रहा है फिर भी शिव योग साधना नहीं कर पा रहा है। और उसी बात को और आगे कहते हैं, असारे संसारे निज भजन दूरे जड़ धिया भ्रमंतम माम अंधम परम कृपया पातु मुचितम मदन्य को दीना तव कृपण रक्षाति निपुण त्वदन्य को वामे त्रिजगति शरण्य पशुपते। असारे संसारे, संसार का नाम क्या है? आषाढ़, असार है। यहां तो हम लोग तो आषाढ़ बोलते हैं ना, महीना का नाम शुरू हो गया ना आषाढ़ है, आषाढ़ महीना शुरू हुआ कि नहीं? हाँ, नेपाल में आषाढ़ नहीं बोलते, असार बोलते हैं, सीधे असार बोलते नेपाली भाषा में। हाँ, लेकिन उनका असार अभी शुरू नहीं हुआ है, नहीं असार चल रहा है, अभी समाप्त तो होने वाला है। वो संक्रांत से मानते हैं, पंजाबी बंगाली और नेपाली संक्रांत से संक्रांत महीना मानते हैं। तो आप लोग एक कम से एक कम महीना मानते हो, है ना, गुजराती अमावस्या के बाद के एक कम से अमावस्या तक महीना मानते हैं, मारवाड़ी लोग पूनम के एकम से पूनम तक महीना मानते हैं, है? अब पंजाबी नेपाली बंगाली संक्रांत से मासांत तब जब महीना मानते हैं। असार, संसार कैसा है तो बोले असार है। संसार में यदि खोजने जाओगे कुछ भी सार मिलने वाला नहीं है, छार मिलेगा सार नहीं मिलेगा। मिट्टी में यदि खोजने जाओगे, जितने खोदते जाओगे क्या मिलेगा? क्षार मिलेगा। क्षार माने राख या मिट्टी, धूल, संस्कृत भाषा में उसको क्षार कहते हैं, धूल को। वही तो पृथ्वी जितना खोजोगे मिट्टी वही तो आएगा। इसलिए असार, असारे संसारे। और सार कौन है? सार और श्लोक नहीं है कि सार भगवान शिव के लिए आता है, उस श्लोक में भूल गए। नहीं नहीं, त्रैलोक के सारे हरे हैं, भगवान शिव का नाम है ना, त्रैलोक के सारे हरे। हाँ, तो सार तो भगवान शिव ही है, हर ही तीन लोक के सार है, पृथ्वी, मर्त्यलोक, देवलोक, पाताल लोक। तीनों लोक में, देवलोक से स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत, समझे, और मर्त्यलोक अंतरिक्ष और पृथ्वी, और पाताल माने नीचे के सात लोक, ये सब तीन लोक के अंतर्गत आ जाते हैं। और तीन लोक में सार नाम केवल भगवान शिव का है, बाकी सब निस्सार है। जो शुगर केन होता है ना, सैरड़ी, गन्ना, उसका सार क्या है? हैं? रस। और रस का सार क्या है? चीनी। समझ गए कि नहीं? तो पूरे गन्ने का सार क्या है? तो कोलू में डालकर, मशीन में डालकर जब रस निकाल दिया जाता है तो उसके पीछे जो निकलता है वो क्या है? असार। सार इधर आ गया, असार उधर चला गया। कपड़े में सार क्या है? कपास है ना। मशीन में इसको डालोगे तो क्या निकलेगा? इसका सार तो कपास ही है। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद में मधु विद्या है ना, छांदोग्य उपनिषद मधु है, मधु विद्या। सारे वेद का सार क्या है? सारे वेद का सार ऋग्वेद। तीनों वेद में महत्वपूर्ण ऋग्वेद। ऋग्वेद का सार गायत्री, गायत्री का सार व्याहृति, व्याहृति का भी सार प्रणव, ओमकार, ओमकार भी तीन मात्रा वाला। और अमू मां का सार है चंद्र बिंदु, उसका सार है बिंदु, और शिवलिंग तो बिंदु ही तो है, है? कल हम किसी के भोजन करने गए थे तो वहां चर्चा हुई, तो किसी ने हमसे पूछा, महाराज ये ओमकार में ये जो अलग अलग हैं इनका क्या अर्थ है? बोले नीचे जो ओम है वो तो आ उ म है, और ये जो चंद्रमा जैसा है इसका क्या अर्थ है महाराज, और बीच में बिंदु है उसका क्या अर्थ है? तो हमने बताया कि सारे जगत का सार सगुण साकार परमात्मा, सारा संसार का सार क्या है? सगुण साकार परमात्मा। सत्वगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से रुद्र, ये क्या है? सारे संसार का सार है। और इन तीन का सार क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों का सार क्या है? ईश्वर। ध्यान देना, वेदांत की परिभाषा अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार, ईश्वर सगुण निराकार है। ईश्वर सगुण निराकार है, चतुर्भुज नारायण, चतुर्मुख ब्रह्मा है, और जटाजूट रुद्र, ये क्या है? सगुण साकार है। हाँ, और एक और इनका सार वो है सगुण निराकार। सगुण निराकार को ही वेदांत में ईश्वर कहते हैं, और उसका भी सार क्या है? निर्गुण निराकार। तो अ उ म क्रम से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त त्रिदेव है, और चंद्रमा सगुण निराकार ईश्वर का रूप है, और बिंदु निर्गुण निराकार परमात्मा का रूप है। परमात्मा सबसे ऊपर, निर्गुण निराकार, उसे थोड़ा लोअर क्वालिटी का कौन है? ईश्वर। चंद्रबिंदु थोड़ा नीचे है ना, और उससे और नीचे क्या है? पूरा ओंकार अहुमा। हाँ, देख लो, जागृत, जागृत का सार स्वप्न,

ताले निज भजन दूरे। शंकराचार्य जी तो ये कहते हैं तुम कम से कम और का भजन न करो, अपना तो भजन करो। किसका भजन करो? निज भजन तो करो। भजन का अर्थ क्या होता है? भज सेवायाम, धातु से भजन बनता है। तुम और की सेवा करो चाहे न करो, अपनी सेवा तो करो भाई। अपनी सेवा का मतलब क्या? अपना हित तो करो। संसारी लोग संसार के औपचारिकता निभाते निभाते क्या में अपना अहित करके बैठ जाते, फॉर्मेलिटी में लगते संसार का औपचारिकता। ये करना चाहिए महाराज, ये छोड़ना चाहिए। शादी कर लेने के बाद तो पत्नी का निर्वहन तो करना ही पड़ेगा, बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाना ही पड़ेगा। सारी दुनिया का औपचारिकता ही करते रह जाओगे, अपना क्या करोगे तुम? हैं? शंकराचार्य जी ऐसे लोगों को कहा निज भजन दूरे। अरे निज माने कौन? जीव कौन है? शिव ही तो है। शिव भजन ही निज भजन है। शिव की सेवा ही अपनी सेवा है। हाँ, औरों की सेवा, बाकी तो संसार की सेवा करते रहो, क्या मिलने वाला है? क्योंकि सार तो निज है। असारे संसारे निज भजन दूरे जड़ धिया, भ्रमंतम माम अंधम। शंकराचार्य जी ने तो कह दिया कि मैं अंधा हूं, अंधा हूं, इसलिए मैं संसार में भटक रहा हूं। अंधा व्यक्ति भटकता है। आंख वाला भटकता है? आंख वाला तो भटकता नहीं, अंधा व्यक्ति भटक जाता है बेचारा। उसको पता नहीं किधर जाना है, चलता जरूर है लेकिन देखे बिना चलता है। चलता जरूर है देखे बिना चलता है, करता बहुत है लेकिन समझे बिना करता है, करता बहुत है लेकिन अपने लिए न कर दुनिया के लिए करता है, यही तो समझे भी न करता है। भ्रमंतम माम अंधम। और आपका स्वभाव कैसा है? परम कृपया पातुम उचितम। तो आपका ये स्वभाव होना ही चाहिए, उचित ही है कि मुझ अंधे व्यक्ति संसार में भटकते हुए को राह दिखाना आपका कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि नहीं अंधे को रास्ता दिखाना है? आंख होने वाले का कर्तव्य क्या है? अंधों को राह दिखाओ। और शिवजी के पास तो तीन तीन आंख है, उनका कर्तव्य क्या है बोलो? है शिवजी के पास तो तीन तीन आंख है, इसीलिए उनका मूल कर्तव्य क्या बनता है? हमारे जैसे अंधों को राह दिखाना आपका कर्तव्य है। भ्रमंतम माम अंधम परम कृपया पातुम उचितम, मदन्य को दीना। हे परमात्मा, संसार में यदि आप खोजने जाओगे, दीन दुखी को खोजने जाओगे, तो मेरे से बढ़कर दीन दुखी और कौन मिलने वाला है? संसार में हर व्यक्ति से पूछो तुम्हारा क्या हाल है महाराज, हर व्यक्ति कहता है महाराज मेरे से दुखी और कोई संसार में नहीं है। हर व्यक्ति ये कहता है दुख है, भले मेरा जैसा दुख और को न देवे भगवान, किसी को और को न दे, मैं बहुत दुखी हूं, सारा दुख मेरे ऊपर है। मदन्य को दीन तव कृपण रक्षाति निपुण। मैं कृपण हूं, दीन हूं, और आप कृपण के रक्षा करने में निपुण है, कुशल है। आपको तो खाली एक बार कृपा दृष्टि एक बार देख देने से काम चल जाएगा है? एक बार थोड़ी सी दया और करुणा का भाव लेकर मेरे तरफ देख दो, आपकी कृपा कटाक्ष ही हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा। क्योंकि आप कृपण रक्षा अति निपुण है। आजकल मीडिया में आ रहा है, एक कई हरियाणा में कहां पर है, एक लड़की बोरबेल में अंदर घुस गई ना,

0: और सब लगे हुए बेचारा उसको निकालने के लिए, सब लगे हुए हैं, अभी तक निकालने में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन मरी नहीं है क्योंकि वो ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से मर गई। अच्छा चलो वो भी गया, तीन दिन तो रक्षा कर दिया भगवान ने, और तुम लोग नहीं आए तो अब कब तक रक्षा करेगा वो, तीन दिन तो रक्षा कर दिया उसने तो मर गए वो भी, चलो जाने दो। निपुण मदन्य को दीन स्तव कृपण रक्षाति निपुण तदन्य को वा मे त्रिजगति शरण्य पशुपते। हे पशुपते, मैं पशु हूं, आप पशुपति हैं, आपके अलावा इस संसार में और कोई शरण्य मेरा नहीं है, मैं किसके पास जाऊं, किसके शरण में जाऊं, कि ना क्योंकि कृपण की उद्धार करने का काम आपका है। कृपण शब्द का अर्थ उपनिषद में, आपके व्यवहार में तो कृपण शब्द का अर्थ कंजूस होता है, लेकिन वेदांत में कृपण शब्द का अर्थ कंजूस नहीं होता है। यो वा यतद अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति सकृपण, याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे गार्गी, इस संसार में अपने स्वरूप को जाने बिना जो मरता है वो कृपण है। युवा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति सकृपण। और अर्जुन ने भी कृपण भाव को ही पहले कहा, हे महाराज मैं कृपण हूं, कार्पण्य दोष मुझ में है, और अपहता मेरे स्वभाव को वो कार्पण्य दोष के द्वारा अपहित पिहित हुआ है, ढक गया है, इसलिए अपने स्वरूप को अपने कर्तव्य को मैं नहीं जान रहा हूं, और आप उस कृपणता को दूर करने में निपुण हैं, क्योंकि भगवान शिव ही निपुण है, क्योंकि शिव ही ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या ही कार्पण्य दोष को अविद्या को नष्ट करने में समर्थ है। ईशान सर्व विद्या नाम ईश्वर सर्वता ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणो अधिपतिर। हाँ, इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा मेरा शरण्य केवल आप हैं, आपके अलावा इस संसार में कोई शरण्य नहीं है, तो आपको छोड़कर मैं कहां जाऊं, तो क्या करूं, मैं अंधा हूं, अंधे को रास्ता दिखाना आपका काम है, मैं दीन हूं, दीन को मदद करना आपका काम है, और मैं कृपण हूं, अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान देना आपका काम है, आपको छोड़कर अब यह संसार में किसी का आश्रय मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि संसार असार है, आप सारा संसार के सार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। इन ऑर्डर टू मेक दीज एक्सटेंसिव रिसोर्सेज मोर एक्सेसिबल एंड बेनिफिशियल टू अवर रेडियो लिसनर्स, वी हैव रीऑर्गेनाइज्ड अवर प्रोग्राम शेड्यूल। Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahima, presented by Swami Santoshi Mataji. Thank you. ओम नमः शिवाय।
3: मेरे आदि अंत का पता करके जल्दी मेरे पास लौट करके आएगा वो ही महान होगा। ब्रह्मा जी रजोगुणी थे, रजोगुण अहम का प्रतीक होता है, और ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम तो ऊपर की तरफ सिर की तरफ जाएंगे और पता लेकर के आएंगे। ब्रह्मा जी ने अपनी यात्रा ऊपर की ओर आरंभ कर दी और भगवान श्री हरि विष्णु नीचे पाताल की ओर, गरुड़ को लेकर पाताल की ओर भगवान श्री हरि चले। भगवान तो पाताल की ओर जब दोनों चलने लगे तो आकाश की ओर जैसे ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए उड़ करके, तो मार्ग में उन्हें एक गाय मिल गई। जब गाय मिली तो गाय से पूछा, तुम कहां से आ रही हो? ब्रह्मा जी इतने थके थे कि गाय माता कहती है कि ब्रह्मा जी आपको इतना श्रम और इतने आप थके हुए हैं। बोले बहुत समय से चल रहा हूं। कहां चल रहे? बोले शिव का, इस लिंग का, ज्योतिष स्तंभ का पता लेने जा रहा हूं सिर्क। कहा महाराज ऐसी भूल मत करना, न जाने कितने कल्प से मैं चली आ रही हूं, अब तक मुझे पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा तो एक काम करोगे? बोले हाँ, बात ये है कि जब पूछा जाए तो तुम हमारे साथ मिल जाना और कहना कि ब्रह्मा जी ने हाँ सचमुच इस स्तंभ का ऊपर का जो सिरा है उसे इन्होंने देख लिया है। मैं वहीं तो थी, दूध का धार चढ़ा रही थी, वहीं से मुझे ब्रह्मा जी अपने साथ लिवा लाए, साथ लेकर के आ गए। इसी बीच एक फूल मिल गया, केतकी का फूल। केतकी का फूल केतली केतकी से पूछा, तुम कहां से आ रही हो इतनी सुगंध? केतकी ने कहा कि मैं कई कल्प हो गए हैं भगवान शिव के सिर से निकलकर नीचे की ओर आ रही थी और मुझे न जाने कितने कल्प हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम एक काम करना, मेरे साथ मिल जाओ और तुम मेरी गवाह दे देना, बता देना कि हाँ मैं शिव इस लिंग के मस्तक पर चढ़ी हुई थी, वहां से ब्रह्मा जी साथ लेकर के आए। जैसे साथ लेकर वो ये दोनों गवाह तैयार कर लिए और दोनों गवाह तैयार करके साथ में लेकर ब्रह्मा जी लौट आए और भगवान श्री हरि नारायण नीचे पाताल की ओर जाते हुए वराह भगवान को साथ, नारसिंह वाराही शक्ति को लेकर जब नीचे घूमने के लिए गए, ढूंढने के लिए गए, तो शेष बड़ी लंबी लंबी सांस लेकर के बड़ी बड़ी गहरी गहरी अपनी सांसें छोड़ रहे थे। पूछा शेष जी से, महाराज आप इतनी गहरी गहरी सांसें, लंबी लंबी सांस जो ले रहे हैं, इतने श्रमित हुए हैं, इसका कारण क्या है? कहा महाराज न जाने कितने कल्प से मैं शिव इस लिंग का अंत लेने के लिए जा रहा हूं, पर नीचे का मुझे अभी तक कहीं ये अंत नहीं प्राप्त हुआ। इतना थक चुका हूं जिस थकान को दूर करने के लिए मैं अपनी लंबी और गहरी सांसें ले रहा हूं। भगवान श्री हरि ने कहा महाराज, शेष भगवान बोले महाराज इतना श्रम मत करिए कि आप नीचे जाएं। मैं इतना थक चुका हूं, मुझे अंत नहीं मिला। आप इतने थके हुए श्रमित हैं, आइए आप थोड़ी देर मेरे पर विश्राम कीजिए। भगवान श्री हरि को अपने ऊपर शेष जी ने लिटा लिया, उन्हें आराम विश्राम दिया और भगवान नारायण उठे और उठकर जब शिव उस लिंग के पास में आए तो ब्रह्मा जी को पहले वहां उपस्थित देखा। भगवान नारायण भी आ गए। अब इस बीच पूछा गया, आकाशवाणी हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसका अंत लेकर आया हूं, मैंने भगवान का इस लिंग का मस्तक देखा है, ये दो मेरे साथ में साक्षी हैं, अपने साक्षी आगे कर दिए। गाय से कहा तो गाय ने भी सिर हिला दिया। केतकी से पूछा तो केतकी ने भी हामी भर दी झूठी। जैसे ही ब्रह्मा जी झूठ बोल करके बोले, ब्रह्मा जी ने जिस मुंह से झूठ बोला था, देखते देखते उसी शिवलिंग से जो अग्निमय था, ज्योतिर्मय था, वो देखते देखते एक श्याम रूप में एकदम सांवला और छोटे से उस अग्नि के तेज से काला बाहर निकला, कालिमा बाहर निकली, जो देखते देखते एक बालक के रूप में प्रकट हो गई, वही भगवान भैरवनाथ हैं। बोलो शंकर भगवान की। भगवान भैरव के रूप में, एक बटुक के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने जिस मुंह से झूठ बोले थे उस मस्तक को काट करके अलग कर दिया। तब तक ब्रह्मा जी के पांच मुख थे और आज ब्रह्मा जी का वो मुख उनके मस्तक से अलग हो गया और उन्हें झूठ बोलने की सजा दी गई। मस्तक तो अलग कर ही दिया, वो सिर तो उनके शरीर से हटा ही दिया और साथ में ये श्राप भी दिया कि जाओ तुम झूठ बोलो इसलिए तुम्हारी पूज्यता नष्ट होगी, अर्थात तुम्हारी कहीं कोई पूजा नहीं करेगा। जब ब्रह्मा जी बहुत रुदन करने लगे, भगवान शिव ने कहा अच्छा तो जाओ, तुम्हारे बिना कभी यज्ञ संपन्न नहीं होगा। जब जब यज्ञ का काम होगा तब तब ब्रह्मा जी का आह्वान किया जाता है, कुसा का ब्रह्मा बना करके यज्ञ वेदी के स्थान पर उन्हें बिठाया जाता है, अर्थात ब्रह्मा जी की पूजा होती है और उसके अतिरिक्त किसी कार्य में भी कहीं ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं होती है। इसीलिए देखने को मिलता है कि सारे भारत में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर राज में, उसके अतिरिक्त कहीं उनका दूसरा मंदिर नहीं है। केतकी को श्राप मिला कि जाओ तुम पूज्य नहीं रहोगी। केतकी के बार बार रुदन करने पर भगवान शिव ने कहा, अर्थात भैरव जी ने कहा कि जाओ तुम झूठ बोली हो, तुम्हें सजा तो यही मिलेगी केवल एक दिन। तुम अन्य देवताओं में तो चढ़ोगी परंतु एक ही दिन तुम्हारा दिन होगा, उसे कहते हैं केवड़ा तृतीया। तृतीया एक तिथि के दिन केवड़ा तृतीया कहते हैं, केवड़ा की पूजा होती है। अन्य देवताओं में तो तुम चढ़ोगी परंतु शिव के समीप नहीं, अर्थात शंकर जी को केवड़े का इत्र, केवड़ा और केवड़े का पुष्प कभी चढ़ता नहीं है। तो कहने का भाव था कि वो केतकी को भी ये सजा मिली और गाय से कहा कि तुम झूठ बोली हो, तुमने झूठ के लिए सिर हिलाया है इसलिए जाओ तुम्हारे मुख की पूजा नहीं होगी, तुम्हारी पूंछ की पूजा होगी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी पूंछ की, और इसका तुम्हें श्राप ये मिलेगा, झूठ बोलने का तुम्हें दंड ये होगा कि कलयुग में जाकर तुम जिस मुंह से झूठ बोली हो उसी मुंह से तुम्हें अपवित्र अर्थात खाने को मिलेगा, विष्टादि खाने को तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार गाय को भी श्राप दिया गया। भगवान शिव श्री हरि विष्णु शांत थे और तब भगवान शिव ने कहा कि भी तुमने सच बोला है और सत्य को स्वीकारा है इसलिए जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि संसार में सबसे अधिक पूजा तुम्हारी होगी, सबसे अधिक पूजा तुम्हारी होगी। और सर्व भगवान शिव हरि ने, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें सर्व पूज्य देव की प्रधानता दी गई और भगवान उसी समय ज्योतिर्मय लिंग के रूप में जो प्रकट हुए थे वही ज्योति बारह जगह में जाकर, वो लिंग बारह जो जगह स्थान पर जाकर गिरी और वही वो दिव्य ज्योति प्रकट हुई, वही बारह ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी के विवाद को दूर करने वाला ये जो परम तत्व शिव है, अर्थात जिस भेद को, ब्रह्मा विष्णु के भेद को मिटा करके उन्हें अभेदता को प्रदान कराने वाला, अर्थात शिव तत्व वो है जिसमें कोई भेद नहीं है, जिसमें कोई कलंक नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा जो सनातन तत्व है वो शिव है। इसीलिए शिव की महिमा मही मन पारंते, अपार उसकी, अपार शिव की महिमा है। भला शिव के, इस शिव के समान दाता को नाही, संसार में उनकी दान की महिमा तो भला किसी से क्या छुपी हुई है। ऐसे महिमावान शिव जिनके दान की महिमा इतनी अपरंपार है, अर्थात शिव के दान से कौन छुपा हुआ है। कितना बड़ा दान है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, हलाहल नामक विष निकला और जो विष सकल सृष्टि को समाप्त करने के लिए, सकल सृष्टि समाप्त होने जा रही है, त्राही त्राही कहकर सृष्टि कांप उठी है, देवता लोग घबरा गए हैं और किसी में ये साहस नहीं है कि इस विष की दाहकता को समाप्त कर सके। ऐसे विकट समस्या गम, इतनी इतनी परिस्थिति देवताओं के सामने आई कि कोई आगे बढ़ करके इस विष को भला कैसे शांत करेगा। सकल सृष्टि समाप्त हो जाएगी, अब कोई शेष बचेगा नहीं। इतनी विपत्ति आने पर भगवान शिव ही है। माँ पार्वती भगवान शिव की ओर निहारती हैं, देखती हैं। शिव चाहते हैं कि माँ कुछ कह रही है, माँ क्या कह रही है, यही कह रही है, हे भोलानाथ, हे शिव, तुम्हारे अतिरिक्त, हे देवादि देव, और कौन देव है, किसमें ऐसा सामर्थ्य है, कौन इतना समर्थ है, कौन इतना बलवान है कि जो इस विश्व से सृष्टि के विनाश से बचा सके, इस महाविनाश को कोई रोक सकता है, तो केवल महादेव आप ही रोक सकते हैं। भगवान शिव ने उस विष को लिया और लेकर के अपने कंठ में अवरोधन कर लिया, कंठ में रोक लिया। भगवान शिव मन में विचार करते हैं, यदि ये विष मैं सीधे अपने मुंह के रास्ते मुख में ले लूंगा, विष पीने के लिए तो विष को मुख में लेना पड़ेगा, और मुख में यदि विष लूंगा तो मुख के अंदर परमात्मा का नाम रहता है, राम नाम रहता है, अर्थात हरि का नाम ही राम है। राम कहो, हरि कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, अर्थात भगवान शिव के मित्र का नाम। मित्र का नाम तो निरंतर मुंह में रहता है नारायण। जिससे आप स्नेह करते हैं उसका नाम कभी भूलते हो क्या? वो नाम विसराया नहीं जाता है, भूला नहीं जाता है, भूलने पर भी वो याद रहता है। अर्थात भगवान शिव का नाम मुख में निरंतर अपने परम मित्र हरि का नाम रहता है। बोले, हरि का नाम भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों? आप लोग, गोस्वामी जी लिखते हैं, मंगल भवन अमंगल हारि उमा सहित जय जपत तिदारी। भगवान शिव निरंतर जिस नाम को जपते हैं, जिस नाम का रटन करते हैं, कभी भूलते नहीं। ऐसी प्रगाढ़ मित्रता, ऐसी अभिन्न मित्रता शिव की नारायण के साथ में कैसे हो गई? बोली, ये मित्रता की साक्षता क्या है, ये यही कथा है जो अभी अभी आपने सुनी कि नारायण सत्य है, नारायण सत्य है, और शिव को प्रिय क्या है? नारायण शिव को प्रिय है सत्य। अर्थात जो सत्य है वो शिव को प्रिय है, और सत्य का ही रूप है शिव, और शिव का ही रूप है सत्य। सत्य से शिव को अलग नहीं किया जा सकता, और शिव से सत्य अलग नहीं है, सत्य से शिव ने अलग नहीं है। इसीलिए कहा, तन में मना शिव संकल्प, वो शिव सत्य है, सनातन है, और दोनों की मित्रता है। सत्य कहने से नारायण है और शिव कहने से कल्याण है। इन दोनों में भेद नहीं किया जा सकता, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान शिव को नारायण प्रिय है, अर्थात सत्य प्रिय है और वो सत्य उनके मुख में रहता है। अभिप्राय ये है, जो सत्य बोलते हैं वही शिव को प्रिय है। असत्यवादी का मस्तक तो शिव के समक्ष कट जाता है। असत्य भगवान शिव को प्रिय नहीं है। कोई ये चाहे कि मैं शंकर को प्रसन्न करूं और बोलूं असत्य, तो ये कदापि संभव नहीं ना। इसमें शिव की प्रियता नहीं हो सकती, शिव की प्रसन्नता नहीं हो सकती। शिव की प्रसन्नता तो सदैव सत्य पर है। भगवान शिव ने सोचा, यदि सत्य के साथ विष जुड़ गया तो सत्य की महिमा घट जाएगी। लोग कहेंगे इसके साथ तो कड़वाहट जुड़ी हुई है, अर्थात विष जुड़ा हुआ है, इसे कोई लेना पसंद नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। जिसमें केवल केवल सत्य है, माने मिठास है, मिठास के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज नहीं है, वो तो केवल सत्य है, भगवान का नाम है। भगवान शिव ने तब उसे मोह में न लेकर के कहां लिया, बोले सीधे उसे अपने कंठ में उतार लिया, घिटक लिया भगवान शिव ने, कंठ के अंदर ले लिया और कंठ में अवरोधन कर लिया, रोक लिया वहीं पर, और उतना स्थान नीला पड़ गया तो भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया। और दूसरी बात बहुत सुंदर, शिव कौन? शिव वो है जो समुद्र का, ये विष क्या है? बोली ये विष है समुद्र का दोष, समुद्र का सब दुर्गुण। यू तो समुद्र का नाम है रत्नाकर, जिसके भीतर अनेक अनेक रत्न छुपे हुए, माने अनेक अनेक गुण हैं। समुद्र से ही लक्ष्मी निकली हैं, समुद्र से ही चंद्रमा निकले हैं, समुद्र से ही 14 रत्न निकले, अमृत भी उसी से निकला, धनवंतरी भी उसी से निकली, कामधेनु भी उसी से निकले, कल्प वृक्ष भी उसी से निकले, ऐरावत हाथी भी उसी से निकले, उच्च सवा नामक घोड़ा भी वहीं से निकला। अर्थात अनेक रत्न निकले हैं, परंतु अनेक रत्नों में जहां रत्ना करके भीतर से अनेक अनेक रत्न निकले, छुपे हुए रत्न प्रकट हुए, तो वहां उसका एक दोष भी निकला, विष भी निकला। कहने का तात्पर्य ऐसा है, अस को जन्मा जगमाई, ऐसा कौन है, कौन पैदा हुआ है जिसमें केवल गुण ही गुण हो, अवगुण न हो? जहां गुण रहते हैं वहां अवगुण रहते हैं, और जहां अवगुण रहते हैं वहां गुण रहते हैं। गुणों के साथ गुणों का पर्याय यदि आप लेकर के चले तो उसके साथ साथ अवगुण मिलेंगे, अवगुण के साथ गुण मिलेंगे। भगवान यही बताना चाहते हैं, शिव यही कहना चाहते हैं कि संसार में गुण भी है और अवगुण भी है। यदि गुण निकलते हैं किसी के भी गुणों को उजागर करें, और उसका जो दोष है, दुर्गुण है, जो दूषण है, यदि दोष भी है तो उस दोष को छुपा करके दूषण को भी आभूषण बना करके उसे जो सजा ले, उसे स्थान दे दे, उसका नाम शिव होता है, उसका नाम शिव होता है ना। इसलिए भगवान शिव ये संसार को कहना चाहते हैं, दोष दुर्गुण को छुपा करके, दूषण को भूषण बना करके उसे प्रस्तुत कर दिया संसार के सामने, कि वो भगवान शिव की सुंदरता का कारण बन गया। भगवान शिव बहुत सुंदर है, उनका कंठ में ये ऐसा दिखाई पड़ना है, नील मणि के समान उज्जवल, नील मणि के समान सुंदर, वो सुंदरता का प्रतीक बन गया। शिव की सुंदरता उनकी कंठ की नीलता का प्रतीक बन गया। भगवान शिव कहते हैं कि देखो भैया, इस संसार में और दान कैसे करें, कैसा दान होना चाहिए, बोले जो संसार के विष को पी करके संसार को जीवत्व प्रदान करे, जीवन दे, दूसरे को जियाने के लिए स्वयं मृत्यु को अपने कंठ से लगा ले, मौत को कंठ से लगा करके जो दूसरे को जीवन जीने की दिशा देता है, जीवन देता है, उसी को देव नहीं कहते हैं, उसे महादेव कहते हैं, वो दाता है। इसलिए शिव समान को दानी, शिव के समान कौन दानी हुआ? जो दूसरे को जीवन देता है वही तो दाता है नारायण। हम भगवान शिव की इस महिमा को, जिस महिमा के द्वारा भगवान शिव की अनंत अनंत इस महिमा एक छोटे से नाम में छुपाई हुई, शिव नाम द्व्यक्षर नाम है और शिव पंचाक्षर है। नमः शिवाय दो अक्षर तेरा, शिवाय और नमः इसके साथ दो अक्षर त्रक्षर और उसके साथ पंचाक्षर, पंचाक्षरी मंत्र है, पांच अक्षर जिसमें इतना छोटा नाम नमः शिवाय। ये जो नमः शिवाय नाम है ना नारायण, इसे कोई साधारण नहीं समझना, ये वेद मंत्र है, वेद मंत्र, वेद मंत्र, मंत्र हमारे वेदों में है और जिनमें से वेद में भी चार वेद और चार उपवेद हैं। उपवेदों में आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, ज्योतिष वेद है, ये भी वेद है, परंतु जो मुख्य चार वेद है यजुर्वेद का मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमशम भवाय च, मयो भवाय च, मयस्कराय च, शिवाय च, नमः शिवाय च, शिवाय शिव। ये जो शिवाय शब्द है नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र वेद मंत्र है, वेदोक्त है। मंत्र दो तरह के होते हैं, एक पौराणिक मंत्र होते हैं और एक वैदिक मंत्र होते हैं। कुछ तंत्र मंत्र होते हैं जिसे सावर मंत्र कहते हैं, तंत्रोक्त तंत्र ग्रंथ में भी, तंत्र भी एक अगम शास्त्र जिसे कहते हैं, अगम माने तंत्र, तंत्र जो भगवान शिव की परम, जिसके तंत्र के प्रणेता हैं भगवान शिव, जो भगवान शिव की उपासना से जो एक विद्या चली आ रही है उस विद्या को कहते हैं तंत्रोक्त विद्या। और जो ब्रह्मा जी के द्वारा विधि के मार्ग से जो चली आ रही है विद्या उसको वेद विद्या कहते हैं। इसलिए दो तरह के मंत्र होते हैं, एक वेदोक्त एक तंत्रोक्त, और वेदोक्त और उनमें से कुछ पौराणिक मंत्र होते हैं। पर याद रखना ये नमः शिवाय तो वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र। और इस शिव की महिमा छोटे से नाम पर, पंचाक्षरी नाम के भीतर कैसे छुपी हुई है? भगवान को शिव के नाम की महिमा नमन करने से, केवल केवल भगवान शिव के चरणों में नमः, इस सिर को झुका लेने मात्र से, केवल नमन करने मात्र से कितने बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव चरणों में हमारा मस्तक एक बार झुक जाए, क्योंकि बड़ा कठिन है, कठिन है इस मस्तक को झुकाना, कि मस्तक सीधा है, बोले क्यों? क्योंकि इसके अंदर अहम भरा हुआ है, जीव का अहंकार झुकने नहीं देता है। जब तक जीव के भीतर से जीवत्व का अभिमान नहीं हटेगा तब तक ये मस्तक सही रूप से शिव चरणों में झुकेगा नहीं। इसीलिए भगवान शिव के चरणों में मस्तक झुकाने के लिए, नीचे करने के लिए शिव महिमा ज्यों ज्यों कान के भीतर जाएगी और कान के माध्यम से हृदय तक पहुंचेगी और हृदय से मस्तिष्क की ओर जाती वो विद्या जब हमारे अंदर आंदोलित होगी तब ये मस्तक के भीतर का अहंकार छूटेगा और धीरे धीरे ये मस्तक शिव चरणों में झुक जाएगा। और जिसने झुक गया, जो एक बार गिर गया, उसने शिव के चरणों में पहुंचकर सर्वस्व प्राप्त कर लिया। जैसे एक बीज जब मिट्टी में मिलता है, बीज मिट्टी में मिलता है और मिट्टी में मरता है, तब उससे वृक्ष बन करके प्रकट होता है। उसी प्रकार दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। उसी भांति हमें जब तक भगवान के चरणों में अपने को मिटाएंगे नहीं, और मिटाने के लिए कथा सुननी है, श्रवण है, श्रवण के बिना बात बनेगी नहीं। इसलिए आइए अब की बार शिव महिमा को श्रवण करने के लिए हमारे पास 4-5 दिन का समय है। और जिसमें मैंने कहा था शिव महिमन स्तोत्र के माध्यम से और शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम साथ में लगा देने से तो षडाक्षर बन जाता है, केवल पंचाक्षर नमः शिवाय। इस बात पर सुबह के इस पावन बेला में कल से नमः शिवाय पर विचार करेंगे। 5 अक्षर हैं, इनको सुनकर अपने जीवन को कल्याणकारी बनाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।
4: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
5: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 3, Sukta 7.

0: நமஸ் சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நமஸ் சிவாய.
1: ஓம் நமஸ் சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரியோபனிஷத் presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: और उसका हेतुभूत जो है बल है, ज्ञान है, ऐसे उस ज्ञान से हमें संपन्न करे. और उससे जब हम संपन्न हो जाएंगे तभी मैं कौन हूं इस बात को जान पाएंगे, या हमारा जो परम पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति हो सकेगी, और या जो हमारी ये अभीप्सा है कि मेरी कभी मृत्यु न हो, और मृत्यु शब्द छोड़ो, मेरा कभी अभाव न हो. क्योंकि मृत्यु को तो क्या कह दिया, बृहदारण्यकादि श्रुतियों के अंदर जहां चर्चा आई तो मृत्यु को क्या कहा है वहां, तो अंतिम मृत्यु कहकर के वहां संकेत कर दिया. और वो मृत्यु जो है वो क्या है, तो कहने लगे वो मृत्यु आत्मा ही मृत्यु है, उस आत्मा से भिन्न कोई मृत्यु नहीं. जिसको भगवान ने गीता में कह दिया अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं. तो वहां अंतिम मृत्यु की बात कही, वहां सीढ़ियां बताई मृत्यु की, क्रम से उसके बाद कोई मृत्यु नहीं है याज्ञवल्क्य आदि के प्रसंग में. तो यहां पर जो है मतलब तात्पर्य इतना है कि कोई भी अपनी सत्ता का अभाव कभी चाहता नहीं, वो चाहता है हमारी सत्ता सदैव बनी रहे. लेकिन अब इस चाहने में है क्या, सत्ता तो कभी अभाव सत्ता का होता नहीं. आप गीता ही में पढ़ते हो हैं, सत का कभी अभाव और असत का कभी भाव. लेकिन फिर हमारा भाव क्यों हो जाता, हमारी मृत्यु क्यों हो जाती, तो कहने लगे यहीं पर समझने की बात है, यहीं पर इस बल की जरूरत है, यहीं पर इस ज्ञान की जरूरत है कि जो अभाव होता है वो किसका होता है. क्योंकि सत्ता तो कभी अभाव से रहित हो नहीं सकती. जो सत्ता है सत्ता किसकी होगी, सत्य की होगी. और सत्य क्या है, जो त्रिकालावादित है, तीनों कालों में जिसका वाद नहीं होता. तो फिर हमारा वाद क्यों हो गया, हमारा भाव क्यों हो गया, हमारी मृत्यु क्यों हो गई. तो कहने लगे आपने अपने को समझा ही, इसी की जरूरत है. और जब इस चीज को समझ लोगे तो क्या होगा, तो कहने लगे फिर तुम्हारा कभी अभाव नहीं, तुम अमृत रूप हो जाओगे. तो अब जो है हमको कहीं न कहीं भूल हो गई है, हमारे में कहीं न कहीं विस्मृति आ गई. विस्मृति का प्रमाद का नाम ही मृत्यु है. तो हमारे में कहीं भूल हो गई, हम जो नहीं है वो हमने अपने को मान लिया. और ये निश्चित है जो मानोगे वो मानी हुई वस्तु सदा टिकने वाली, जो मान्यता होती है वो मान्यता सदा टिकती नहीं. टिकती क्या चीज है, जो यथार्थ में है. जैसे एक मनुष्य, ये सामान्य धर्म, अब उसमें विशेष धर्म क्या हो गया, का साधु है, फिर उसमें जो है और भी हो जाते डॉक्टर इंजीनियर आदि धर्म हो गए. लेकिन ये सारे धर्म कैसे, एक क्रिया विशेष को लेके, एक संस्कार विशेष को लेके, लेकिन वो क्रिया विशेष को लेके होने वाले, संस्कार विशेष को लेकर होने वाले, वो नियम नहीं है कि सदा रहें, उनका कभी भी अभाव हो सकता. लेकिन मनुष्यत्व जो है वो जब तक मनुष्य है तब तक उसकी मनुष्यत्व का अभाव नहीं. वही हम लाल कपड़े पहन लिए तो आप कहते हो बाबा जी, ठीक है ना, और ये कपड़े हम पहन करके आप जैसे पहने तो क्या कहोगे, तो बाबा जी कहोगे. लेकिन इन कपड़ों को पहनने पर, लाल कपड़ों को पहनने पर जो हमारी मनुष्यता थी वो तो बरकरार दोनों जगह थी कि नहीं, तो रहेगी. ऐसे ही सत्ता जो है उसका अपलाप नहीं होता, किंतु उसमें जो हमने एक मान्यता स्थापित कर ली, एक जो हमने संपादन कर लिया, एक जो हमने आरोपण कर लिया, वो आरोपण जो है वही क्या है, आता और जाता. उसमें ही परिवर्तन होता, उसी का भावाभाव होता. अभाव उसका होता है लेकिन जब उसी को, संपादन को ही हमने समझ लिया, संपादन रूप ही मैं हूं. ऐसे संपादन को ही हमने संपद समझ लिया. संपद माने ज्ञान भी होता है, संपद माने संपादन भी होता. संपादन शब्द का अर्थ है आरोपण, तो संपद माने ज्ञान भी है और संपद माने आरोपण भी है. तो अब जो हमको ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है, आरोपित ज्ञान है. और आरोपित जब तक ज्ञान रहेगा तब तक ये मृत्यु पीछा छोड़ेगी, तब तक वाहवा भाव की स्थिति रहेगी। और इस आरोपण को हमने आरोप यदि समझ लिया है, जैसे आप समझते हो कि वस्त्र को हमने पहन लिया तो उतारने में भी समर्थ होते, ठीक है। तो अब ऐसे जब समझ लोगे तो फिर वस्त्र जो है उतारने में भी आप समर्थ हो, पहनने में समर्थ हो, लेकिन अब ये नहीं कहोगे कि मैं वस्त्र हूं। क्या कहोगे? मैं इससे अलग, ये तो मेरा आवरण है और ये तो नाशवान है, इसलिए उसमें इतनी अभिरुचि नहीं होगी। तात्कालिक अभिरुचि होगी, अपने को मैंने सुरक्षित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आप करोगे, लेकिन आप ये जानते हो कि ये मैं नहीं। तो ऐसे ज्ञान करने के लिए, ऐसे उस आरोपण को जो है विस्मृत करने के लिए, अब उसको विस्मृत कैसे करोगे, तो उसके लिए समझने के लिए बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। और वो सामर्थ्य, वो मेधा शक्ति कहां से प्राप्त होगी? तो उसके लिए ही प्रार्थना की कि जो वह इंद्र है, ईश्वर है, वह ईश्वर क्या करे कि मुझे ऐसी बुद्धि के अंदर मेधा शक्ति दे कि इस चीज को मैं ठीक ठीक समझ सकूं, अपनी भूल को सुधार सकूं। हमारा जो मैंने भूल हुई है, हमसे जो भ्रांति हुई है, उसको हम सुधारने में समर्थ हो सकूं, ऐसा संकेत करता। अब अमृतस्य देव धारणो भूयाशम, वह देव मेरे लिए क्या है? अमृत धारण कराने वाला हो जाए। उस देव से प्रार्थना करता, मैं अमृत धारण करने वाला हो जाऊं। और जब इस प्रकार से बल मिल जाएगा तो उस अमृतत्व की भी प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए जो है उस देव से प्रार्थना करते हैं। तो अब जो है इस प्रकार से बताते हुए वे शरीरम वे विचर्षम आदि सब करके कहा और आगे संकेत कर दिया कि ये सब कुछ होते हुए जिस लोक व्यवहार के अंतर्गत हम अपनी चर्या में चर्यान्वित हैं, जी रहे हैं, वहां पर भी कैसी स्थिति होनी चाहिए? हम यदि ये चाहते हैं तो यहां पर लोक व्यवहार का भी अपलाप नहीं किया। लोक व्यवहार में तुम्हारे में एक मधुरता आ जानी चाहिए, लोक व्यवहार में भी तुम्हारे अंदर एक प्रियता आ जानी चाहिए। अब उस मधुरता कैसे आएगी, प्रियता कैसे आएगी, जिससे तुम भी सदा प्रसन्न रहो और तुम्हारे आसपास रहने वाले भी सदा प्रसन्न रहे, वो कैसे होगी? तो यहां पर स्थूल रूप से संकेत किया कि जिह्वा में मधुमत्तमा है, क्या होना चाहिए? कहा मेरी जिह्वा कैसी हो जाए? मधु नहीं, मीठी नहीं, क्या कहा? मधुमत्तमा, तमत प्रत्यय लगा दिया, इतनी मीठी कि उससे मीठा कोई हो ही नहीं, है ना ये। और ऐसा हो जाना चाहिए तो जिह्वा मीठी कैसे होगी? कहा रसगुल्ला खा लो मीठी हो जाए, कहा ये नहीं। जिह्वा के मिठास के लिए क्या मने? आपकी वाणी में वह मधुरता, आपकी वाणी में वह मिठास होना चाहिए कि जिस वाणी को श्रवण करते ही सामने वाला जो है प्रसन्न हो जाए, है ना। इसलिए वाणी की जहां चर्चा आई तो संकेत कर दिया सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, ये सब संकेत किया। और उसके साथ साथ कहा सत्यम हितम मितम मधु, मधु शब्द का भी प्रयोग कर दिया। ये वाणी की सौष्ठवता को बतलाया, वाणी की सौष्ठवता वास्तव में क्या है? तो जहां पर वाणी हमारी जो है इन धर्मों से युक्त है, माने सत्य भी है उसमें, लेकिन सत्य के साथ साथ में वहां पर जोड़ दिया वह सत्य जो तुम बोल रहे हो वह कैसा भी होना चाहिए? का हितकर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी का अनहित करने वाला सत्य हो, तब कैसे सत्य को? तो सत्यम ब्रुवा प्रियम ब्रुवा, संकेत जोड़ दिया, सत्य तो बोलो लेकिन प्रिय बोलो। अप्रियम सत्यम मा ब्रुवा, अप्रिय सत्य भी है तो उसे बोलो नहीं, क्योंकि उससे सामने वाले को कष्ट होगा, अनहित होगा। तो ये सब संकेत कर दिया, इसलिए कहा कि मधुमत्तमा, बाणी बेरी कैसी हो? उत्तम, मधु से युक्त हो। और जानते हो संसार में जितने भी उपद्रव होते हैं वो किसको लेके होते? वाणी को लेकर के होते, वाणी के द्वारा ही भाई भाई में शत्रुता हो जाती है ना, और वाणी के द्वारा ही शत्रु भी मित्र बन जाते, कहीं पर शत्रु मित्र बन जाता है और कहीं पर मित्र जो है शत्रु बन जाता है। क्यों? कि एक वाणी को लेकर, लोग देहात में कहते ना कि गोली का घाव उतना है भयंकर नहीं होता है जितना बोली का होता है। गोली का घाव तो जो है क्या होता, घाव इलाज करने से, उपचार करने से भर जाता है, लेकिन बोली का घाव जल्दी जाता। और गोली के घाव में तो जैसे जैसे उसका है मरम पट्टी करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो जलन है, उसका जो कष्ट है वो भी समाप्त हो जाता, लेकिन बोली का जो कष्ट है वो तो अहर्निश हमको क्या करता रहता, हमारी अंतर अंतर ही दग्ध करता है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि व्यवहार भी पहले सुधरना चाहिए। आप जो है केवल जो है आप जाकर के जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, होम कर रहे हो, तो ये संकेत इसका मतलब यहां पर ये दे रहे हैं कि जप भी उत्तम है, जप के लिए करेंगे भी, तप भी उत्तम है, होम आदि भी उत्तम है, वो श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन उस श्रेष्ठ कर्मों के साथ साथ में जो सामान्य चर्या में कर्म है वहां से आपको प्रारंभ करना। यदि पहली सीढ़ी नहीं संभलेगी तो दूसरी सीढ़ी पर पहुंचना भी कठिन होगा। इसलिए कहा कि वाणी कैसी हो जाए तो मधुमत्तम, मधुरता से युक्त हो जाए वाणी में, सर्वत्र आप जहां बोलें तो आपकी वो वाणी के अंदर वो अलंकार होने चाहिए, वो रस होना चाहिए, वो गुण होने चाहिए, वो सौष्ठवता होनी चाहिए, और ये सब जो है जब हो जाएंगे तो वाणी में वही लालित्य आ जाता है, सामने वाला उस वाणी को सुनकर के जो है आनंदित हो जाता है, और वो आनंदित होता और तुम स्वयं उनको लेकर के बोलते हो तो तुम्हारे अंदर भी आनंद होता। इसलिए संकेत किया कि वाणी को लेकर के आ जिह्वा में मधुमत्तम, जिह्वा से जो भी शब्द का उच्चारण हो वो शब्द का उच्चारण कैसे होना चाहिए, जो भी प्रयत्न हो, इसलिए पहले प्रयत्न की, स्वर की है ना, और मात्राओं की चर्चा करते। वाणी तो एक ही है, लोग कहते नहीं, किसी ने कहा कोई बैठे थे या मान लो कुछ सहेलियां बैठी थी, उधर से देखा तो एक ने कहा कि जो है तुम्हारे हैं पतिदेव आ रहे, तो उसे अच्छा लगा कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी कहने लगी तुम्हारे खसम आ रहे। अब दोनों का अर्थ एक ही, दोनों का अर्थ एक ही, अर्थ में कोई अंतर नहीं और लक्ष्य भी एक ही है, लेकिन उस वाणी के व्यवहार से क्या हुआ, एक के शब्द सुनकर के उसके हृदय में जलन पैदा हो गई ईसा, और दूसरे के शब्द सुनकर के उसके हृदय में प्रसन्नता हुई। तो अब जो है शब्द का हमने जो चयन किया और शब्द का चयन करके उन शब्दों का जो वाक्य विन्यास किया या वाक्य को जो है योजना की, उसकी रचना की, और रचना भी इस बात पर निर्भर करती। तो वाणी में, जिह्वा में मधुरता कब आएगी, तो हमारे जीवन में उन शब्दों को, वर्णों को यानी क्या है समायोजित करने की एक कला होनी चाहिए, उनकी रचना करने की एक कला होनी चाहिए, और उनको जो है उस प्रकार से जब करेंगे तो उनमें है अलंकार का मतलब ही होता, साहित्य में तो अयमक आदि और अनुप्रास आदि अलंकार कहे, अलंकार का मतलब क्या है, उसे ऐसे सजा देना, जैसे हम लोग अलंकार आभूषण पहनते, तो अब उसे ऐसे सजा देना कि उस शब्द वही है लेकिन उस शब्द के अंतर्गत रस आ जाए, और आप जानते हो इसके लिए स्वर मात्रा ये भी उसमें, उदात्तादीश्वर ये भी उसमें ध्यान रखते, क्योंकि कहीं पर जो है आप जब उच्चारण करते हो वर्ण कहा और आपने उच्चारण मध्यम ध्वनि से किया, सामादि की चर्चा की, तो वहां पर क्या है सुनने वाले को कोई कष्ट नहीं, और उसी का उच्चारण आपने है थोड़े कर्कशता से कर दिया तो सामने वालों को कष्ट हो, इसलिए उच्चारण पर भी ध्यान, ये सब संगीता इत्यादि इसलिए बतलाई थी। तो यहां पर कहते हैं कि जिह्वा में मधुरता कब आएगी, तो जिह्वा की मधुरता तभी आएगी हमारे शब्दों का और शब्दों के द्वारा वाक्यों का जो योजना उनकी जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो अलंकार आदि से युक्त होनी चाहिए, मन उसमें सौंदर्य होना चाहिए, उसमें सामत्व आदि विद्यमान होना चाहिए, उसमें मात्राओं का ध्यान रखना चाहिए, उदात्त अनुदात सुर का ध्यान रखना, और इन सब के लेकर के जब हम उस वाक्य को मन रचित करते हैं, वाक्य का उच्चार करते हैं, तो वही वाक्य दूसरों के हृदय को प्रसन्न कर दे और हमारे हृदय को भी प्रसन्न कर दे। इसलिए कहा कि वाणी के अंतर्गत क्या होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, तो हमारी व्यवहार में भी पहले मधुरता आए तब हम जो है लाल कपड़े पहन लिए, जब भी कर रहे हैं तब भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, लेकिन वाणी के अंतर्गत है कोई आके पास बैठ गया है, जानता नहीं मैं महात्मा हूं, तुमको ठीक ढंग से बैठना चाहिए, तो क्या हो गया, अब भले ही तुमने कहा कुछ भी कहा, भले ही शिष्टाचार के अनुकूल कहा हो, लेकिन उसके हृदय में तो बोलने का एक ढंग है, तो कैसे बोलना है और तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए। तो इसलिए संकेत किया हमारा व्यवहार भी पहले सुधरना चाहिए। इसलिए शास्त्र इसका निषेध नहीं करता। तो कहा कि जिह्वा में मद्मत्तम और कर्णाभ्याम भूरि विश्रवम, क्या संकेत किया, कानों के द्वारा बार बार शास्त्र जो है यही संकेत करते हैं, भद्रम कर्णे भी, क्या कहते कानों से क्या सुने, कल्याणकारक से। और इतना ही नहीं कहा, कैसा सुने तो यहां तो ये और कह दिया, विश्रवम विशेष रूप से, अर्थात मैं इतना सुनने वाला हो जाऊं कि सुनने से कभी उपरतता न हो। और तुलसीदास ने तो लिखा ही भरे न पूरे है, संकेत कर दिया, कभी भी जो है निरंतर सुनते सुनते भी ये कभी भरते नहीं, ऐसी जो है स्थिति जब आ जाएगी, लेकिन किसको सुने ये भी ध्यान रखना। यहां जिस लक्ष्य की चर्चा की गई, ऐसे अपने पुरुषार्थ के हेतुभूत जो वाक्य हैं, जिन वाक्यों के द्वारा हमको वह ज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान से हमें अमृतत्व की प्राप्ति होगी, ऐसे उन वाक्यों को सुनने के लिए कहा। और उन वाक्यों के लिए कहा कि उन वाक्यों से कभी भी जो है हमको परामता न हो। तो इसलिए संकेत किया कि बहुत सुनने वाला मैं हो जाऊं, अर्थात वह सुनने वाला हो जाऊं, अर्थात सुनने से मुझे कभी उपरामता न हो, लेकिन सुनना भी क्या ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से कर्णाभ्याम भूरि विश्रवम, और फिर इस प्रकार से बतलाते हुए उसी की तरफ संकेत कर दिया, ब्रह्मणा कोशोसी, तुम जो है क्या हो, ओंकार को संकेत किया, तुम उस ब्रह्म के कोश हो, आवरण हो, समीपी हो। इसलिए फिर क्या है, कहने लगे मेधया पीता, लेकिन तुम कोश किस रूप में हो, ये भी संकेत किया। तो संकेत कर दिया कोश है मेधा के रूप में। अब मेधा क्या, तो व्यष्टिगत बुद्धि, और उस बुद्धि में रहने वाली मेधा वही उसके लिए क्या बन गई है, आवरण बन गई। समष्ट्यात्मक बुद्धि और उसमें रहने वाली मेधा उसके लिए आवरण नहीं है, ठीक है ना। समझना यह पड़ेगा कि हमारी व्यष्टात्मक जो बुद्धि है और उस बुद्धि में जो क्या नाम मेधा है, अर्थात ग्राहक जो शक्ति है, उसी में गड़बड़ हुआ है। वो बुद्धि को क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये उसी में बल नहीं रह गया, और उसमें ये बल न रहने के कारण हम जो है उसके समीप होते हुए वह हवड़ होते हुए भी उसे पहचान पा रहे नहीं। इसलिए संकेत किया मेधया पीता, वह जो है उस मेधा से ही ढक गई है। इसलिए क्या होना चाहिए, श्रुतम वे गोपाय, मैं बहुत सुनूं, लेकिन सुनूं तो बहुत, और सुनते भी सारे दिन सुनते रहते, लेकिन कहने लगे वह जो मेरा सुना हुआ है, तो उस देवता से प्रार्थना करते हैं, श्रुतम मे गोपाय, मेरे सुने हुए की रक्षा कर, मैं जो सुनता हूं वो मेरे में टिके, ऐसा नहीं कि सुन लिया और चला गया, तो वो जो मैंने सुना है उस सुने हुए को मेरे को तू स्मृति में ला, अर्थात वो मेरे से विस्मृत न हो, मन उसमें मेरा प्रमाद न हो, मैं प्रमाद से रहत हो जाऊं, विस्मृति आदि से रहत हो जाऊं, इस प्रकार से मेरे सुने हुए की तू रक्षा कर। तो श्रुतम वे गोपाय, मेरे श्रवण की रक्षा कर। और ऐसा कहते हुए फिर आगे पुनः कहते हैं आवहंती और वितनवाना, आवंती माने मेरे लिए लाओ, ऐसी बुद्धि को मुझे प्राप्त कराओ, लाओ माने ऐसी जो है बुद्धि मुझे प्राप्त कराओ, माने में ऐसी बुद्धि मुझे दो, और उस बुद्धि के साथ साथ हैं क्या करो, कहा वितनवाना, जिस उसका विस्तार करो, उस बुद्धि का विस्तार, और साथ में वह लक्ष्मी भी मुझे प्राप्त हो और उस लक्ष्मी का भी विस्तार हो। तो ये जब चीजें होंगी तब हमारे अंदर वह सामर्थ्य आएगी। इसलिए यहां पर इस मंत्र में ये चर्चा की गई। आगे पुनः जो है संकेत फिर करते हैं उसी मंत्र के नीचे, कुर्वाणा चीरमात्मनः, क्या संकेत किया, आत्मनः अचिरम है कुर्वाणा, मेरे को क्या करो, अचिरम माने शीघ्र, न चिरम इति अचिरम, माने शीघ्र, देरी न करो, देरी न हो, और क्या करो, कहा शीघ्र ही क्या कर दो, कहने लगे कुर्वाणा करो, क्या करो, तो संकेत करते श्रीवान करो, लक्ष्मीवान करो, लक्ष्मी की याचना करते। अब लक्ष्मी क्या क्या चाहिए, तो जो पूर्व में संकेत कर दिया बल, बल कब होगा, तो उसके लिए कहा लक्ष्मी की भी आवश्यकता, को लक्ष्मी वो श्री क्या है, तो कहने लगे वासांसी, मम गवास्च, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना है, का वस्त्र चाहिए। तो वस्त्र रूपी वह श्री जो है मुझे क्या प्राप्त कराए, का वस्त्रों की प्राप्ति कराए। वासांस और गवास्च, गावस्च मने गौएं, और जब गौएं होंगी तो दूध मिलेगा, है घृत मिलेगा और छाछ मिलेगी, और वो क्या करने वाली है, आयुर्वेदिक घृतम। आजकल तो आयु मृत्यु बन गई, वो क्या नाम, घी ही मृत्यु बन गया। आजकल घी कोई खा ही नहीं सकता, बहुत से अल्प लोग घी खा सकते हैं। क्यों? उसका कारण यही है, क्योंकि जो क्रम बतलाया गया उस क्रम से हम हटते चले। पहले इतना परिश्रम होता था और लोग इतना इतना कटोरे भर करके घी खा जाते थे, और घी को आयु शास्त्र में तब कहा था, लेकिन आज हमारे जीवन में वो परिश्रम नहीं है, और परिश्रम नहीं है तो उसे पचा कहां पाओगे, जीर्णता लाएगा, और अजीर्णता लाएगा तो जो बल दे करके तुम्हें जो है बलवान बना करके और लक्ष्य की तरफ ले जाए वो तुम्हें निर्बल बना देगा, तो तुम लक्ष्य की तरफ से कहां जाओ। तो ये सब संकेत, इसलिए यहां संकेत करते हैं वयांसी, वस्त्र भी चाहिए, क्योंकि शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वस्त्रों की भी आवश्यकता है। तो वयांस ऐसी श्री से मुझे युक्त करो, गावस्त जो हमारे शरीर को पुष्ट करने वाले पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों को देने वाली जो गौ है, ऐसे उस श्री से, ऐसे उस साधन से भी मुझे पुष्ट करो, अर्थात वो भी मेरे लिए लाओ। और अन्न पाने च सर्वदा, और फिर संकेत एक साथ कर दिया, जो भी अन्न और पीने योग्य जो भी है वो सब जो है मुझे प्राप्त कराओ। और ये सब प्राप्त कराते हुए फिर कहने लगे, ततो श्रिय मे श्रियम आवय, और फिर इस प्रकार से ये सब प्राप्त कराते हुए पुनः जो वो श्री है वो जो मुझे श्री की प्राप्त

पश्चिमी मेरे जो है मेरे लिए उनको लाए ऐसा। और फिर ये सब कहते हुए अन्नपान आदि की भी बात कह दी, पशुओं की। इन सब से जब संपन्न हो जाओगे तो आपका रहन सहन, आपका खान पान सब व्यवस्थित होगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और जब टेंशन नहीं होगी तो फिर आपका मन भी प्रसन्न होगा। ऐसे प्रसन्न मन से ही फिर आगे की साधना हो सकती है। और जब मन ही प्रसन्न नहीं है तो वहां ये साधना होती नहीं। श्रवण किया हुआ भी श्रवण नहीं होता है, क्योंकि जब टेंशन युक्त मन होता है, मन हमारा विक्षिप्त होता है, तो सुना हुआ भी हमारे में बगैर सुना हो जाता, क्यों वो टिक पाता नहीं, उसका तात्पर्य भी समझ में नहीं आ पाता। तो इसलिए संकेत किया कि इन सब से जब हम युक्त हो जावे तब उसके बाद कहा अब क्या करो। तब कहने लगे आमायन्तु ब्रह्मचारिणः, आमायन्तु ब्रह्मचारिणः मने ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ है ब्रह्मण चरति इति ब्रह्मचारी, ठीक है ना। मने उस ब्रह्म की चर्या करने वाला जो है, ब्रह्म का आचरण करने वाला जो है, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है यहां वेद। तो वेद का आचरण करने वाला है, वेद की अनुज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाला है, उसको क्या कहेंगे, कहा वो है ब्रह्मचारी। अब उसके अंतर्गत जितने धर्म ब्रह्मचारी के हैं वो सब आ जाएंगे। तो वेद क्या निर्देश देता है, वेद की क्या अनुज्ञा है, तो वेद में आस्था रखते हुए, वेद की अनुज्ञा को स्वीकार करते हुए यदि हम अपने जीवन को चला रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, तो कहा ब्रह्मचारी है। केवल एक अवस्था विशेष को ही नहीं, उस अवस्था विशेष में उसका विधान किया गया कि उस समय बुद्धि जो है ग्राहक शक्ति अच्छी होती, सहसवे अभ्यस्त विद्या नाम, इसलिए वो किया गया। लेकिन ब्रह्मचारी शब्द का यहां तात्पर्य सीधा है कि जो वास्तव में उस वेद की अनुज्ञा के अनुसार जीवन को जीने वाला है, वेद की अनुज्ञा को मानने वाला है वह ब्रह्मचारी। तो ऐसे वह ब्रह्मचारी मन वे वेद की अनुज्ञा मान करके उस वेद के अनुज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हैं, ऐसे उनको हैं आयन्तु माम मेरे लिए लाओ। अब जब वो मेरे पास आएंगे तो आप जानते हो संगत से ही क्या होता, गुड़ भी होते हैं और संगत से ही। और ऐसे जब आएंगे तो फिर हमें क्या होगा, क्योंकि उनके पास जो है वही तो देंगे, उनके पास यदि होगा नहीं वो कहां से दे देंगे। तो वो वेद की अनुज्ञा क्या है और वेद का उस अनुज्ञा के द्वारा प्रेरणा कहां है, वो भी हमें प्राप्त होगा। और तद अनुकूल जैसे वो आचरण करते हैं तो वैसा ही आचरण हमारा भी बने, यद यद आचर श्रेष्ठ तत् तदेव तरु। तो ये जब स्थिति होगी, इसलिए यहां संकेत किया ऐसे उन ब्रह्मचारियों को लिए को है मेरे पास लाओ, ये संकेत किया। और कहने लगे इतना ही नहीं, अब वो ब्रह्मचारी आए तो लेकिन आकर के वो छल कपट रखें, वो मन ईर्षा रखें और अपनी वस्तु हमको न देना चाहें, छिपा के रखना चाहें, तो उनसे क्या लाभ होगा। इसलिए कहा कि विमायन्तु है, माने वो ब्रह्मचारी आए लेकिन कपट न रखें, कपट से रहित तो होकर के मेरे पास आए, अर्थात मेरे प्रति कोई छिपाव न रखें, ऐसा संकेत किया। और ऐसा संकेत करते हुए आगे संकेत करते हैं का प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः। प्रमा माने माने प्रकृष्ट ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान माने यथार्थ ज्ञान। अब जब इस प्रकार का संयोग बनेगा तब क्या मिलेगा, तब जो यथार्थ ज्ञान है, परमात्मक ज्ञान है, वह ज्ञान तब होगा। तब जो है उनके द्वारा क्या है, मुझे प्रमा जो ज्ञान है उस प्रमा ज्ञान वाला मुझे बनाओ या वो मेरे लिए लाओ, अर्थात उसकी प्राप्ति कराओ। तो इसलिए संकेत किया प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः, वह ब्रह्मचारी जो है स्वयं भी प्रमा से युक्त हों और मुझे भी वह प्रमा ज्ञान कराएं। ये संकेत करते हुए फिर अंत में और कह दिया, तो वो पहली ही सीढ़ी लेकिन उसे अंत में फिर दोहरा रहे, वो क्या कहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिणः है स्वाहा समायन्तु ब्रह्मचारिणः। मैंने वो ब्रह्मचारियों के लिए भी कह दिया, वो ब्रह्मचारी हमारे लिए, दोनों ही तरफ से संकेत करता। मैंने क्या करें, तो दम शब्द का अर्थ आप जानते हो इंद्रिय निग्रह, और सम शब्द का जो है मनो निग्रह। तो जब तक इंद्रिय संयम और मन का संयम नहीं होगा तब तक ये जो प्रार्थना की गई है वो प्रार्थना भी सुचारू रूप से होगी नहीं, और उस प्रार्थना गत जो है तात्पर्य है वो भी जीवन में नहीं आए। इसलिए संकेत कर दिया।

0: हैं अंत में कि क्या होना चाहिए, कि हमारे जीवन में दम होना चाहिए, हमारे जीवन में सम होना चाहिए, मन इंद्रियों का संयम होना चाहिए और मन का भी संयम होना चाहिए। यद्यपि ऊपर ये संयम ही बतलाया, ऊपर जो जो कहा है वो क्या है, संयम के अंतर्गत। संयम का मतलब आंख बंद कर लेना नहीं, किंतु आंख के द्वारा एक विवेक प्राप्त करना, क्या उपादेय है और क्या है। उपादेय जो है उसको जब आंख से आपने परीक्षण कर लिया तो मन जो है उसी उपादेय को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त हो, और जो अनुपादेय है उसका त्याग करे, यही इंद्री और मन का संयम। ऐसे ही शब्द कान के द्वारा सुना तो उसमें उपादेयता और हेता का ज्ञान करते हुए और उपादेय को मन ग्रहण करे तो इंद्रियों का ये संयम है। इसी का दम और सम करके नाम कह देते, माने तो इंद्रियां जो है उस हे की तरफ न जाए और मन भी कभी उसका चिंतन न करे, तो हो गया सम और दम। ये हमारे जीवन में आना चाहिए, ऐसी यहां चर्चा आगे चर्चा कल।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

नमः स्थपतिस्थिराय नमः विजितात्मने नमः विधेयात्मने नमः भूतवाहनसारथये नमः सगणाय नमः गणकार्याय नमः सुकीर्तये नमः छिन्नसंशयाय नमः कामदेवाय नमः कामपालाय नमः भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः भस्मप्रियाय नमः भस्मशायिने नमः कामिनेकान्ताय नमः कृतागमाय नमः समायुक्ताय नमः निवृत्तात्मने नमः धर्मयुक्ताय नमः सदाशिवाय नमः चतुर्

नमः, भोजनाय भोक्त्रे नमः, लोकनेत्रे नमः, दुराधराय नमः, अतीन्द्रियाय नमः, महामायाय नमः, सर्वावासाय नमः, चतुष्पथाय नमः, कालयोगिने नमः, महानादाय नमः, महोत्साहाय नमः, महाबलाय नमः, महाबुद्धये नमः, महावीर्याय नमः, भूतचारिणे नमः, पुरंदराय नमः, निशाचराय नमः, प्रेतचारि महाशक्तये नमः, महाद्युतये नमः, अनिर्देश्य वपुषे नमः, श्रीमते नमः, सर्वहार्यमिताय नमः, गतये नमः, बहुश्रुताय नमः, बहुमयाय नमः, नियतात्मने नमः, भवोद्भवाय नमः, ओजस्तेजोद्युतिकराय नमः, नर्तकाय नमः, सर्वकामकाय नमः, नृत्यप्रियाय नमः, नृत्यनृत्याय नमः, प्रकाशात्मने प्रतापनाय नमः, बुद्धस्पष्टाक्षराय नमः, मन्त्राय नमः, सन्मानाय नमः, सारसंप्लवाय नमः, युगादिकृद्युगावर्ताय नमः, गंभीराय नमः, वृषवाहनाय नमः, इष्टाय नमः, विशिष्टाय नमः, शिष्टेष्टाय नमः, शरभाय नमः, शरभाय धनुषे नमः, अपाम्निधये नमः, अधिष्ठानविजयाय नमः, जयकालविदे नमः, प्रतिष्ठिताय नमः, प्रमाणज्ञाय नमः, हिरण्यकवचाय नमः, हरये नमः, विरोचनाय नमः, सुरगणाय नमः, विद्येशाय विबुधाश्रयाय नमः, बालरूपाय नमः, बलोन्माथिने नमः, विवर्ताय नमः, गहनाय गुरवे नमः, करणाय नमः, कारणाय नमः, कर्त्रे नमः, सर्वबन्धविमोचनाय नमः, विद्वत्तमाय वीतभयाय नमः, विश्वभर्त्रे नमः, निशाकराय नमः, व्यवसायाय नमः, व्यवस्थानाय नमः, स्थानदाय नमः, जगदादिजाय नमः, दुन्दुभाय नमः, ललिताय नमः, विश्वस्मै नमः, भवतात्मात्मनिसंस्थिताय

न्यायाय नमः, न्यायगम्याय नमः, निरञ्जनाय नमः, सहस्रमूर्ध्ने नमः, देवेन्द्राय नमः, सर्वशास्त्रप्रभञ्जनाय नमः, मुण्डाय नमः, निरूपाय नमः, विकृताय नमः, दण्डिने नमः, दान्ताय नमः, गुणोत्तमाय नमः, पिङ्गलाक्षाय नमः, हर्यक्षाय नमः, नीलग्रीवाय नमः, निरामयाय नमः, सहस्रबाहवे सर्वेशाय नमः, शरण्याय नमः, सर्वलोकभृते नमः, पद्मासनाय नमः, परञ्ज्योतिषे नमः, परावरपरम्फलाय नमः, पद्मगर्भाय नमः, महागर्भाय नमः, विश्वगर्भाय नमः, विचक्षणाय नमः, परावरज्ञाय नमः, बीजेशाय नमः, सुमुखाय सुमहास्वनाय नमः, देवासुरगुरवे देवाय नमः, देवासुरनमस्कृत्याय नमः, देवासुरमहामात्राय नमः, देवासुरमहाश्रयाय नमः, देवादिदेवाय नमः, देवर्षिदेवासुरवरप्रदाय नमः, देवासुरेश्वराय नमः, दिव्याय नमः, देवासुरमहेश्वराय नमः, सर्वदेवमयाय नमः, अचिन्त्याय नमः, देवतात्मने नमः, आत्मसंभवाय नमः, ईड्याय नमः, अनीशाय नमः, सुरव्याघ्राय नमः, देवसिंहाय नमः, दिवाकराय नमः, विबुधाग्रवरश्रेष्ठाय नमः, सर्वदेवोत्तमोत्तमाय नमः, शिवज्ञानरताय नमः, श्रीमते नमः, शिखिश्रीपर्वतप्रियाय नमः, जयस्तम्भाय नमः, विशिष्टम्भाय नमः, नरसिंहनिपातनाय नमः, ब्रह्मचारिणे नमः, लोकचारिणे नमः, धर्मचारिणे नमः, धनाधिपाय नमः, नन्दिने नमः, नन्दीश्वराय नमः, नग्नाय नमः, नग्नव्रतधराय नमः, शुचये नमः, लिङ्गाध्यक्षाय नमः, सुराध्यक्षाय नमः, युगाध्यक्षाय नमः, युगावहाय नमः, स्ववशाय नमः, सवशाय नमः, स्वर्गस्वराय नमः, स्वरमयस्वनाय नमः, बीजाध्यक्षाय नमः, बीजकर्त्रे नमः, धनकृद्धर्मद्वर्धनाय नमः, दम्भाय नमः, अदम्भाय नमः, महादम्भाय नमः, सर्वभूतमहेश्वराय नमः, स्मशाननिलयाय नमः, तिष्याय नमः, सेतवे नमः, अप्रतिमाकृतये नमः, लोकोत्तरस्फुटालोकाय नमः, त्र्यम्बकाय नमः, नागभूषणाय नमः, अन्धकारये नमः, मखद्वेषिने नमः, विष्णुकन्धरपातनाय नमः, वीतदोषाय नमः, अक्षयगुणाय नमः, दक्षारये नमः, पूषदन्तहृते नमः, ऊर्जटये नमः, खण्डपरशवे नमः, सकलाय नमः, निष्कलाय नमः, अनघाय नमः, आधाराय नमः, सकलाधाराय नमः, पाण्डुराभाय नमः, मृडाय नमः, नटाय नमः, पूर्णाय नमः, पूरयित्रे नमः, पुण्याय नमः, सुकुमाराय नमः, सुलोचनाय नमः, सामगेयाय नमः, प्रियकराय नमः, पुण्यकीर्तये नमः, अनामयाय नमः, मनोजवाय नमः, तीर्थकराय नमः, जटिलाय नमः, जीवितेश्वराय नमः, जीवितान्तकराय नमः, नित्याय नमः, वसुरेतसे नमः, वसुप्रियाय नमः, सद्गतये नमः, सत्कृतये नमः, सक्ताय नमः, कालकण्ठाय नमः, कलाधराय नमः, माणिने नमः, मान्याय नमः, महाकालाय नमः, सद्भूतये नमः, सत्परायणाय नमः, चन्द्रसञ्जीवनाय नमः, शास्त्रे लोकगूढाय नमः, अमराधिपाय नमः, लोकबन्धवे नमः, लोकनाथाय नमः, कृतज्ञाय कृतिभूषणाय नमः, अणपायक्षराय नमः, कान्ताय नमः, सर्वशास्त्रभृताम्बराय नमः, तेजोमयाय नमः, लोकमायाय नमः, अग्रण्ये नमः, अणवे नमः, शुचिस्मिताय नमः, प्रसन्नात्मने नमः,
துர்ஜயாய நமஹ, துரதிக்ரமாய நமஹ, ஜோதிர்மயாய நமஹ, நிராகாராய நமஹ, ஜகன்நாதாய நமஹ, ஜலேஸ்வராய நமஹ, தும்பவீணி.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: मनत्रयम् उपमन्यु महर्षि की जय। सांब शिवाय नमः, सांब शिवाय नमः, सांब शिवाय नमः। हर ओम तत्सत्।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
3: Dear listeners of shaivam.org, the following is Samaveda Samhita Purvarchikam Prapataka 4 Dashati 7. Thank you.

0: अष्टौ षष्ठः ॐ
1: ॐ नमः शिवाय. You are listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Manisha Panchakam, presented by Swami Sri Avadesh Chaitanya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: समग्र जीवन का एक फाइनल एग्जाम है. वो एग्जाम में अगर आपको हमें पास करना है, उत्तीर्ण होना है, तो उस गाइड के सहारा जरूरत है भाई. वो है सदगुरु. बिना गाइड के हम पास उत्तीर्ण नहीं हो सकते. और जितने भी महापुरुषों को हम देखते हैं, यहां तक कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने गुरु को जीवन में प्रतिष्ठित किए. इसीलिए कभी भी अपने इस अहम को बड़ा न होने दे कि किसी व्यक्ति के पास मैं कैसे अर्पण हो जाऊं, किसी हड्डी मांस वाला मनुष्य को मैं कैसे गुरु मान लू. वो भी समझिएगा कि आपका अहम जो है आपके साधन मार्ग में प्रतिबंधक बाधक के रूप में उपस्थित हुए. और हो सके तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि तुम हो. मैं जानता नहीं हूं, मैं पहुंचने वाला हूं और तुम्हारे पास आने वाला हूं, परंतु तुम रहना और तुम्हारे साथ जो परिचय कराया ऐसा व्यक्ति को तुम दो, वो मेरे जीवन का सदगुरु. और जिस दिन भगवत भक्तजन उस गुरु के अस्तित्व अथवा गुरु के शरण में आप जाते हैं अथवा गुरु मिल जाता है, समझना चाहिए ईश्वर के अनुग्रह. नहीं तो यह जीवन, यह विवेक, यह व्यक्ति किसी के पास नत होना नहीं चाहते हैं. अगर नत हो भी जाता है तो उसमें कई प्रकार के कामनाएं वासनाएं पूर्ण करने की ही चेष्टा करते हैं. अगर जिस दिन यह जीवन, यह व्यक्तित्व केवल परमात्मा के लिए किसी को अपनाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन समझना चाहिए ईश्वर के एक अनुग्रह. इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ह्यर्थे प्रकाशन्ते महात्मना. जिनके चित्त में यस्य देवे, जिन साधक के चित्त में देव के प्रति, देवताओं के प्रति जितनी श्रद्धा विश्वास, उतनी ही श्रद्धा और विश्वास अगर गुरु में हो. यस्य देवे पराभक्ति, पराभक्ति मीन जो निरूपाधिक है, जो निरूप है, निराकार है, उस शक्ति में जो एक श्रद्धा है, आपनापन है, अचंचलता है, वो है पराभक्ति.

भगवत गीता जी में भगवान स्वयं कह रहे चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार की भक्ति वहां भी है। पहला जो तीन है उसको तो उन्होंने अपरा भक्ति और ज्ञान निष्ठा ज्ञानी को ही उन्होंने अंतिम पराभक्ति के रूप में स्वीकार किया। इसलिए भगवत भक्तजन देवताओं में देव में जिस प्रकार के पराभक्ति है वही पराभक्ति अगर गुरु में हो तो वो व्यक्ति जो है उन्हीं के पास उन्हीं के चित्त में उस शक्ति को जो आपको स्वागत करने वाला है, जिनके अस्तित्व के कारण आप परम प्रिय है, जिनके उपस्थिति के कारण आपके सब इंद्रिय ठीक ठीक चल रही हैं, जिनके कारण आप भले उनको भूल गया हो परंतु आप मैं कर रहे हैं, जिनके कारण आप अहम को पाल रहे हैं, अहम करने में सचेष्ट है, वो जो शक्ति है उस शक्ति को वो जानता है। इसलिए भगवत भक्तजन ये जो प्रार्थना है, ये जो स्तुति है, ये जो निवेदन है किनको करना है, किसके प्रति हमारी भावों को अर्पण करना है, वो जो एक शक्ति जो सर्वज्ञ है, सर्व रूप में विराजमान है, वही शक्ति मेरे हृदय में भी विराजमान है और उसी शक्ति के आराधक साधक जिस दिन निरूपण कर लेता है, पहचान लेते हैं, और वो भी अगर किसी गुरु के माध्यम से हो तो उसमें जो भी प्रतिबंधक है वो मिट जाता है और वो व्यक्ति निश्चिंत हो जाते हैं। अगर उस शक्ति से आपका संबंध बना, उस देव से अपने संबंध बना पाए तो आपके बलवत प्रारब्ध को भी वो मिटा सकते हैं। क्यों ना आप अल्प प्रारब्ध लेकर के आए हो परंतु उस शक्ति की कृपा अनुग्रह निग्रह शक्ति के द्वारा आपके जीवन मधुमय बन सकता है। परंतु इतना है कि गुरु के द्वारा वो निश्चय हो जाना चाहिए कि कोई है जो हमें स्वागत करने वाले हैं। इस जीवन में जितना भी टेंशन है, भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो भक्ति करो, विगत ज्वर उत्ताप रहित होकर के करो, और जिस दिन वो उत्ताप वो ज्वर वो ताप जीवन से मिटा सकते हैं उस दिन आप परम निश्चिंत हो सकते हैं। और ये ताप को मिटाने के लिए, इस ताप रूपी पाप को मिटाने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना आवश्यक है। इसीलिए आचार्य शंकर ज्ञानमूर्ति होते हुए भी, ज्ञानी महापुरुष होते हुए भी, वो स्वयं बाबा विश्वनाथ को सांब सदा शिव, जो कि टीकाकार लिखते हैं केवल शिव नहीं आए थे वहां, साथ में उमया सह पार्वती भी थी, और उस देव को उस चांडाल वेशधारी को कहते हैं कि आप क्यों ना चांडाल हो परंतु आपकी प्रज्ञा स्थिर है, आपकी बुद्धि स्थिर है, आपकी ज्ञान निश्चल है, इसलिए आप किसी भी योनि में क्यों ना हो

वो मेरे गुरु है, ये मेरे मनीषा निश्चय है। इसलिए जब भी हम गुरुदेव के पाते हैं, जाते हैं, अथवा गुरुकरण किया, हमें गुरु बनाया, एकदम निश्चिंत हो जाइए कि यही। और महाराज, इस विश्वास से ही आपके जीवन में संकट टल सकता है। अविश्वास के द्वारा संकट को आप बुलाते हैं, विश्वास हो तो आपके जीवन में आधा से ज्यादा समस्याएं मिट सकती है। नहीं तो ऐसा नहीं कि गुरु हमने नहीं बनाया, नहीं तो ऐसा नहीं कि ईश्वर के अनुग्रह से गुरु हमें मिला नहीं, परंतु वो विश्वास, वो निश्चय, वो निश्चलता, वो निष्कपटता, वो अपनापन, उनके पास और कुछ भी आवृत न रहे। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्त देवावगच्छत्वम मम तेजोम स संभव। जहां जहां भी तुम उत्कृष्टता देख रहे हो, अपने से श्रेष्ठत्व अनुभव कर रहे हो, इस संसार में वो समझना मैं ही हूं। इसलिए जब हम गुरु रूप से किसी को चयन किया, उनके हाथों में अपने जीवन को सौंप दिया, अगर वो उनके आचरण कैसा क्यों ना हो, मन में किसी भी प्रकार के संशय न रखे, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ है, तभी हमने उनको चयन किया और तभी परमात्मा ने उन्हें हमारे पास तक भेजा।

इसलिए उस देवर भक्ति और गुरु भक्ति में किसी भी प्रकार के भिन्नता का बोध ना हो, एकत्व का बोध हो। और जिस दिन गुरुदेव और देव में ऐक्य अनुभूति, उसी प्रकार पराभक्ति हम कर सकते हैं, उस दिन उस जो अद्वितीय चैतन्य सत्ता जिसके अस्तित्व से सब कुछ अस्तित्ववान है, जिसकी शक्ति से सब कुछ चलायमान है, अंतर्जामी के रूप में, सर्वाधार के रूप में, सर्वनियंता के रूप में, सर्व अधिष्ठान के रूप में वो विराजमान है, उस दिन आप उसको जान पाएंगे। इसलिए नारायण कैसा एक विडंबना कि इस शरीर में उनकी उपस्थिति, उनकी करुणा के बिना कुछ भी नहीं चलना है, परंतु कितने अनायास हम उसको अवज्ञा करते, मानने के लिए हम उसको नकार देते हैं। जिनकी आशीर्वाद से, जिनके अनुग्रह से ये जीवन चल रहा है, यही है अकृतज्ञता, कि उनको हम अनायास मान देते हैं। और उस व्यक्ति को सोचिए कि हम कितना अवज्ञा किए, कितना कटु वचन बोले, कितने अविश्वास रखे, परंतु वो अभी तक हमारे ऊपर कृपा, करुणा, अनुग्रह हटाया नहीं। वो सुहृद है, हम माने अथवा ना माने, परंतु वो अपना काम अपना मान करके किए जा रहे हैं कि इसका किसी भी तरह कष्ट ना हो, इसको किसी भी तरह दुख ना हो, इसको किसी भी जरूरत अपूर्ण ना हो, पूर्ति के, परंतु हमने उसको अनायास नकार दिया कि चलो कोई नहीं है, मैं अपने बलबूते पर करता हूं। यही अंधकार है, यही अज्ञान है। और इस अज्ञान को दूर करने के लिए सद्गुरु को सद्गुरु के रूप में वही भेजते हैं। और जिस दिन उस शक्ति को समर्पण कर देते हैं, तो अध्यात्म जीवन की पूर्णता को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, गुरु कौन है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय शब्द का अर्थ है शास्त्र वेत्ता, शास्त्र को जो जानते हैं, शास्त्र के रहस्यों को जो जाना, श्रोत्रिय। और ब्रह्मनिष्ठ मतलब अभी उन्होंने ब्रह्म प्राप्त नहीं किए, ब्रह्म में उनकी मन और बुद्धि स्थिर है, ब्रह्म स्थिति नितराम उनकी चित्त वृत्ति जो है मन ब्रह्म में स्थिर है। ऐसा जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे सद्गुरु के शरण में जाओ। किस लिए जाओ? तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अभिगच्छेत। उस शक्ति को, उस अद्वितीय चैतन्य को, जिनके अनुग्रह से, कृपा से, करुणा से यह शरीर, यह संघात, यह संसार, यह व्यवहार निभ रहा है, चला रहे हैं, वो शक्ति को अनुभव करना है, उसको जानने के लिए सद्गुरु के पास जाना है। इसलिए भगवत भक्तजन, ईश्वर के अनुग्रह को, ईश्वर के कृपा को, ईश्वर के अनुकंपा को एक्सेप्ट करने के लिए भी एक योग्यता चाहिए। सब लोग ईश्वर के कृपा को अनुभव नहीं कर सकते। भाई बरसात तो हो रही है, बारिश, परंतु अपनी छतरी जो है हमने लगा के रखा है, तो उस बरसात हमको गीला नहीं कर सकते। उसी प्रकार इस हृदय में ऐसा एक विश्वास को पनपने हैं, इस हृदय में उस अद्वितीय शक्ति से ऐसा परिचय प्राप्त करा देते हैं गुरु, जो इस जीवन में एक पात्रता, एक योग्यता, ईश्वर के अनुग्रह को समझने के लिए भी एक योग्यता चाहिए। मैं कल वही बोल रहा था कि जो नहीं मिला उसके लिए हम ईश्वर को क्या क्या कहते रहते हैं, परंतु कभी भी हमने प्रयत्न नहीं किया कि बिन मांगे हमें क्या मिला। नहीं मिले का इसका एक लिस्ट, और क्या मिला उसका एक लिस्ट बनाइए। हमको लगता है हमारे जीवन में नहीं दिया, नहीं किया, नहीं मिला,
ये बड़ा होगा। परंतु अगर निश्चल भाव से आप लिख सकते हैं कि हमें बोध तक नहीं था, हमें पता तक नहीं था, परंतु वो दिया, और जब लगा कि ये बहुत अच्छा है तब उन्होंने और भी उसमें उत्तर उत्तर वृद्धि किए, और उसको उनके अनुग्रह को उनकी कृपा को प्राप्त करके हमने क्या किया, उन्हीं को अवज्ञा करने में सक्रिय हो गए। उनके अनुग्रह उनकी कृपा से इस जीवन चला और इस जीवन के श्वास से उनको नकारने में हम लग गए। भगवत भक्तजन गुरु वो है जो इस जीवन के उस नकारात्मक सोच विचार को, नेगेटिविटी को दूर करके एक सकारात्मक, विधेयात्मक, पॉजिटिव बुद्धि को वो दृढ़ कर देती है। इसलिए पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों है, तो जीवन से पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना कैसे हो सकते हैं? अगर हमारे बस के होता तो अब तक नहीं हो सकते थे अध्यात्म जीवन में। तो वो जो पॉजिटिव, वो जो सकारात्मक विचार है वो हमें देते हैं सदगुरु। हमारा मन किसी के प्रति, किसी के प्रति भी हम स्वीकार नहीं, वो है कैसे पता के, तो वो सदगुरु हमेशा प्रयत्न करते हैं, अरे भाई वो है, वो है, उसी के कारण ये मिल रहा है, तू जी रहे हो, तुम चल रहे, तुम्हारे श्वासें चल रही है, कौन है वो? वो सदगुरु परिचय करा देते हैं। और जिस दिन साधक उस शक्ति को अनुभव कर लेता है, उनके पास कुछ कर्तव्य नहीं होता है, सारा कर्तव्य समाप्त हो जाता है, तब उनके पास मौनता का एक अवकाश आता है। इसलिए भगवत भक्तजन प्रार्थना, किसी किसी मजहब, देखिए क्रिश्चियनिटी में क्या है बहुत, इसीलिए क्रिश्चियनिटी को जब बाइबल पढ़ा तो देखा केवल, खास करके ओल्ड टेस्टामेंट में देखिए कितने बिलीफ के ऊपर, विश्वास के ऊपर और प्रार्थना के ऊपर क्या जोर है। उनके सारे विधाओं में एकमात्र प्रार्थना ही संबल है, आश्रय है। और मैंने विचार करके देखा कि उन लोग उसको कैसे लेते पता नहीं, सचमुच उस प्रार्थना के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं। यहां तक हमारी दुर्गति है कि हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। वही शब्द का उच्चारण कर देना, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, कई बार बोला, परंतु न तो वो मेरे हुए न मैं उनका हो पाया। परंतु वही अगर हृदय की आवाज हो कि मैं तुम्हारा ही हूं, तो ये जो प्रार्थना है, प्र अर्थ न प्रकृष्ट अर्थ का निश्चय, नी प्रार्थना, उसको तोड़ते हैं तो प्र मतलब प्रकृष्ट, अर्थ अर्थ मतलब वो जो परमात्मा जिनके उपस्थिति से, अनुग्रह से, कृपा से ये जीवन चल रहा है, उस अर्थ को निश्चय जिन्होंने कर लिया वो प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए भगवत भक्त जन प्रार्थना इतना सहज नहीं है। अगर मेरे अंदर विश्वास है, मेरे अंदर वो अनुभूति है, वो निश्चय है कि उनके कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, और उस दिन हमारे व्यक्तित्व से जो भी आहट भी निकले वो हमारे लिए, उस देव के लिए प्रार्थना। इसीलिए जिस दिन साधक उस शक्ति को अनुभव कर लेते हैं, तीन तरह से उसकी अभिव्यक्ति है। एक तो वो चुप हो जाते, मौन, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो तो हृदयेश्वर है, वो तो सब जानते हैं, वो तो अंतर्जामी है, मेरे को क्या जरूरत है
क्या नहीं है, क्या हित है, क्या अहित है, वो जानते हैं। इसीलिए वो भक्त, वो साधक चुप हो जाते हैं। वो जानते कि तुम जानते हो और कुछ कहना नहीं है हमें। हमारी जो भी जरूरत है, जो भी प्रयोजन है, वो सब आप जानते हो। तो वो मौन हो जाता है। दूसरी बात है कि द्वितीय प्रकार के भक्त हैं जो प्रार्थना करते हैं कि ठीक है, तुम सब जानते हो, परंतु मुझे कहने दो, इसी में मुझे शांति है। वो प्रार्थना करते हैं। तो एक श्रेणी है कि जो मौन हो जाता है, बस कुछ बोलना नहीं, उस अद्वितीय अनुभव में स्थिर हो जाते हैं। द्वितीय है कि वो हृदयेश्वर है, तुम सब कुछ अंतर्जामी के रूप में जानते हो, परंतु मुझे बोलने दो, मुझे कहने के लिए अनुमति दो, मैं बोल करके शांत होना चाहता हूं। और तृतीय प्रकार के प्रार्थना है अब उस देव को पाने की एक लालसा। भगवत भक्तजन, कल फिर इस बारे में बताऊंगा, समय अधिक हो गया। इसलिए ऐसा जो चांडाल और डीजे कोई भी हो, जीवन में गुरु अगर उपस्थित हुआ है तो समझना चाहिए वो ईश्वर के अनुग्रह है। और यही आद्य जगत गुरु शंकराचार्य आदिदेव महादेव को नमस्कार करते हैं कि आप किसी भी वेश में आइए,

0: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Muruga Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakto, abhi main jo kahani aapko sunane ja raha hu, वो एक ऐसे संत की कहानी है जो कि भगवान के नंदनवन या बगीचे की रक्षा और उनकी देखभाल करते थे। इस कहानी के पूर्व कुछ बातें समझना आवश्यक है। हमारे पूर्वजों ने जिन संभावनाओं पर विचार करके मंदिर को सभी सेवाओं का केंद्र बनाया था, उनमें से एक प्रमुख था भगवान के समीक्ष नंदनवन या बगीचों की स्थापना करना। इसके लिए मंदिर के निकट का एक भाग नंदनवन बनाने के लिए अलग रखा जाता था। उसमें फूलों के पौधे लगाए जाते थे, खाद डालने और सिंचाई करने की व्यवस्था होती थी। फूलों की रक्षा भी आवश्यक है। विचार करें तो यह नंदनवन कितने परिवारों की आजीविका का साधन बनता है। भगवान तो मामूली आंख का फूल और धूप चढ़ाने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर फूल मालाएं गूंद कर उनको अर्पित करने में भावना मात्र से अधिक भी कुछ रहा होगा। भगवान तो किसी विशेष प्रकार की फूलमाला या वस्तु की मांग नहीं करते। हमारे पूर्वजों ने मंदिर के निकट नंदनवन की व्यवस्था समाज का एक अंग को आजीविका प्रदान करने के लिए ही किया था। इसके साथ ही उनका लक्ष्य प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण, पेड़ पौधे, पुष्पों, जड़ी बूटियों आदि की रक्षा करना भी था। यदि मंदिर सेवा से मिलने वाला काम व्यापारिक बुद्धि से देखा जाए तो कोई भी व्यक्तिगत लाभ हानि की बात सोच सकता है। 10-12 परिवारों को काम पर लगाने, मजदूरी देने के बाद लाभ न होने पर व्यापारी स्वयं को ऐसी समाज सेवा से अलग भी कर सकता है। इसी कारण हमारे समाज ने इस व्यवस्था को मंदिर सेवा का नाम दिया है। पुष्पों की क्यारियां लगाना, फूलों को चुनकर एकत्र करना, माला गूंथना आदि मंदिर सेवा के माध्यम से कई लोगों की आजीविका का साधन है। अभी मैं कहने जा रहा हूं मुरुगन नायनार की कहानी। मुरुगन नायनार या मुरुगन संत का जन्म तमिलनाडु के चोल राज्य के पूंकुवलूर नामक शहर में हुआ था। नियमित रूप से उपवनों से ताजे पुष्प चयन करना, उन्हें रंग बिरंगी मालाओं में गूंथ कर भगवान को चढ़ाना ही उनकी भक्ति का रूप था। पुष्प चयन करते हुए, माला गूंथते हुए और प्रभु को ये मालाएं अर्पित करते हुए हर क्षण उनके मुख से ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण चलता रहता था। अन्य समय भी अनाहत उनके मुख से नमः शिवाय से सजी हुई रहती थी। तमिल के प्रख्यात शिवभक्त तिरुज्ञान संबंदर के विवाह के अवसर पर ज्योति में लीन होकर शिव साहित्य प्राप्त करने वाले कई लोगों में से एक थे मुरुगन। सेवा के अनेक रूप हैं। प्राय हर सेवा जनता के लाभ के लिए होती है। कुछ का लाभ प्रत्यक्ष और कुछ का परोक्ष होता है। सेवा करने वाले व्यक्ति का कभी मन दुखित नहीं होता, वो समाज सेवा में प्रसन्नता प्राप्त करता है। प्रभु को पुष्प आदि समाज सजाने पर भक्तों को उस शिवलिंग को देखकर जो आनंद मिलता है, इसी से जो सेवा करता है उसका मन भी आनंद प्राप्त करता है। इसी उद्देश्य से मुरुगन ने सदा शिवलिंग या शिव की प्रतिमा को पुष्प या फूलों से हमेशा सज्जित करने की कोशिश की है। मुरुगन नायनार उस समय विलीन हो गए या फिर अदृश्य हो गए जब तिरुज्ञान संबंदर, जो कि और एक संत थे, उनके विवाह के समय भगवान ने तिरुज्ञान संबंदर संत और उनके सभी भक्तों, जिनमें मुरुगन भी थे, उन सबको अपने साथ उस शिवलिंग में ही विलीन कर लिया। उन्होंने एक ज्योति के रूप में आए और सारे भक्तों और तिरुज्ञान संबंदर और मुरुगन इन सभी संतों को देखकर एक साथ विलीन हो गए और अपने अंदर समा लिया।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, The next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: और वो दूसरा जो उसको क्या बोले, बोले वो जो पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहा है, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक वह इसी तरह कीर्तन करता रहे, फिर मरे, फिर पैदा हो, फिर कीर्तन करे, फिर मरे, फिर पैदा हो, फिर कीर्तन करे, तब उसको दर्शन देने के लिए जाऊंगा। कहते हैं वो जो पेड़ है वो इमली का पेड़ था, कहते हैं। बोलो कब मिलेगा उसको दर्शन? अब है संभव होगा उसको? अब कि भगवान झूठ बोल रहे, उन्होंने कह दिया नारद जी को। नारद जी आए, पहले वाले को बता दिया, और आगे नारद जी बोले हां क्या कहा भगवान ने? बोले तू जिस तरह ये साधना कर रहा है पंचाग्नि, इसी तरह पांच जन्म तक लगातार पंचाग्नि तपेगा तब भगवान दर्शन देने के लिए आने वाले हैं, ये कहा है उन्होंने। हाय राम, पांच जन्म या तो पांच दिन बिताना मुश्किल पड़ रहा है, तो मर गया वही, उसी समय मर गया। कौन हो पंचाग्नि जो ताप रहा था, मर गया वही। नारद जी को तो बड़ा दुख हुआ, ये समाचार न सुना होता तो थोड़ा बचता भी, मर ही गया बेचारा। अब उसको भी संदेश तो देना है, क्या करे? गए जिस पेड़ के नीचे भजन कर रहा था, उसको तो पता ही नहीं कि पेड़ में पत्ते हैं कि नहीं, भजन किया जा रहा था। नारद जी को देखा, आ गए, बोले हाँ आपने मेरी बात कह दी भगवान से? बोले हाँ कह दिया। क्या कहा उन्होंने, कब दर्शन देने के लिए आने वाले हैं? बोले नहीं सुनो तो वही अच्छा है, है? वो पांच जन्म की बात में मर गया वो, और तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उस पेड़ में जितनी पत्ते हैं, और पेड़ भी इमली का, बोलो कितने जन्म? उन्होंने कह दिया, भगवान ने ईमानदारी से यही कहा है कि उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक लगातार मरे, पैदा हो, फिर कीर्तन करे और कुछ न करे, है? तब मैं दर्शन दूंगा कहा है। तब तो ये सुनते ही वो तो और आनंदित हो गया, वाह भगवान ने संकल्प कर लिया है, हाँ मुझे अब दर्शन पक्का, उन्होंने लिख लिया अपने डायरी में है। अरे ऐसे हजार पेड़ के पत्ते बराबर तो जिंदगी ऐसे बर्बाद हो चुकी है, हुई है कि नहीं बोलो? हजारों पेड़ के बराबर, पत्ते के बराबर जिंदगी तो ऐसे बर्बाद हो चुका है। इससे पहले कितने जिंदगी गए, कितने जन्म गए, अनादिकाल से जीव अनादि है ना, सड़ेते अनादया, अनादिकाल से हिसाब करो अनगिनत। अब एक पेड़ के पत्ते तो गिनती में आ गए, कम से कम उन्होंने अपने डायरी में लिख दिया है पेड़ के नीचे एक भक्त मेरा भजन कर रहा है, उसको पेड़ के पत्ते खत्म होते ही मुझे दर्शन देने जाना है, नोट कर लिया, फाइनल क्यू में आ गए ना अब तो। बस बड़े नाचते हुए भजन करने लगा, मन पूरी तरह भगवान में समर्पण कर दिया। तब तो नाचते नारद जी समझे ये तो पागल हो गया है। तब उतने में तो भगवान गरुड़ में चढ़ के आ गए, वो तो कीर्तन में मस्त, उसने तो देखा ही नहीं भगवान को। नारद जी देखते हैं, अरे क्या बात है, आप अभी आ गए, पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन देने की बात वहां हमसे कहा, और यहां अभी आ रहे हो, आप झूठ बोलते हो? भगवान ने कहा कि नारद जी हम झूठ नहीं बोलते, फिर अभी क्यों आए इसी जन्म में, वो तो मरा भी नहीं अभी। बोले बेटा मैं क्या करूं, पेड़ में पत्ते हो तो फिर मैं ना हूं, पेड़ में पत्ते एक भी दिखा दो मैं अभी चला जाऊंगा, यहीं से वापस हो जाता हूं। नारद जी देखने लगे तो अभी तो पूरा हरा था, अभी एक भी पत्ता नहीं है, ले जी देखते हैं इधर उधर, कहीं एक पत्ता मिले तो भगवान को वहीं से बैरंग पर भेज दे, कहीं कोई पत्ता नहीं मिला। भगवान ने पूछा नारद जी कोई पत्ता मिला? बोले नहीं महाराज। अब हमने जो कहा था वो बात तो हमको पूरा कर रही है कि नहीं, बोलो। पत्ते ही नहीं है तो क्या है, इसलिए आना पड़ा मुझे। ये वो कैसे गया महाराज, पत्ते कहां चले गए? मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यदि मेरा अनन्य आश्रय लिए बिना पत्ते गिरने का प्रतीक्षा करते तो कभी भी संभव न होता। एक गिरता दूसरा पैदा होता, दूसरा गिरता तीसरा पैदा होता, एक ही साथ कभी भी पेड़ में पत्ते गायब न होते। और हमने कह दिया कि उसको दर्शन देना जाना है माया, कब बोले उसके पत्ते जब गायब हो तब हमको दर्शन देने जाना है। एक भी पत्ता रहेगा तो हम उसको दर्शन नहीं दे पाएंगे। तो योग माया आई, सारे पत्ते को कहां गायब किया, कहां पता ही नहीं चला। और भगवान को जाकर योग माया ने कह दिया, महाराज हमने काम पूरा कर दिया आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार, पेड़ में अब एक भी पत्ता नहीं है, जाइए। आए हैं, उसको स्पर्श किया, उसको तो पता ही नहीं था, गाए जा रहा है, नाचे जा रहा है, कीर्तन किए जा रहा है, जय हो कृपालु, जय हो दयालु, आपके हृदय में मेरा भी स्थान मिल गया। हजारों लाखों जन्म के बाद ही सही, लेकिन दर्शन पक्की हो गई। तो उसने जब भगवान ने स्पर्श किया तो उसने आंख खोली तो साक्षात भगवान नारायण का दर्शन किया। तो एक तपस्या कर रहा है कठोर से कठोर, लेकिन मन परमात्मा को समर्पण नहीं कर रहा है, उसका योग हठ योग है। लेकिन वह भजन कीर्तन कर रहा है, मन परमात्मा को समर्पण कर रहा है, तो उसका योग शिव योग है। शंकराचार्य ने यहां शिव योग कहा, शिव भक्ति, इसलिए शिव योग। गुहायाम गेहेवा बहिरपि बने वा द्रिशिखरे जले वा वन्नौवा वसतु वसते किं वद फलम। अलग अलग जगह रहकर योग करते हो तो करें, उससे उन लोगों का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, कुछ नहीं प्रयोजन सिद्ध होने वाला। सदा यस्य इमान्तः करणम, जिसके अंतकरण में सदा नित्य निरंतर सतत, अपि संभो तव पदे, आपका चरण और जिसके अंतकरण का योग हो, संबंध हो, तब स्थितम चेद योगो असौ असौ योगः तव पदे चेतो स्थितम, आपके चरण में जिस समय चित्त स्थित हो जावे वही योगो असौ असौ योगः, वही सबसे उत्तम योग है। बाकी हठ योग क्रिया योग कुछ योग करते रहो कपाल भांति, भांति भांति का आसन करते रहो, चित्त यदि परमात्मा में जुड़ गया तो वो सबसे उत्तम योग है, वही सच परम योगी। और सबसे बड़ा योगी तो वही है जिसका चित्त परमात्मा के साथ जुड़ गया, और वही योग है जो चित्त परमात्मा के साथ जुड़ गया वो शिव योग है, और वो चित्त वाला व्यक्ति परम योगी है और सच सुखी, और संसार में वही सुखी होगा। रावण भी तो ये कहता है, भाई रावण जैसा दुष्ट व्यक्ति को भी संसार में एक चीज तो पूरी पक्का भरोसा है कि शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। शिवतांडव स्तोत्र पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? रावण कृत शिवतांडव स्तोत्र, रावण क्या कहता है? कदा निलिंप निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलिम वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भग्न पाप शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। मेरे जीवन में वो अवसर कब आएगा, मेरे जीवन में वो अवसर कब आएगा जब मैं पवित्र गंगा के नदी के किनारे बैठा हुआ हूं और सदा दोनों हाथ शिव चरण में प्रणाम के लिए जुड़े हुए हों, शिवेति मंत्र उच्चरण सतत सतत निरंतर अखंडित रूप में शिव शिव ये द्वय अक्षर का मंत्र सतत जब चलता हो तभी मैं सुखी होऊंगा। और वो अवसर मेरे जीवन में कब आएगा? तो रावण जैसा व्यक्ति भी ये कहता है सुखी होने के लिए तो शिवेति मंत्र उच्चरण, शिव नाम जप और शिव स्वरूप का ध्यान, वाणी सतत मंत्र जाप में लगे रहे। पहले का आ गया ना श्लोक में, पहले श्लोक आ चुका है। हमारे पास जो साधन है प्रकृति का दिया हुआ, हाथ पांव मन आदि ये सब इंद्रिया आदि, इसका प्रयोजन क्या है? ये सब सतत भगवान में समर्पित हो जाए तभी जीवन में सुख का अनुभव होगा, तभी वो जीवन सुखी होगा। अन्यथा इसके अतिरिक्त, शिव के अतिरिक्त सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। ये जानता हुआ भी आवृतम ज्ञान में तेना, गीता में कहा ना आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण दुष्पूरम अनले न चा। ये देखो गीता में कहा ये काम रूप जो दुष्पूर काम रूप है वह ज्ञानी के लिए, ज्ञानी का जो ज्ञान है उसको भी आवृत कर देता है ढक के। आवृतम ज्ञान में तेने ज्ञानी नो नित्य वैर शत्रु है वो। और रावण का ठीक यही हो रहा है, वो जानता है सुखी होने के लिए शिवाश्रय ही एकमात्र उपाय है। ये जानते हुए उसकी ज्ञान को काम रूपेण दुष्पूरेण आवृतम, उस ज्ञानम ज्ञान आवृत हो जाता है तो फिर क्या करेगा? तो विषय के कामना से वह भटकता रहता है और दुखी होता रहता है, भटकता रहता है दुखी होता रहता है, और जान रहा है फिर भी शिव योग साधना नहीं कर पा रहा है। और उसी बात को और आगे कहते हैं, असारे संसारे निज भजन दूरे जड़ धिया भ्रमंतम माम अंधम परम कृपया पातु मुचितम मदन्य को दीना तव कृपण रक्षाति निपुण त्वदन्य को वामे त्रिजगति शरण्य पशुपते। असारे संसारे, संसार का नाम क्या है? आषाढ़, असार है। यहां तो हम लोग तो आषाढ़ बोलते हैं ना, महीना का नाम शुरू हो गया ना आषाढ़ है, आषाढ़ महीना शुरू हुआ कि नहीं? हाँ, नेपाल में आषाढ़ नहीं बोलते, असार बोलते हैं, सीधे असार बोलते हैं नेपाली भाषा में। हाँ, लेकिन उनका असार अभी शुरू नहीं हुआ है, नहीं असार चल रहा है, अभी समाप्त तो होने वाला है। वो संक्रांत से मानते हैं, पंजाबी बंगाली और नेपाली संक्रांत से संक्रांत महीना मानते हैं। तो आप लोग एकम से एकम महीना मानते हो है ना, गुजराती अमावस्या के बाद के एकम से अमावस्या तक महीना मानते हैं, मारवाड़ी लोग पूनम के एकम से पूनम तक महीना मानते हैं है? अब पंजाबी नेपाली बंगाली संक्रांत से मासांत तब जो महीना मानते हैं। असार, संसार कैसा है तो बोले असार है। संसार में यदि खोजने जाओगे कुछ भी सार मिलने वाला नहीं है, क्षार मिलेगा सार नहीं मिलेगा। मिट्टी में यदि खोजने जाओगे, जितने खोदते जाओगे क्या मिलेगा? क्षार मिलेगा। क्षार माने राख या मिट्टी, धूल, संस्कृत भाषा में उसको क्षार कहते हैं, धूल को। वही तो पृथ्वी, जितना खोजोगे मिट्टी वही तो आएगा। इसलिए असार, असारे संसारे। और सार कौन है? सार और श्लोक नहीं है कि सार भगवान शिव के लिए आता है, उस श्लोक में भूल गए। नहीं नहीं, त्रैलोक के सारे हरे हैं, भगवान शिव का नाम है ना, त्रैलोक के सारे हरे। हाँ, तो सार तो भगवान शिव ही है, हर ही तीन लोक के सार है, पृथ्वी, मर्त्यलोक, देवलोक, पाताल लोक। तीनों लोक में, देवलोक से, स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत, समझे, और मर्त्यलोक अंतरिक्ष और पृथ्वी, और पाताल माने नीचे के सात लोक, ये सब तीन लोक के अंतर्गत आ जाते हैं। और तीन लोक में सार नाम केवल भगवान शिव का है, बाकी सब निस्सार है। जो शुगर केन होता है ना, सैरड़ी, गन्ना, उसका सार क्या है? हैं? रस। और रस का सार क्या है? चीनी। समझ गए कि नहीं? तो पूरे गन्ने का सार क्या है? तो कोलू में डालकर, मशीन में डालकर जब रस निकाल दिया जाता है, तो उसके पीछे जो निकलता है वो क्या है? असार। सार इधर आ गया, असार उधर चला गया। कपड़े में सार क्या है? कपास है ना। मशीन में इसको डालोगे तो क्या निकलेगा? इसका सार तो कपास ही है। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद में मधु विद्या है ना, छांदोग्य उपनिषद मधु है, मधु विद्या। सारे वेद का सार क्या है? सारे वेद का सार ऋग्वेद। तीनों वेद में महत्वपूर्ण ऋग्वेद। ऋग्वेद का सार गायत्री, गायत्री का सार व्याहृति, व्याहृति का भी सार प्रणव, ओमकार, ओमकार भी तीन मात्रा वाला। आउमा, और आउमा का सार है चंद्र बिंदु, उसका सार है बिंदु, और शिवलिंग तो बिंदु ही तो है, है? कल हम किसी के भोजन करने गए थे तो वहां चर्चा हुई, तो किसी ने हमसे पूछा, महाराज ये ओमकार में ये जो अलग अलग हैं इनका क्या अर्थ है? बोले नीचे जो ओम है वो तो आ उ म है, और ये जो चंद्रमा जैसा है इसका क्या अर्थ है महाराज? और बीच में बिंदु है उसका क्या अर्थ है? तो हमने बताया कि सारे जगत का सार सगुण साकार परमात्मा, सारा संसार का सार क्या है? सगुण साकार परमात्मा। सत्वगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा, और तमोगुण से रुद्र। ये क्या है? सारे संसार का सार है। और इन तीन का सार क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों का सार क्या है? ईश्वर। ध्यान देना, वेदांत की परिभाषा अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार, ईश्वर सगुण निराकार है। ईश्वर सगुण निराकार है, चतुर्भुज नारायण, चतुर्मुख ब्रह्मा है, और जटाजूट रुद्र, ये क्या है? सगुण साकार है। हाँ, और एक और इनका सार वो है सगुण निराकार। सगुण निराकार को ही वेदांत में ईश्वर कहते हैं, और उसका भी सार क्या है? निर्गुण निराकार। तो अ उ म क्रम से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त त्रिदेव है, और चंद्रमा सगुण निराकार ईश्वर का रूप है, और बिंदु निर्गुण निराकार परमात्मा का रूप है। परमात्मा सबसे ऊपर, निर्गुण निराकार, उससे थोड़ा लोअर क्वालिटी का कौन है? ईश्वर। चंद्रबिंदु थोड़ा नीचे है ना, और उससे और नीचे क्या है? पूरा ओंकार अहुमा। देख लो, जागृत, जागृत का सार स्वप्न, स्वप्न का सार सुसुप्ति, और सुसुप्ति का भी सार तुरीय, और तुरीय का भी सार तुरीयातीत, यही तो है। आ जागृत उ स्वप्न म सुसुप्ति, और चंद्रमा क्या है? तुरीय, और बिंदु तुरीयातीत, उसी आगे कुछ नहीं है। उसी को तो शिव कहा है, त्रैलोक के सारे हरे मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्ति मचलाम अन्यस्तु किम कर्म भी ही। ये देखो शिव ध्यान में आता है ना, असारे संसारे निज भजन दूरे जड़ दिया। जड़ बुद्धि वाले निज भजन दूरे, शंकराचार्य जी तो ये कहते हैं तुम कम से कम और का भजन न करो, अपना तो भजन करो। किसका भजन करो? निज भजन तो करो। भजन का अर्थ क्या होता है? भज सेवायाम, धातु से भजन बनता है। तुम और की सेवा करो चाहे न करो, अपनी सेवा तो करो भाई। अपनी सेवा का मतलब क्या? अपना हित तो करो। संसारी लोग संसार के औपचारिकता निभाते निभाते क्या में अपना अहित करके बैठ जाते, फॉर्मेलिटी में लगते संसार का औपचारिकता। ये करना चाहिए महाराज, ये छोड़ना चाहिए, शादी कर लेने के बाद तो पत्नी का निर्वहन तो करना ही पड़ेगा, बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, सारी दुनिया का औपचारिकता ही करते रह जाओगे, अपना क्या करोगे तुम? हैं? शंकराचार्य जी ऐसे लोगों को कहा निज भजन दूरे। अरे निज माने कौन? जीव कौन है? शिव ही तो है। शिव भजन ही निज भजन है, शिव की सेवा ही अपनी सेवा है। हाँ, औरों की सेवा, बाकी तो संसार की सेवा करते रहो, क्या मिलने वाला है? क्योंकि सार तो निज है। असारे संसारे निज भजन दूरे जड़ दिया, भ्रमंतम माम अंधम। शंकराचार्य जी ने तो कह दिया कि मैं अंधा हूं, अंधा हूं इसलिए मैं संसार में भटक रहा हूं। अंधा व्यक्ति भटकता है, आंख वाला भटकता है? आंख वाला तो भटकता नहीं, अंधा व्यक्ति भटक जाता है बेचारा, उसको पता नहीं किधर जाना है। चलता जरूर है लेकिन देखे बिना चलता है, चलता जरूर है देखे बिना चलता है, करता बहुत है लेकिन समझे बिना करता है, करता बहुत है लेकिन अपने लिए न कर दुनिया के लिए करता है, यही तो समझे भी न करता है। भ्रमंतम माम अंधम, और आपका स्वभाव कैसा है? परम कृपया पातुम उचितम, तो आपका ये स्वभाव होना ही चाहिए, उचित ही है कि मुझ अंधे व्यक्ति संसार में भटकते हुए को राह दिखाना आपका कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि नहीं अंधे को रास्ता दिखाना? आंख होने वाले का कर्तव्य क्या है? अंधों को राह दिखाओ। और शिवजी के पास तो तीन तीन आंख हैं, उनका कर्तव्य क्या है बोलो है? शिवजी के पास तो तीन तीन आंख हैं, इसीलिए उनका मूल कर्तव्य क्या बनता है? हमारे जैसे अंधों को राह दिखाना आपका कर्तव्य है। भ्रमंतम माम अंधम परम कृपया पातुम उचितम मदन्य को दीना। हे परमात्मा, संसार में यदि आप खोजने जाओगे, दीन दुखी को खोजने जाओगे, तो मेरे से बढ़कर दीन दुखी और कौन मिलने वाला है? संसार में हर व्यक्ति से पूछो, तुम्हारा क्या हाल है महाराज? हर व्यक्ति कहता है, महाराज मेरे से दुखी और कोई संसार में नहीं है। हर व्यक्ति ये कहता है, दुख है भले मेरा जैसा दुख और को ना देवे भगवान, किसी को और को ना दे, मैं बहुत दुखी हूं, सारा दुख मेरे ऊपर है। मदन्य को दीना तव कृपण रक्षाति निपुण। मैं कृपण हूं, दीन हूं, और आप कृपण के रक्षा करने में निपुण है, कुशल है। आपको तो खाली एक बार कृपा दृष्टि एक बार देख देने से काम चल जाएगा है? एक बार थोड़ी सी दया और करुणा का भाव लेकर मेरे तरफ देख दो, आपकी कृपा कटाक्ष ही हमारे लिए पर्याप्त तो हो जाएगा, क्योंकि आप कृपण रक्षा अति निपुण है। आजकल मीडिया में आ रहा है, एक कई हरियाणा में कहां पर है, एक लड़की बोरबेल में अंदर घुस गई ना है, और सब लगे हुए बेचारा उसको निकालने के लिए, सब लगे हुए हैं, अभी तक निकालने में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन मरी नहीं है, क्योंकि वो ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से मर गई। अच्छा चलो, वो भी गया, तीन दिन तो रक्षा कर दिया भगवान ने, और तुम लोग नहीं आए तो अब कब तक रक्षा करेगा वो? तीन दिन तो रक्षा कर दिया उसने, तो मर गई वो भी, चलो जाने दो। निपुण मदन्य को दीन स्तव कृपण रक्षाति निपुण तदन्य को वा मे त्रिजगति शरण्य पशुपते। हे पशुपते, मैं पशु हूं, आप पशुपति हैं, आपके अलावा इस संसार में और कोई शरण्य मेरा नहीं है, मैं किसके पास जाऊं, किसके शरण में जाऊं? किन क्योंकि कृपण की उद्धार करने का काम आपका है। कृपण शब्द का अर्थ उपनिषद में, आपके व्यवहार में तो कृपण शब्द का अर्थ कंजूस होता है, लेकिन वेदांत में कृपण शब्द का अर्थ कंजूस नहीं होता है। यो वा यतद अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति सकृपण। याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे गार्गी, इस संसार में अपने स्वरूप को जाने बिना जो मरता है वो कृपण है। युवा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति सब कृपण। और अर्जुन ने भी कृपण भाव को ही पहले कहा, हे महाराज मैं कृपण हूं, कार्पण्य दोष मुझ में है, और अपहता मेरे स्वभाव को वो कार्पण्य दोष के द्वारा अपहित पिहित हुआ है, ढक गया है, इसलिए अपने स्वरूप को अपने कर्तव्य को मैं नहीं जान रहा हूं, और आप उस कृपणता को दूर करने में निपुण हैं, क्योंकि भगवान शिव ही निपुण है, क्योंकि शिव ही ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या ही कार्पण्य दोष को अविद्या को नष्ट करने में समर्थ है। ईशान सर्व विद्या नाम ईश्वर सर्वता ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणो अधिपति। हाँ, इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा, मेरा शरण्य केवल आप हैं, आपके अलावा इस संसार में कोई शरण्य नहीं है, तो आपको छोड़कर मैं कहां जाऊं? तो क्या करूं, मैं अंधा हूं, अंधे को रास्ता दिखाना आपका काम है, मैं दीन हूं, दीन को मदद करना आपका काम है, और मैं कृपण हूं, अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान देना आपका काम है, आपको छोड़कर अब ये संसार में किसी का आश्रय मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि संसार असार है, आप सारा संसार के सार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
3: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे. We now host more than 25,000 audio recordings.

0: Sivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahima, presented by Swami Santoshi Mataji. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: मेरे आदि अंत का पता करके जल्दी मेरे पास लौट करके आएगा वो ही महान होगा। ब्रह्मा जी रजोगुणी थे, रजोगुण अहम का प्रतीक होता है और ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम तो ऊपर की तरफ सिर की तरफ जाएंगे और पता लेकर के आएंगे। ब्रह्मा जी ने अपनी यात्रा ऊपर की ओर आरंभ कर दी और भगवान श्री हरि विष्णु नीचे पाताल की ओर गरुड़ को लेकर पाताल की ओर भगवान श्रीहरि चले। भगवान तो पाताल की ओर जब दोनों चलने लगे तो आकाश की ओर जैसे ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए उड़कर के, तो मार्ग में उन्हें एक गाय मिल गई। जब गाय मिली तो गाय से पूछा तुम कहां से आ रही हो। ब्रह्मा जी इतने थके थे कि गाय माता कहती है कि ब्रह्मा जी आपको इतना श्रम और इतने आप थके हुए हैं। बोले बहुत समय से चल रहा हूं। कहां चल रहे हैं? बोले शिव का इस लिंग का ज्योतिष स्तंभ का पता लेने जा रहा हूं सिर। कहा महाराज ऐसी भूल मत करना, न जाने कितने कल्प से मैं चली आ रही हूं, अब तक मुझे पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा तो एक काम करोगे? बोले हाँ, बात ये है कि जब पूछा जाए तो तुम हमारे साथ मिल जाना और कहना कि ब्रह्मा जी ने हाँ सचमुच इस स्तंभ का ऊपर का जो सिरा है उसे इन्होंने देख लिया है। मैं वही तो थी, दूध का धार चढ़ा रही थी, वहीं से मुझे ब्रह्मा जी अपने साथ लिवा लाए, साथ लेकर के आ गए। इसी बीच एक फूल मिल गया, केतकी का फूल। केतकी का फूल केतली केतकी से पूछा तुम कहां से आ रही हो इतनी सुगंध। केतकी ने कहा कि मैं कई कल्प हो गए हैं भगवान शिव के सिर से निकलकर नीचे की ओर आ रही थी और मुझे न जाने कितने कल्प हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम एक काम करना, मेरे साथ मिल जाओ और तुम मेरी गवाह दे देना, बता देना कि हाँ मैं शिव इस लिंग के मस्तक पर चढ़ी हुई थी, वहां से ब्रह्मा जी साथ लेकर के आए। जैसे साथ लेकर वो ये दोनों गवाह तैयार कर लिए और दोनों गवाह तैयार करके साथ में लेकर ब्रह्मा जी लौट आए और भगवान श्री हरि नारायण नीचे पाताल की ओर जाते हुए वराह भगवान को साथ नारसिंह वाराही शक्ति को लेकर जब नीचे घूमने के लिए गए, ढूंढने के लिए गए, तो शेष बड़ी लंबी लंबी सांस लेकर के बड़ी बड़ी गहरी गहरी अपनी सांसें छोड़ रहे थे। पूछा शेष जी से महाराज आप इतनी गहरी गहरी सांसें लंबी लंबी सांस जो ले रहे हैं, इतने श्रमित हुए हैं, इसका कारण क्या है? कहा महाराज न जाने कितने कल्प से मैं शिव इस लिंग का अंत लेने के लिए जा रहा हूं पर नीचे का मुझे अभी तक कहीं ये अंत नहीं प्राप्त हुआ। इतना थक चुका हूं जिस थकान को दूर करने के लिए मैं अपनी लंबी और गहरी सांसें ले रहा हूं। भगवान श्री हरि ने कहा महाराज, शेष भगवान बोले महाराज इतना श्रम मत करिए कि आप नीचे जाएं। मैं इतना थक चुका हूं, मुझे अंत नहीं मिला। आप इतने थके हुए श्रमित हैं, आइए आप थोड़ी देर मेरे पर विश्राम कीजिए। भगवान श्री हरि को अपने ऊपर शेष जी ने लिटा लिया, उन्हें आराम विश्राम दिया और भगवान नारायण उठे और उठकर जब शिव उस लिंग के पास में आए तो ब्रह्मा जी को पहले वहां उपस्थित देखा।

0: भगवान नारायण भी आ गए। अब इस बीच पूछा गया, आकाशवाणी हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसका अंत लेकर आया हूं, मैंने भगवान का इस लिंग का मस्तक देखा है, ये दो मेरे साथ में साक्षी हैं, अपने साक्षी आगे कर दिए। गाय से कहा तो गाय ने भी सिर हिला दिया। केतकी से पूछा तो केतकी ने भी हामी भर दी झूठी। जैसे ही ब्रह्मा जी झूठ बोल करके बोले, ब्रह्मा जी ने जिस मुंह से झूठ बोला था, देखते देखते उसी शिवलिंग से जो अग्निमय था, ज्योतिर्मय था, वो देखते देखते एक श्याम रूप में एकदम सांवला और छोटे से उस अग्नि के तेज से काला बाहर निकला, कालिमा बाहर निकली, जो देखते देखते एक बालक के रूप में प्रकट हो गई, वही भगवान भैरवनाथ हैं। बोलो शंकर भगवान की। भगवान भैरव के रूप में एक बटुक के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने जिस मुंह से झूठ बोले थे उस मस्तक को काट करके अलग कर दिया। तब तक ब्रह्मा जी के पांच मुख थे और आज ब्रह्मा जी का वो मुख उनके मस्तक से अलग हो गया और उन्हें झूठ बोलने की सजा दी गई। मस्तक तो अलग कर ही दिया, वो सिर तो उनके शरीर से हटा ही दिया और साथ में ये श्राप भी दिया कि जाओ तुम झूठ बोलो इसलिए तुम्हारी पूज्यता नष्ट होगी, अर्थात तुम्हारी कहीं कोई पूजा नहीं करेगा। जब ब्रह्मा जी बहुत रुदन करने लगे भगवान शिव ने कहा अच्छा तो जाओ, तुम्हारे बिना कभी यज्ञ संपन्न नहीं होगा। जब जब यज्ञ का काम होगा तब तब ब्रह्मा जी का आह्वान किया जाता है। कुसा का ब्रह्मा बना करके यज्ञ वेदी के स्थान पर उन्हें बिठाया जाता है, अर्थात ब्रह्मा जी की पूजा होती है और उसके अतिरिक्त किसी कार्य में भी कहीं ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं होती है। इसीलिए देखने को मिलता है कि सारे भारत में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर राज में, उसके अतिरिक्त कहीं उनका दूसरा मंदिर नहीं है। केतकी को श्राप मिला कि जाओ तुम पूज्य नहीं रहोगी। केतकी के बार बार रुदन करने पर भगवान शिव ने कहा, अर्थात भैरव जी ने कहा कि जाओ तुम झूठ बोली हो, तुम्हें सजा तो यही मिलेगी, केवल एक दिन। तुम अन्य देवताओं में तो चढ़ोगी परंतु एक ही दिन तुम्हारा दिन होगा, उसे कहते हैं केवड़ा तृतीया। तृतीया एक तिथि के दिन केवड़ा तृतीया कहते हैं, केवड़ा की पूजा होती है। अन्य देवताओं में तो तुम चढ़ोगी परंतु शिव के समीप नहीं, अर्थात शंकर जी को केवड़े का इत्र, केवड़ा और केवड़े का पुष्प कभी चढ़ता नहीं है। तो कहने का भाव था कि वो केतकी को भी ये सजा मिली और गाय से कहा कि तुम झूठ बोली हो, तुमने झूठ के लिए सिर हिलाया है इसलिए जाओ तुम्हारे मुख की पूजा नहीं होगी, तुम्हारी पूंछ की पूजा होगी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी पूंछ की, और इसका तुम्हें श्राप ये मिलेगा, झूठ बोलने का तुम्हें दंड ये होगा कि कलयुग में जाकर तुम जिस मुंह से झूठ बोली हो उसी मुंह से तुम्हें अपवित्र अर्थात खाने को मिलेगा, विष्टादि खाने को तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार गाय को भी श्राप दिया गया। भगवान शिव श्री हरि विष्णु शांत थे और तब भगवान शिव ने कहा कि भी तुमने सच बोला है और सत्य को स्वीकारा है इसलिए जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि संसार में सबसे अधिक पूजा तुम्हारी होगी, सबसे अधिक पूजा तुम्हारी होगी। और सर्व भगवान शिव हरि ने, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें सर्व पूज्य देव की प्रधानता दी गई और भगवान उसी समय ज्योतिर्मय लिंग के रूप में जो प्रकट हुए थे वही ज्योति 12 जगह में जाकर वो लिंग 12 जगह स्थान पर जाकर गिरी और वही वो दिव्य ज्योति प्रकट हुई, वही 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी के विवाद को दूर करने वाला ये जो परम तत्व शिव है, अर्थात जिस भेद को ब्रह्मा विष्णु के भेद को मिटा करके उन्हें अभेदता को प्रदान कराने वाला, अर्थात शिव तत्व वो है जिसमें कोई भेद नहीं है, जिसमें कोई कलंक नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा जो सनातन तत्व है वो शिव है। इसीलिए शिव की महिमा मही मन पारंते, अपार उसकी, अपार शिव की महिमा है। भला शिव के इस शिव के समान दाता को नाही, संसार में उनकी दान की महिमा तो भला किसी से क्या छुपी हुई है। ऐसे महिमावान शिव जिनके दान की महिमा इतनी अपरंपार है, अर्थात शिव के दान से कौन छुपा हुआ है। कितना बड़ा दान है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, हलाहल नामक विष निकला और जो विष सकल सृष्टि को समाप्त करने के लिए, सकल सृष्टि समाप्त होने जा रही है, त्राही त्राही कहकर सृष्टि कांप उठी है, देवता लोग घबरा गए हैं और किसी में ये साहस नहीं है कि इस विष की दाहकता को समाप्त कर सके। ऐसे विकट समस्या गम इतनी परिस्थिति देवताओं के सामने आई कि कोई आगे बढ़ करके इस विष को भला कैसे शांत करेगा। सकल सृष्टि समाप्त हो जाएगी, अब कोई शेष बचेगा नहीं। इतनी विपत्ति आने पर भगवान शिव ही है, माँ पार्वती भगवान शिव की ओर निहारती हैं, देखती हैं। शिव चाहते हैं कि माँ कुछ कह रही है, माँ क्या कह रही है, यही कह रही है, हे भोलानाथ, हे शिव, तुम्हारे अतिरिक्त हे देवादि देव और कौन देव है, किसमें ऐसा सामर्थ्य है, कौन इतना समर्थ है, कौन इतना बलवान है कि जो इस विश्व से सृष्टि के विनाश से बचा सके, इस महाविनाश को कोई रोक सकता है, तो केवल महादेव आप ही रोक सकते हैं। भगवान शिव ने उस विष को लिया और लेकर के अपने कंठ में अवरोधन कर लिया, कंठ में रोक लिया। भगवान शिव मन में विचार करते हैं, यदि ये विष मैं सीधे अपने मुंह के रास्ते मुख में ले लूंगा, विष पीने के लिए तो विष को मुख में लेना पड़ेगा, और मुख में यदि विष लूंगा तो मुख के अंदर परमात्मा का नाम रहता है, राम नाम रहता है, अर्थात हरि का नाम ही राम है। राम कहो, हरि कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, अर्थात भगवान शिव के मित्र का नाम। मित्र का नाम तो निरंतर मुंह में रहता है नारायण। जिससे आप स्नेह करते हैं उसका नाम कभी भूलते हो क्या? वो नाम विसराया नहीं जाता है, भूला नहीं जाता है, भूलने पर भी वो याद रहता है। अर्थात भगवान शिव का नाम मुख में निरंतर अपने परम मित्र हरि का नाम रहता है। बोले हरि का नाम भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों? आप लोग गोस्वामी जी लिखते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत तिदारी। भगवान शिव निरंतर जिस नाम को जपते हैं, जिस नाम का रटन करते हैं, कभी भूलते नहीं। ऐसी प्रगाढ़ मित्रता, ऐसी अभिन्न मित्रता शिव की नारायण के साथ में कैसे हो गई? बोली ये मित्रता की साक्षता क्या है, ये यही कथा है जो अभी अभी आपने सुनी कि नारायण सत्य है, नारायण सत्य है, और शिव को प्रिय क्या है? नारायण शिव को प्रिय है सत्य, अर्थात जो सत्य है वो शिव को प्रिय है, और सत्य का ही रूप है शिव, और शिव का ही रूप है सत्य। सत्य से शिव को अलग नहीं किया जा सकता और शिव से सत्य अलग नहीं है, सत्य से शिव ने अलग नहीं है। इसीलिए कहा तन में मना शिव संकल्प वस्तु, वो शिव सत्य है, सनातन है और दोनों की मित्रता है। सत्य कहने से नारायण है और शिव कहने से कल्याण है। इन दोनों में भेद नहीं किया जा सकता, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान शिव को नारायण प्रिय है अर्थात सत्य प्रिय है और वो सत्य उनके मुख में रहता है। अभिप्राय ये है जो सत्य बोलते हैं वही शिव को प्रिय है, असत्यवादी का मस्तक तो शिव के समक्ष कट जाता है। असत्य भगवान शिव को प्रिय नहीं है। कोई ये चाहे कि मैं शंकर को प्रसन्न करूं और बोलूं असत्य तो ये कदापि संभव नहीं ना, इसमें शिव की प्रियता नहीं हो सकती, शिव की प्रसन्नता नहीं हो सकती। शिव की प्रसन्नता तो सदैव सत्य पर है। भगवान शिव ने सोचा यदि सत्य के साथ विष जुड़ गया तो सत्य की महिमा घट जाएगी, लोग कहेंगे इसके साथ तो कड़वाहट जुड़ी हुई है अर्थात विष जुड़ा हुआ है, इसे कोई लेना पसंद नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। जिसमें केवल केवल सत्य है माने मिठास है, मिठास के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज नहीं है, वो तो केवल सत्य है, भगवान का नाम है। भगवान शिव ने तब उसे मोह में न लेकर के कहां लिया, बोले सीधे उसे अपने कंठ में उतार लिया, घिटक लिया भगवान शिव ने, कंठ के अंदर ले लिया और कंठ में अवरोधन कर लिया, रोक लिया वहीं पर और उतना स्थान नीला पड़ गया तो भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया। और दूसरी बात बहुत सुंदर, शिव कौन, शिव वो है जो समुद्र का, ये विष क्या है, बोली ये विष है समुद्र का दोष, समुद्र का सब दुर्गुण। यू तो समुद्र का नाम है रत्नाकर, जिसके भीतर अनेक अनेक रत्न छुपे हुए, माने अनेक अनेक गुण हैं। समुद्र से ही लक्ष्मी निकली है, समुद्र से ही चंद्रमा निकले हैं, समुद्र से ही 14 रत्न निकले, अमृत भी उसी से निकला, धनवंतरी भी उसी से निकली, कामधेनु भी उसी से निकले, कल्प वृक्ष भी उसी से निकले, ऐरावत हाथी भी उसी से निकले, उच्च सवा नामक घोड़ा भी वहीं से निकला, अर्थात अनेक रत्न निकले हैं। परंतु अनेक रत्नों में जहां रत्ना करके भीतर से अनेक अनेक रत्न निकले, छुपे हुए रत्न प्रकट हुए, तो वहां उसका एक दोष भी निकला, विष भी निकला। कहने का तात्पर्य ऐसा है, अस को जन्मा जगमाई, ऐसा कौन है, कौन पैदा हुआ है जिसमें केवल गुण ही गुण हो, अवगुण न हो। जहां गुण रहते हैं वहां अवगुण रहते हैं और जहां अवगुण रहते हैं वहां गुण रहते हैं। गुणों के साथ गुणों का पर्याय यदि आप लेकर के चले तो उसके साथ साथ अवगुण मिलेंगे, अवगुण के साथ गुण मिलेंगे। भगवान यही बताना चाहते हैं, शिव यही कहना चाहते हैं कि संसार में गुण भी है और अवगुण भी है। यदि गुण निकलते हैं किसी के भी गुणों को उजागर करें और उसका जो दोष है, दुर्गुण है, जो दूषण है, यदि दोष भी है तो उस दोष को छुपा करके दूषण को भी आभूषण बना करके उसे जो सजा ले, उसे स्थान दे दे, उसका नाम शिव होता है, उसका नाम शिव होता है ना। इसलिए भगवान शिव ये संसार को कहना चाहते हैं, दोष दुर्गुण को छुपा करके दूषण को भूषण बना करके उसे प्रस्तुत कर दिया संसार के सामने कि वो भगवान शिव की सुंदरता का कारण बन गया। भगवान शिव बहुत सुंदर है, उनका कंठ में ये ऐसा दिखाई पड़ना है नील मणि के समान उज्जवल, नील मणि के समान सुंदर, वो सुंदरता का प्रतीक बन गया। शिव की सुंदरता उनकी कंठ की नीलता का प्रतीक बन गया। भगवान शिव कहते हैं कि देखो भैया इस संसार में और दान कैसे करें, कैसा दान होना चाहिए, बोले जो संसार के विष को पी करके संसार को जीवत्व प्रदान करे, जीवन दे, दूसरे को जियाने के लिए स्वयं मृत्यु को अपने कंठ से लगा ले, मौत को कंठ से लगा करके जो दूसरे को जीवन जीने की दिशा देता है, जीवन देता है, उसी को देव नहीं कहते हैं, उसे महादेव कहते हैं, वो दाता है। इसलिए शिव समान को दानी, शिव के समान कौन दानी हुआ, जो दूसरे को जीवन देता है वही तो दाता है नारायण। हम भगवान शिव की इस महिमा को, जिस महिमा के द्वारा भगवान शिव की अनंत अनंत इस महिमा एक छोटे से नाम में छुपाई हुई, शिव नाम द्व्यक्षर नाम है और शिव पंचाक्षर है। नमः शिवाय द्व्यक्षर शिवाय और नमः इसके साथ द्व्यक्षर त्रक्षर और उसके साथ पंचाक्षर, पंचाक्षरी मंत्र है, पांच अक्षर जिसमें इतना छोटा नाम नमः शिवाय। ये जो नमः शिवाय नाम है ना नारायण, इसे कोई साधारण नहीं समझना, ये वेद मंत्र है, वेद मंत्र, वेद मंत्र, मंत्र हमारे वेदों में है और जिनमें से वेद में भी चार वेद और चार उपवेद हैं। उपवेदों में आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, ज्योतिष वेद है, ये भी वेद है, परंतु जो मुख्य चार वेद है यजुर्वेद का मंत्र है ओम नमः शिवाय नवशम भवाय च मयो भवाय च मयस्कराय च शिवाय च नमः शिवाय च शिवाय शिव। ये जो शिवाय शब्द है नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र वेद मंत्र है, वेदोक्त है। मंत्र दो तरह के होते हैं, एक पौराणिक मंत्र होते हैं और एक वैदिक मंत्र होते हैं। कुछ तंत्र मंत्र होते हैं जिसे सावर मंत्र कहते हैं, तंत्रोक्त तंत्र ग्रंथ में भी, तंत्र भी एक अगम शास्त्र जिसे कहते हैं, अगम माने तंत्र, तंत्र जो भगवान शिव की परम, जिसके तंत्र के प्रणेता हैं भगवान शिव, जो भगवान शिव की उपासना से जो एक विद्या चली आ रही है उस विद्या को कहते हैं तंत्रोक्त विद्या। और जो ब्रह्मा जी के द्वारा विधि के मार्ग से जो चली आ रही है विद्या उसको वेद विद्या कहते हैं। इसलिए दो तरह के मंत्र होते हैं, एक वेदोक्त एक तंत्रोक्त, और वेदोक्त और उनमें से कुछ पौराणिक मंत्र होते हैं। पर याद रखना ये नमः शिवाय तो वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र। और इस शिव की महिमा छोटे से नाम पर, पंचाक्षरी नाम के भीतर कैसे छुपी हुई है, भगवान को शिव के नाम की महिमा नमन करने से, केवल केवल भगवान शिव के चरणों में नमः, इस सिर को झुका लेने मात्र से, केवल नमन करने मात्र से कितने बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव चरणों में हमारा मस्तक एक बार झुक जाए, क्योंकि बड़ा कठिन है, कठिन है इस मस्तक को झुकाना, कि मस्तक सीधा है, बोले क्यों, क्योंकि इसके अंदर अहम भरा हुआ है, जीव का अहंकार झुकने नहीं देता है। जब तक जीव के भीतर से जीवत्व का अभिमान नहीं हटेगा तब तक ये मस्तक सही रूप से शिव चरणों में झुकेगा नहीं। इसीलिए भगवान शिव के चरणों में मस्तक झुकाने के लिए, नीचे करने के लिए शिव महिमा ज्यों ज्यों कान के भीतर जाएगी और कान के माध्यम से हृदय तक पहुंचेगी और हृदय से मस्तिष्क की ओर जाती वो विद्या जब हमारे अंदर आंदोलित होगी, तब ये मस्तक के भीतर का अहंकार छूटेगा और धीरे धीरे ये मस्तक शिव चरणों में झुक जाएगा। और जिसने झुक गया, जो एक बार गिर गया, उसने शिव के चरणों में पहुंचकर सर्वस्व प्राप्त कर लिया। जैसे एक बीज जब मिट्टी में मिलता है, बीज मिट्टी में मिलता है और मिट्टी में मरता है, तब उससे वृक्ष बन करके प्रकट होता है। उसी प्रकार दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। उसी भांति हमें जब तक भगवान के चरणों में अपने को मिटाएंगे नहीं, और मिटाने के लिए कथा सुननी है, श्रवण है, श्रवण के बिना बात बनेगी नहीं। इसलिए आइए अब की बार शिव महिमा को श्रवण करने के लिए हमारे पास 4-5 दिन का समय है, और जिसमें मैंने कहा था शिव महिमन स्तोत्र के माध्यम से और शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम साथ में लगा देने से तो षडाक्षर बन जाता है, केवल पंचाक्षर नमः शिवाय। इस बात पर सुबह के इस पावन बेला में कल से नमः शिवाय पर विचार करेंगे। 5 अक्षर हैं, इनको सुनकर अपने जीवन को कल्याणकारी बनाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 3, Sukta 7. Thank you.

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரியோபனிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: ஓர் உஸ்கா ஹேத்பூத் ஜோ ஹை வல் ஹை ஜ்ஞான் ஹை ஐசே உஸ் ஜ்ஞான் சே ஹமே சம்பன்ன கரே ஓர் உஸ்ஸே ஜப் ஹம் சம்பன்ன ஹோ ஜாயேங்கே தவி மை கௌன் ஹூ இஸ் பாத் கோ ஜான் பாயேங்கே யா ஹமாரா ஜோ பரம் புருஷார்த் ஹை உஸ்கி ப்ராப்தி ஹோ சகேகி ஓர் யா ஜோ ஹமாரி யே அபீப்ஸா ஹை கி மேரி கபி மிருத்யு ந ஹோ ஓர் மிருத்யு சப்த சோடோ மேரா கபி அபாவ் ந ஹோ கியோன்கி மிருத்யு கோ தோ க்யா கஹ தியா பிரதாரண்யகாதி ஸ்ருதியோ கே அந்தர் ஜஹான் சர்ச்சா ஆயி தோ மிருத்யு கோ க்யா கஹா ஹை வஹான் தோ அந்திம் மிருத்யு கஹ கர்கே வஹான் சங்கேத் கர் தியா ஓர் வோ மிருத்யு ஜோ ஹை வோ க்யா ஹை तो कहने लगे वो मृत्यु आत्मा ही मृत्यु है, उस आत्मा से भिन्न कोई मृत्यु नहीं। जिसको भगवान ने गीता में कह दिया अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं, तो वहां अंतिम मृत्यु की बात कही, वहां सीढ़ियां बताई मृत्यु की, क्रम से उसके बाद कोई मृत्यु नहीं है याज्ञवल्क्य आदि के प्रसंग में। तो यहां पर जो है मतलब तात्पर्य इतना है कि कोई भी अपनी सत्ता का अभाव कभी चाहता नहीं, वो चाहता है हमारी सत्ता सदैव बनी रहे। लेकिन अब इस चाहने में है क्या, सत्ता तो कभी अभाव सत्ता का होता नहीं। आप गीता ही में पढ़ते हो हैं? सत का कभी अभाव और असत का कभी भाव, लेकिन फिर हमारा भाव क्यों हो जाता, हमारी मृत्यु क्यों हो जाती। तो कहने लगे यहीं पर समझने की बात है, यहीं पर इस बल की जरूरत है, यहीं पर इस ज्ञान की जरूरत है कि जो अभाव होता है वो किसका होता है, क्योंकि सत्ता तो कभी अभाव से रहित हो नहीं सकती। जो सत्ता है सत्ता किसकी होगी, सत्य की होगी, और सत्य क्या है, जो त्रिकालावादित है, तीनों कालों में जिसका वाद नहीं होता। तो फिर हमारा वाद क्यों हो गया, हमारा भाव क्यों हो गया, हमारी मृत्यु क्यों हो गई। तो कहने लगे आपने अपने को समझा ही, इसी की जरूरत है। और जब इस चीज को समझ लोगे तो क्या होगा, तो कहने लगे फिर तुम्हारा कभी अभाव नहीं, तुम अमृत रूप हो जाओगे। तो अब जो है हमको कहीं न कहीं भूल हो गई है, हमारे में कहीं न कहीं विस्मृति आ गई, विस्मृति का प्रमाद का नाम ही मृत्यु है। तो हमारे में कहीं भूल हो गई, हम जो नहीं है वो हमने अपने को मान लिया। और ये निश्चित है जो मानोगे वो मानी हुई वस्तु सदा टिकने वाली, जो मान्यता होती है वो मान्यता सदा टिकती नहीं। टिकती क्या चीज है, जो यथार्थ में है। जैसे एक मनुष्य, ये सामान्य धर्म, अब उसमें विशेष धर्म क्या हो गया, कहा साधु है, फिर उसमें जो है और भी हो जाते, डॉक्टर इंजीनियर आदि धर्म हो गए। लेकिन ये सारे धर्म कैसे, एक क्रिया विशेष को लेके, एक संस्कार विशेष को लेके, लेकिन वो क्रिया विशेष को लेकर होने वाले, संस्कार विशेष को लेकर होने वाले, वो नियम नहीं है कि सदा रहे, उनका कभी भी अभाव हो सकता। लेकिन मनुष्यत्व जो है वो जब तक मनुष्य है तब तक उसकी मनुष्यत्व का अभाव नहीं। वही हम लाल कपड़े पहन लिए तो आप कहते हो बाबा जी, ठीक है ना, और ये कपड़े हम पहन करके आप जैसे पहने तो क्या कहोगे, तो बाबा जी कहोगे। लेकिन इन कपड़ों को पहनने पर, लाल कपड़ों को पहनने पर जो हमारी मनुष्यता थी वो तो बरकरार दोनों जगह थी कि नहीं, तो रहेगी। ऐसे ही सत्ता जो है उसका अपलाप नहीं होता, किंतु उसमें जो हमने एक मान्यता स्थापित कर ली, एक जो हमने संपादन कर लिया, एक जो हमने आरोपण कर लिया, वो आरोपण जो है वही क्या है, आता और जाता, उसमें ही परिवर्तन होता, उसी का भावाभाव होता। अभाव उसका होता है लेकिन जब उसी को, संपादन को ही हमने समझ लिया, संपादन रूप ही मैं हूं, ऐसे संपादन को ही हमने संपद समझ लिया। संपद माने ज्ञान भी होता है, संपद माने संपादन भी होता है, संपादन शब्द का अर्थ है आरोपण, तो संपद माने ज्ञान भी है और संपद माने आरोपण भी है। तो अब जो हमको ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है, आरोपित ज्ञान है, और आरोपित जब तक ज्ञान रहेगा तब तक ये मृत्यु पीछा छोड़ेगी, तब तक वाहवा भाव की स्थिति रहेगी। और इस आरोपण को हमने आरोप यदि समझ लिया है, जैसे आप समझते हो कि वस्त्र को हमने पहन लिया तो उतारने में भी समर्थ होते, ठीक है। तो अब ऐसे जब समझ लोगे तो फिर वस्त्र जो है उतारने में भी आप समर्थ हो, पहनने में भी समर्थ हो, लेकिन अब ये नहीं कहोगे कि मैं वस्त्र हूं। क्या कहोगे? मैं इससे अलग, ये तो मेरा आवरण है और ये तो नाशवान है, इसलिए उसमें इतनी अभिरुचि नहीं होगी। तात्कालिक अभिरुचि होगी, अपने को मैंने सुरक्षित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आप करोगे, लेकिन आप ये जानते हो कि ये मैं नहीं। तो ऐसे ज्ञान करने के लिए, ऐसे उस आरोपण को जो है विस्मृत करने के लिए, अब उसको विस्मृत कैसे करोगे, तो उसके लिए समझने के लिए बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। और वो सामर्थ्य, वो मेधा शक्ति कहां से प्राप्त होगी? तो उसके लिए ही प्रार्थना की कि जो वह इंद्र है, ईश्वर है, वह ईश्वर क्या करे कि मुझे ऐसी बुद्धि के अंदर मेधा शक्ति दे कि इस चीज को मैं ठीक ठीक समझ सकूं, अपनी भूल को सुधार सकूं। हमारा जो मैंने भूल हुई है, हमसे जो भ्रांति हुई है, उसको हम सुधारने में समर्थ हो सकूं, ऐसा संकेत करता। अब अमृतस्य देव धारणो भूयाशम, वह देव मेरे लिए क्या है? अमृत धारण कराने वाला हो जाए। उस देव से प्रार्थना करता, मैं अमृत धारण करने वाला हो जाऊं। और जब इस प्रकार से बल मिल जाएगा तो उस अमृतत्व की भी प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए जो है उस देव से प्रार्थना करते हैं। तो अब जो है इस प्रकार से बताते हुए वे शरीरम वे विचर्षम आदि सब करके कहा और आगे संकेत कर दिया कि ये सब कुछ होते हुए जिस लोक व्यवहार के अंतर्गत हम अपनी चर्या में चर्यान्वित हैं, जी रहे हैं, वहां पर भी कैसी स्थिति होनी चाहिए? हम यदि ये चाहते हैं तो यहां पर लोक व्यवहार का भी अपलाप नहीं किया। लोक व्यवहार में तुम्हारे में एक मधुरता आ जानी चाहिए, लोक व्यवहार में भी तुम्हारे अंदर एक प्रियता आ जानी चाहिए। अब उस मधुरता कैसे आएगी, प्रियता कैसे आएगी, जिससे तुम भी सदा प्रसन्न रहो और तुम्हारे आसपास रहने वाले भी सदा प्रसन्न रहे, वो कैसे होगी? तो यहां पर स्थूल रूप से संकेत किया कि जिह्वा में मधुमत्तमा, क्या होना चाहिए? कहा मेरी जिह्वा कैसी हो जाए? मधु नहीं, मीठी नहीं, क्या कहा? मधुमत्तमा, तम प्रत्यय लगा दिया, इतनी मीठी, इतनी मीठी कि उससे मीठा कोई हो ही नहीं, है ना ये। और ऐसा हो जाना चाहिए तो जिह्वा मीठी कैसे होगी? कहा रसगुल्ला खा लो मीठी हो जाए। कहा ये नहीं, जिह्वा के मिठास के लिए क्या मने? आपकी वाणी में वह मधुरता, आपकी वाणी में वह मिठास होना चाहिए कि जिस वाणी को श्रवण करते ही सामने वाला जो है प्रसन्न हो जाए, है ना। इसलिए वाणी की जहां चर्चा आई तो संकेत कर दिया सत्यम ब्रुवात, प्रियम ब्रुवात, ये सब संकेत किया। और उसके साथ साथ कहा सत्यम हितम मितन, मधु शब्द का भी प्रयोग कर दिया। ये वाणी की सौष्ठवता को बतलाया। वाणी की सौष्ठवता वास्तव में क्या है? तो जहां पर वाणी हमारी जो है इन धर्मों से युक्त है, माने सत्य भी है उसमें, लेकिन सत्य के साथ साथ में वहां पर जोड़ दिया वह सत्य जो तुम बोल रहे हो वह कैसा भी होना चाहिए? का हितकर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी का अनहित करने वाला सत्य हो, तब कैसे सत्य को? तो सत्यम ब्रुवा प्रियम ब्रुवा, संकेत जोड़ दिया, सत्य तो बोलो लेकिन प्रिय बोलो। अप्रियम सत्यम मा ब्रुवा, अप्रिय सत्य भी है तो उसे बोलो नहीं, क्योंकि उससे सामने वाले को कष्ट होगा, अनित होगा। तो ये सब संकेत कर दिया, इसलिए कहा कि मधुमत्तमा, वाणी मेरी कैसी हो? उत्तम, मधु से युक्त हो। और जानते हो संसार में जितने भी उपद्रव होते हैं वो किसको लेके होते? वाणी को लेकर के होते। वाणी के द्वारा ही भाई भाई में शत्रुता हो जाती है ना, और वाणी के द्वारा ही शत्रु भी मित्र बन जाते। कहीं पर शत्रु मित्र बन जाता है और कहीं पर मित्र जो है शत्रु बन जाता है। क्यों? कि एक वाणी को लेकर, लोग देहात में कहते ना कि गोली का घाव उतना है भयंकर नहीं होता है जितना बोली का होता है। गोली का घाव तो जो है क्या होता, घाव इलाज करने से, उपचार करने से भर जाता है, लेकिन बोली का घाव जल्दी जाता। और गोली के घाव में तो जैसे जैसे उसका है मरम पट्टी करते हो तो धीरे धीरे क्या होता, उसका जो जलन है, उसका जो कष्ट है वो भी समाप्त हो जाता, लेकिन बोली का जो कष्ट है वो तो अहर्निश हमको क्या करता रहता, हमारी अंतर अंतर ही दग्ध करता है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि व्यवहार भी पहले सुधरना चाहिए। आप जो है केवल जो है आप जाकर के जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, होम कर रहे हो, तो ये संकेत इसका मतलब यहां पर ये दे रहे हैं कि जप भी उत्तम है, जप के लिए करेंगे भी, तप भी उत्तम है, होम आदि भी उत्तम है, वो श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन उस श्रेष्ठ कर्मों के साथ साथ में जो सामान्य चर्या में कर्म है वहां से आपको प्रारंभ करना। यदि पहली सीढ़ी नहीं संभलेगी तो दूसरी सीढ़ी पर पहुंचना भी कठिन होगा। इसलिए कहा कि वाणी कैसी हो जाए तो मधुमत्तमा, मधुरता से युक्त हो जाए वाणी में, सर्वत्र आप जहां बोले तो आपकी वो वाणी के अंदर वो अलंकार होने चाहिए, वो रस होना चाहिए, वो गुण होने चाहिए, वो सौष्ठवता होनी चाहिए, और ये सब जो है जब हो जाएंगे तो वाणी में वही लालित्य आ जाता है, सामने वाला उस वाणी को सुनकर के जो है आनंदित हो जाता है, और वो आनंदित होता और तुम स्वयं उनको लेकर के बोलते हो तो तुम्हारे अंदर भी आनंद। इसलिए संकेत किया कि वाणी को लेकर क्या, जिह्वा में मधुमत्तमा, जिह्वा से जो भी शब्द का उच्चारण हो वो शब्द का उच्चारण कैसे होना चाहिए, जो भी प्रयत्न हो, इसलिए पहले प्रयत्न की, स्वर की है ना, और मात्राओं की चर्चा करते। वाणी तो एक ही है, लोग कहते नहीं, किसी ने कहा कोई बैठे थे या मान लो कुछ सहेलियां बैठी थी, उधर से देखा तो एक ने कहा कि जो है तुम्हारे हैं पतिदेव आ रहे, तो उसे अच्छा लगा कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी कहने लगी तुम्हारे खसम आ रहे। अब दोनों का अर्थ एक ही, दोनों का अर्थ एक ही, अर्थ में कोई अंतर नहीं और लक्ष्य भी एक ही, लेकिन उस वाणी के व्यवहार से क्या हुआ, एक के शब्द सुनकर के उसके हृदय में जलन पैदा हो गई ईसा, और दूसरे के शब्द सुन करके उसके हृदय में प्रसन्नता हुई। तो अब जो है शब्द का हमने जो चयन किया और शब्द का चयन करके उन शब्दों का जो वाक्य विन्यास किया या वाक्य को जो है योजना की, उसकी रचना की, वह रचना भी इस बात पर निर्भर करती। तो वाणी में, जिह्वा में मधुरता कब आएगी, तो हमारे जीवन में उन शब्दों को, वर्णों को यानी क्या है समायोजित करने की एक कला होनी चाहिए, उनकी रचना करने की एक कला होनी चाहिए, और उनको जो है उस प्रकार से जब करेंगे तो उनमें है अलंकार का मतलब ही होता, साहित्य में तो अहमक आदि और अनुप्रास आदि अलंकार कहे, अलंकार का मतलब क्या है, उसे ऐसे सजा देना, जैसे हम लोग अलंकार आभूषण पहनते, तो अब उसे ऐसे सजा देना कि उस शब्द वही है लेकिन उस शब्द के अंतर्गत रस आ जाए। और आप जानते हो इसके लिए स्वर मात्रा ये भी उसमें, उदात्तादीश्वर ये भी उसमें ध्यान रखते, क्योंकि कहीं पर जो है आप जब उच्चारण करते हो वर्ण का और आपने उच्चारण मध्यम ध्वनि से किया, सामादि की चर्चा की, तो वहां पर क्या है सुनने वाले को कोई कष्ट नहीं, और उसी का उच्चारण आपने है थोड़े कर्कशता से कर दिया तो सामने वालों को कष्ट हो, इसलिए उच्चारण पर भी ध्यान, ये सब संगीता इत्यादि इसलिए बतलाई थी। तो यहां पर कहते हैं कि जिह्वा में मधुरता कब आएगी, तो जिह्वा की मधुरता तभी आएगी हमारे शब्दों का और शब्दों के द्वारा वाक्यों का जो योजना उनकी जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो अलंकार आदि से युक्त होनी चाहिए, मने उसमें सौंदर्य होना चाहिए, उसमें सामत्व आदि विद्यमान होना चाहिए, उसमें मात्राओं का ध्यान रखना चाहिए, उदात्त अनुदात सुरद का ध्यान रखना, और इन सब के लेकर के जब हम उस वाक्य को मने रचित करते हैं, वाक्य का उच्चार करते हैं, तो वही वाक्य दूसरों के हृदय को प्रसन्न कर दे और हमारे हृदय को भी प्रसन्न कर दे। इसलिए कहा कि वाणी के अंतर्गत क्या होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, तो हमारी व्यवहार में भी पहले मधुरता आए तब हम जो है लाल कपड़े पहन लिए, जब भी कर रहे हैं तब भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, लेकिन वाणी के अंतर्गत है कोई आके पास बैठ गया है, जानता नहीं मैं महात्मा हूं, तुमको ठीक ढंग से बैठना चाहिए, तो क्या हो गया, अब भले ही तुमने कहा कुछ भी कहा, भले ही शिष्टाचार के अनुकूल कहा हो, लेकिन उसके हृदय में तो बोलने का एक ढंग है, तो कैसे बोलना है और तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए। तो इसलिए संकेत किया हमारा व्यवहार भी पहले सुधरना चाहिए। इसलिए शास्त्र इसका निषेध नहीं करता। तो कहा कि जिह्वा में मद्मत्तम और कर्णाभ्याम भूर विश्रवम, क्या संकेत किया, कानों के द्वारा बार बार शास्त्र जो है यही संकेत करते हैं, भद्रम कर्णे भी, क्या कहते कानों से क्या सुने, कल्याणकारक से। और इतना ही नहीं कहा, कैसा सुने तो यहां तो ये और कह दिया, विश्रवम विशेष रूप से, अर्थात मैं इतना सुनने वाला हो जाऊं कि सुनने से कभी उपरतता न हो। और तुलसीदास ने तो लिखा ही भरे न पूरे है, संकेत कर दिया, कभी भी जो है निरंतर सुनते सुनते भी ये कभी भरते नहीं, ऐसी जो है स्थिति जब आ जाएगी। लेकिन किसको सुने ये भी ध्यान रखना, यहां जिस लक्ष्य की चर्चा की गई, ऐसी अपने पुरुषार्थ के हेतुभूत जो वाक्य हैं, जिन वाक्यों के द्वारा हमको वह ज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान से हमें अमृतत्व की प्राप्ति होगी, ऐसे उन वाक्यों को सुनने के लिए कहा। और उन वाक्यों के लिए कहा कि उन वाक्यों से कभी भी जो है हमको परामता न हो। तो इसलिए संकेत किया कि बहुत सुनने वाला मैं हो जाऊं, अर्थात वह सुनने वाला हो जाऊं, अर्थात सुनने से मुझे कभी उपरामता न हो। लेकिन सुनना भी क्या, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से कर्णाभ्याम भूर विश्रवम, और फिर इस प्रकार से बतलाते हुए उसी की तरफ संकेत कर दिया, ब्रह्मणा कोशोसी, तुम जो है क्या हो, ओंकार को संकेत किया, तुम उस ब्रह्म के कोश हो, आवरण हो, समीपी हो। इसलिए फिर क्या है, कहने लगे मेधया पीता, लेकिन तुम कोश किस रूप में हो, ये भी संकेत किया। तो संकेत कर दिया कोश है मेधा के रूप में। अब मेधा क्या, तो व्यष्टिगत बुद्धि, और उस बुद्धि में रहने वाली मेधा वही उसके लिए क्या बन गई है, आवरण बन गई। समष्ट्यात्मक बुद्धि और उसमें रहने वाली मेधा उसके लिए आवरण नहीं है, ठीक है ना। समझना यह पड़ेगा कि हमारी व्यष्टात्मक जो बुद्धि है और उस बुद्धि में जो क्या नाम मेधा है, अर्थात ग्राहक जो शक्ति है, उसी में गड़बड़ हुआ है। वो बुद्धि को क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये उसी में बल नहीं रह गया। और उसमें ये बल न रहने के कारण हम जो है उसके समीप होते हुए और हवड़ होते हुए भी उसे पहचान पा रहे नहीं। इसलिए संकेत किया मेधया पीता, वह जो है उस मेधा से ही ढक गई है। इसलिए क्या होना चाहिए, श्रुतम वे गोपाय, मैं बहुत सुनूं, लेकिन सुनूं तो बहुत और सुनते भी सारे दिन सुनते रहते, लेकिन कहने लगे वह जो मेरा सुना हुआ है, तो उस देवता से प्रार्थना करते हैं, श्रुतम में गोपाय, मेरे सुने हुए की रक्षा कर, मैं जो सुनता हूं वो मेरे में टिके, ऐसा नहीं कि सुन लिया और चला गया। तो वो जो मैंने सुना है, उस सुने हुए को मेरे को तू स्मृति में ला, अर्थात वो मेरे से विस्मृत न हो, मन उसमें मेरा प्रमाद न हो, मैं प्रमाद से रहित हो जाऊं, विस्मृति आदि से रहित हो जाऊं, इस प्रकार से मेरे सुने हुए की तू रक्षा कर। तो श्रुतम वे गोपाय, मेरे श्रवण की रक्षा कर। और ऐसा कहते हुए फिर आगे पुनः कहते हैं, आवहंती और वितनवाना, आवंती माने मेरे लिए लाओ, ऐसी बुद्धि को मुझे प्राप्त कराओ, लाओ माने ऐसी जो है बुद्धि मुझे प्राप्त कराओ, माने मैं ऐसी बुद्धि मुझे दो। और उस बुद्धि के साथ साथ हैं क्या करो, कहा वितनवाना, जिस उसका विस्तार करो, उस बुद्धि का विस्तार, और साथ में वह लक्ष्मी भी मुझे प्राप्त हो और उस लक्ष्मी का भी विस्तार हो। तो ये जब चीजें होंगी तब हमारे अंदर वह सामर्थ्य आएगी। इसलिए यहां पर इस मंत्र में ये चर्चा की गई। आगे पुनः जो है संकेत फिर करते हैं उसी मंत्र के नीचे, कुर्वाणा चीरमात्मनः, क्या संकेत किया, आत्मनः अचिरम है कुर्वाणा, मेरे को क्या करो, अचिरम माने शीघ्र, न चिरम इति अचिरम, माने शीघ्र, देरी न करो, देरी न हो, और क्या करो, कहा शीघ्र ही क्या कर दो, कहने लगे कुर्वाणा करो, क्या करो, तो संकेत करते श्रीवान करो, लक्ष्मीवान करो, लक्ष्मी की याचना करते। अब लक्ष्मी क्या क्या चाहिए, तो जो पूर्व में संकेत कर दिया बल, बल कब होगा, तो उसके लिए कहा लक्ष्मी की भी आवश्यकता, को लक्ष्मी वो श्री क्या है, तो कहने लगे वासांसी, मम गवाश्च, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना है, का वस्त्र चाहिए। तो वस्त्र रूपी वह श्री जो है मुझे क्या प्राप्त कराए, का वस्त्रों की प्राप्ति कराए। वासांस और गवाश्च, गावश्च मने गौए, और जब गौए होंगी तो दूध मिलेगा है, घृत मिलेगा और छाछ मिलेगी, और वो क्या करने वाली है, आयुर्वेदिक घृतम। आजकल तो आयु मृत्यु बन गई, वो क्या नाम, घी ही मृत्यु बन गया। आजकल घी कोई खा ही नहीं सकता, बहुत से अल्प लोग घी खा सकते हैं। क्यों? उसका कारण यही है, क्योंकि जो क्रम बतलाया गया उस क्रम से हम हटते चले। पहले इतना परिश्रम होता था और लोग इतना इतना कटोरे भर करके घी खा जाते थे, और घी को आयु शास्त्र में तब कहा था, लेकिन आज हमारे जीवन में वो परिश्रम नहीं है, और परिश्रम नहीं है तो उसे पचा कहां पाओगे, अजीर्णता लाएगा, और अजीर्णता लाएगा तो जो बल दे करके तुम्हें जो है बलवान बना करके और लक्ष्य की तरफ ले जाए वो तुम्हें निर्बल बना देगा, तो तुम लक्ष्य की तरफ से कहां जाओ। तो ये सब संकेत, इसलिए यहां संकेत करते हैं वयांसी, वस्त्र भी चाहिए, क्योंकि शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वस्त्रों की भी आवश्यकता है। तो वयांस ऐसी श्री से मुझे युक्त करो, गावश्च जो हमारे शरीर को पुष्ट करने वाले पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों को देने वाली जो गौ है, ऐसे उस श्री से, ऐसे उस साधन से भी मुझे पुष्ट करो, अर्थात वो भी मेरे लिए लाओ। और अन्न पाने च सर्वदा, और फिर संकेत एक साथ कर दिया, जो भी अन्न और पीने योग्य जो भी है वो सब जो है मुझे प्राप्त कराओ। और ये सब प्राप्त कराते हुए फिर कहने लगे, ततो श्रिय मे श्रियम आवय, और फिर इस प्रकार से ये सब प्राप्त कराते हुए पुनः जो वो श्री है वो जो मुझे श्री की प्राप्ति कराए, वो श्री क्या क्या है, तो कहने लगे इतना ही नहीं, आगे संकेत किया, लोम साम पशु भी सह स्वाहा, इस पास शब्द की चर्चा भी करें। तो लोम साम मैं लोम से युक्त, अर्थात जो भेड़ बकरियां हैं उनके बाल होते हैं, लोम होते हैं, इसलिए कहने लगे वो भेड़ बकरी आदि भी क्या है, मनुष्य की एक संपत्ति है, एक श्री है, और उनके साथ में पशु भी मैंने जो अन्य पशु गाय आदि जो हैं, हैं वो भी अश्व आदि है, वो सबको लेकर के यहां ले लिया जाए, तो सह शब्द से उनको ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार से उन सारे स्त्रियों की भी मुझे है प्राप्ति कराओ, वो लक्ष्मी मेरे जो है मेरे लिए उनको लाए, ऐसा। और फिर ये सब कहते हुए अन्नपान आदि की भी बात कह दी, पशुओं की, इन सब से जब संपन्न हो जाओगे तो आपका रहन सहन, आपका खान पान सब व्यवस्थित होगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं होगी, और जब टेंशन नहीं होगी तो फिर आपका मन भी प्रसन्न होगा। ऐसे प्रसन्न मन से ही फिर आगे की साधना हो सकती, और जब मन ही प्रसन्न नहीं है तो वहां ये साधना होती नहीं, श्रवण किया हुआ भी श्रवण नहीं होता है, क्योंकि जब टेंशन युक्त मन होता है, मन हमारा विक्षिप्त होता है, तो सुना हुआ भी हमारे में बगैर सुना हो जाता, क्यों, वो टिक पाता नहीं, उसका तात्पर्य भी समझ में नहीं आ पाता। तो इसलिए संकेत किया कि इन सब से जब हम युक्त हो जावे तब उसके बाद कहा अब क्या करो, तब कहने लगे आमायन्तु ब्रह्मचारिणः, आमायन्तु ब्रह्मचारिणः मने ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ है ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी, ठीक है ना, मने उस ब्रह्म की चर्या करने वाला जो है, ब्रह्म का आचरण करने वाला जो है, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है यहां वेद, तो वेद का आचरण करने वाला है, वेद की अनुज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाला है, उसको क्या कहेंगे, कहा वो है ब्रह्मचारी। अब उसके अंतर्गत जितने धर्म ब्रह्मचारी के हैं वो सब आ जाएंगे। तो वेद क्या निर्देश देता है, वेद की क्या अनुज्ञा है, तो वेद में आस्था रखते हुए, वेद की अनुज्ञा को स्वीकार करते हुए यदि हम अपने जीवन को चला रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, तो कहा ब्रह्मचारी है। वे केवल एक अवस्था विशेष को ही नहीं, उस अवस्था विशेष में उसका विधान किया गया कि उस समय बुद्धि जो है ग्राहक शक्ति अच्छी होती, सहसवे अभ्यस्त विद्यानाम, इसलिए वो किया गया। लेकिन ब्रह्मचारी शब्द का यहां तात्पर्य सीधा है कि जो वास्तव में उस वेद की अनुज्ञा के अनुसार जीवन को जीने वाला है, वेद की अनुज्ञा को मानने वाला है, वह ब्रह्मचारी। तो ऐसे वह ब्रह्मचारी मन वे वेद की अनुज्ञा मान करके उस वेद के अनुज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हैं, ऐसे उनको है आयन्तु माम, मेरे लिए लाओ। अब जब वो मेरे पास आएंगे तो आप जानते हो संगत से ही क्या होता, गुड़ भी होते हैं और संगत से ही, और ऐसे जब आएंगे तो फिर हमें क्या होगा, क्योंकि उनके पास जो है वही तो देंगे, उनके पास यदि होगा नहीं वो कहां से दे देंगे। तो वो वेद की अनुज्ञा क्या है और वेद का उस अनुज्ञा के द्वारा प्रेरणा कहां है, वह भी हमें प्राप्त होगा। और तद अनुकूल जैसे वो आचरण करते हैं तो वैसा ही आचरण हमारा भी बनेगा। यद आचर श्रेष्ठ तत्व तदेव, तो ये जब स्थिति होगी, इसलिए यहां संकेत किया ऐसे उन ब्रह्मचारियों को लिए को है मेरे पास लाओ, ये संकेत किया। और कहने लगे इतना ही नहीं, अब वो ब्रह्मचारी आए तो लेकिन आकर के वो छल कपट रखें, वो मनी ईर्षा रखें और अपनी वस्तु हमको न देना चाहें, छिपा के रखना चाहें, तो उनसे क्या लाभ होगा। इसलिए कहा कि विमावयन्तु, माने वो ब्रह्मचारी आए लेकिन कपट न रखें, कपट से रहित होकर के मेरे पास आए, अर्थात मेरे प्रति कोई छिपाव न रखें, ऐसा संकेत किया। और ऐसा संकेत करते हुए आगे संकेत करते हैं, कहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः, प्रमा माने प्रकृष्ट ज्ञान,